FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आराध्य को निवेदित भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ओम नमो नारायणाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। स्वीकारो हमारो प्रणाम।

0: वंदना कार्यक्रम में अभी आपने सुना हरिओम शरण, अनुराधा पौडवाल, अनूप चलोटा, चंदी राम चंदी और साथियों को। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन बिंदु।
1: श्री गुरु अर्जुन देव जी पवित्रता के स्रोत, उच्च कोटि की साहित्यिक प्रतिभा वाले लेखक, राष्ट्र निर्माता, संत ज्ञानी, संगीत प्रेमी और महाकवि थे। कोमल कलाओं के समर्थक, भाषा वैज्ञानिक, नम्रता के पुंज और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। संगतों में लोकप्रिय एवं सम्मानित सिखों के पांचवें गुरु होने के अतिरिक्त उन्होंने हिंदू मुसलमानों में समानता को देखा। उनकी वाणी जीवन से टूट चुके व्यक्तियों को जीवन की प्रेरणा देती है। अर्जुन देव जी ने प्रभु की भक्ति को प्रमुखता दी। प्रभु मिलन की पीड़ा को इन शब्दों में व्यक्त किया। मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, विलप करे चात्रिक की न्याई, त्रिखा न उतरे शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। अर्थात ईश्वर दर्शन हेतु मेरा मन हर समय चातक की भांति तरसता रहता है। प्रभु के दर्शनों के बिना ना मेरी प्यास बुझती है और ना मन को शांति ही मिलती है। मानव जाति के कल्याण के लिए जियो, क्योंकि सभी मानव एक ईश्वर की संतान हैं। उनमें भेदभाव करना ईश्वर का अपमान करना है। किसी को बैरी और पराया नहीं समझना चाहिए। समस्त ब्रह्मांड वाहेगुरु के अस्तित्व का प्रतीक है। समूचा विश्व उनकी दृष्टि में एक था। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी इस बात का सूचक है कि उन्होंने अपने आप को जाति, धर्म तथा प्रदेश के तंग विचारों से ऊपर रखा। गुरु साहब ने वाणी में लिखा है, वेद पुराण सिमरत में देख, शशि और नूर नखरत में एक, वाणी प्रभु की सबको बोले, आप अझेल न कबहु डोले। अर्थात प्राणी तू उसी एक को देख जो सूर्य चंद्र तारों तथा मानव विचारों की उड़ान में समाया हुआ है। सभी उसकी बोली को ही अलग अलग तरह से बोलते हैं, लेकिन परमात्मा स्वयं बदलता नहीं है। भाईचारे से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। आत्मीयता का उद्गम हृदय से होता है। सारी धाराएं वहीं से प्रभावित होती हैं। जिसमें संवेदनशीलता होती है वही आत्मीयता के माधुर्य को अनुभव करता है। बिना संवेद संवेदनशीलता के व्यक्ति पशु के समान है। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य व्यक्ति के लिए शक्ति का साधन बन जाता है। इसके विपरीत जिस कार्य के पीछे व्यक्ति का स्वार्थ होता है वो व्यक्ति को विकृत बना देता है, अंधा बना देता है। जब तक मनुष्य के अंदर सांस है उसे चलना तो है, लेकिन मानवता का तकाजा है कि वो सही रास्ते पर चले। ये तब संभव हो सकता है जबकि व्यक्ति अपनी वृत्तियों पर अंकुश रखे और इंद्रियों तथा मन की चंचलता के वशीभूत ना हो। मनुष्य इन इंद्रियों के निर्देश पर चलता है तो जीवन कदापि सार्थक नहीं हो सकता। इंद्रियां तो जंगली घोड़े के समान हैं, जो व्यक्ति को मन चाही दिशा में ले जाती हैं। मानव जीवन किसी ऊंचे ध्येय को प्राप्त करे इसके लिए इंद्रियों को वश में रखना आवश्यक है। अर्जुन देव जी ने अपने मन को वश में करने के लिए कहा कि अपने आप को इतना व्यस्त रखो कि इंद्रियों को स्वेच्छाचारी बनने का अवकाश ही ना मिले। मन को साधने के लिए ध्यान बहुत कारगर होता है। ध्यान को प्रभु में लगाओ, काम क्रोध लोभ मोह अपने आप दूर हो जाएंगे। संसार में सुख भी है और दुख भी है। दोनों की अनुभूति एक दूसरे के अस्तित्व के कारण ही होती है। जब सुख ही सुख होंगे तो दुख की अनुभूति नहीं होगी, और दुख नहीं होंगे तो सुखों का कैसे पता चलेगा।

0: दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम अपने को काबू में रखें। मन स्थिर और बुद्धि निर्मल हो तभी हमारे सारे क्लेश दूर हो सकते हैं और हम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं।
1: चिंतन बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अर्जुन देव जी के विचार, आलेख और वाचन विजया भामरी का था। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

श्री राम अवतार की कई कथाओं में एक कथा आदि पुरुष मनु तथा उनकी पत्नी शत्रुपा से संबंधित है, जिन्हें प्रभु ने एक अद्भुत वरदान दिया था। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप मनु को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। भक्त ने भगवान से अपनी मनोकामना प्रकट करते हुए उनके चरणों में ऐसी प्रीति मांगी जैसी पिता के हृदय में पुत्र के लिए होती है। उन्हें ये वांछित वरदान मिला। वर देते हुए श्री हरि ने कहा, स्वर्ग के बहुत से सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर आप अवध के राजा होंगे और तब मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। एक अन्य कथा राजा प्रताप भानु की है। उसके दो पुत्र हुए, प्रताप भानु और अरिमर्दन। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को राज्य सौंपकर भगवत भजन के लिए वन की राह ली।

अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में तैयार श्री रामचरित मानस गान का आज का संगीतबद्ध प्रसंग, जिसे स्वरों में पिरोया था रविंद्र साठे और साथियों ने FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कुछ देर बाद 6:50 पर हमारे श्रोता कार्यक्रम खेती की बातें में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का विषय रहेगा खरीफ दलहनी फसलों में पोषण प्रबंध और वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। 7 बजे हमारे श्रोता आनंद लेंगे पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत का।

कल 31 मिनट पर हमारे श्रोता आनंद लेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी का। ब्रज माधुरी कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनेंगे आज ब्रज वार्ता, ब्रज के परे ब्रज को प्रभाव। वार्ताकार होंगे डॉक्टर दाऊ दयाल गुप्ता। साथ ही आनंद लेंगे कुछ ब्रज लोकगीतों का। 8:30 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में कार्यक्रम गीतांजलि के फिल्म संगीत के नगमे। 9:00 आप सुनेंगे काव्यलोक कार्यक्रम में, आज का विषय रहेगा योग पर, और प्रस्तुत करेंगे मोहनलाल गौतम मोही। 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आबो हवा।

बजकर 30 मिनट पर विशेष कार्यक्रम सुनेंगे परिचर्चा वर्तमान संदर्भ में योग की आवश्यकता प्रतिभागी पीयूष द्विवेदी चंद्र प्रकाश दीपिका पाराशर और कार्यक्रम का संचालन करेंगे ओपी सिंह। 11 बजे हमारे श्रोता सुनेंगे फार्मेसी फिल्म संगीत कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। 11:30 पर आप पुनः आनंद लेंगे फिल्म संगीत का मेरी पसंद। 12 बजे हमारे श्रोता सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स मथुरा।

1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा कार्यक्रम वनता लोक। आज की चर्चा का विषय रहेगा घरेलू महिलाओं का समाज और परिवार में योगदान, साथ ही महिला सशक्तिकरण में योग की भूमिका। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे ओबी आधारित भेंट वार्ता ध्यान और योग का महत्व। वार्ताकार बुद्धि मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी वर्तिका सिंह, शशि मिश्रा, निर्मल गौतम, भेंट करता होंगे सुरभि शर्मा।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें में ये जानकारी।
1: किसान भाइयों, खरीफ के मौसम में बोई जाने वाली दलहनी फसलों से अधिक उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि इनके पोषक तत्व प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान देने की। दलहनी फसलों में फसल विशिष्ट के लिए राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है, और इस समय जो खरीफ में आप बोएंगे उसमें उड़द, मूंग, अरहर और लोबिया के लिए अलग विशिष्ट राइजोबियम कल्चर आता है, तथा फास्फोरस सॉल्युबिलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का युग्म टीकाकरण बुवाई के समय बीजोपचार द्वारा दिया जाता है। और इसको देने का तरीका कुछ इस प्रकार है। 600 से 700 मिलीलीटर पानी में 60 से 70 ग्राम गुड़ या चीनी घोल करके उबालें, फिर उसे ठंडा होने पर घोल में करीब 200 ग्राम फसल विशिष्ट का राइजोबियम कल्चर तथा 200 ग्राम फास्फेटिक कल्चर मिलाएं। इस मिश्रण को 10 किलोग्राम दलहनी बीज पर हल्के हाथों से भली भांति मिलाएं, ताकि बीजों पर इस मिश्रण की एक पतली परत समान रूप से चढ़ जाए। इसके पश्चात बीज को छाया में सुखाकर उसी दिन कम धूप के समय में यानी कि शाम के समय में बुवाई करते हैं। यदि फफूंदनाशक रसायनों से बीज शोधन करना हो तो पहले इसे आप राइजोबियम कल्चर से तथा फास्फेटिक कल्चर से बीज को उपचारित करें, उसके बाद फफूंदनाशी रसायन से बीज को उपचारित करें। दलहनी फसलों में 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक नाइट्रोजन प्रारंभिक मात्रा के तौर पर दें। अधिक नाइट्रोजन की मात्रा फसल में वानस्पतिक विकास बढ़ा करके उत्पादन घटाती है। यदि फास्फोरस की आपूर्ति DAP उर्वरक से की जा रही है तो नाइट्रोजन की प्रारंभिक मात्रा अलग से देने की कोई जरूरत नहीं है। मिट्टी परीक्षण के आधार पर संतुलित फास्फेटिक उर्वरक की मात्रा या इसके अभाव में 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में बुवाई के समय बीज के नीचे कूड़ों में देना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध न होने पर ही आप DAP का प्रयोग करें। फास्फेट कल्चर के प्रयोग से लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फेट की उपलब्धता होती है। तो इस प्रकार आप फास्फेट कल्चर के प्रयोग से साथ साथ आप फास्फेट कल्चर के साथ में अगर आप 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फेट उर्वरक को साथ में देने से दलहनी फसल की जो फास्फेट की आवश्यकता है उसको हम पूरा कर सकते हैं। खरीफ दलहनी फसलों के लिए पोटेशियम उर्वरक की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, किंतु कुछ विश्वविद्यालयों और शोध परीक्षणों के परिणाम के आधार पर ये कहा जाता है कि 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटाश के प्रयोग से उपज में उत्साहजनक वृद्धि प्राप्त होती है। अगर आप चाहें तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर

और आइए सुनते हैं पुरानी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फूले बिस्तरे गीत का ये पहला नगमा, जिसे हमने लिया है फिल्म शोर से। स्वर है लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों का।

किशोर कुमार और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म ब्लैकमेल में, और आइए सुनते हैं आशा भोसले मोहम्मद रफी को फिल्म यादों की बारात में।

0: आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी को भी आपने सुना फिल्म यादों की बारात में। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, सुनते हैं एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स एलो डॉक्टर में आज यानी कि 18 जून 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का आज का विषय है किशोर व बच्चों में शारीरिक बदलाव एवं हार्मोनल परिवर्तन। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रमनीश प्रजापति, सलाहकार पीडियाट्रिक एवं हार्मोन विशेषज्ञ, आकाश शेट्टी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412-2555-75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में किशोर वे बच्चों में शारीरिक बदलाव एवं हार्मोनल परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है किशोर वे बच्चों में शारीरिक बदलाव एवं हार्मोनल परिवर्तन। यदि आपको अपने बच्चों में शारीरिक हार्मोनल परिवर्तन जैसे आवाज का बदलना, डायबिटीज, थायराइड, हार्मोनल,
1: किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान

0: غلطی کر سکتا ہے. اے پی جے عبد الکلام.
1: جیسے سوریا سب کو ایک سا پرکاش دیتا ہے, برسات سب کے لیے برستی ہے, اسی طرح ودیا ورشٹی سب پر برقرار ہونی چاہیے. مہاتما گاندھی.
0: آکاش کی طرف دیکھیے, ہم اکیلے نہیں ہیں, سارا برہمانڈ ہمارے لیے انکول ہے. اور جو سپنے دیکھتے ہیں, محنت کرتے ہیں, انہیں پرتیفل دینے کی سازش کرتا ہے. اے پی جے عبد الکلام. نرنتر وکاس جیون کا نیم ہے, اور جو ویکتی خود کو صحیح دکھانے کے لیے ہمیشہ اپنی روڑی وادتا کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے, وہ خود کو غلط استھتی میں پہنچا دیتا ہے. مہاتما گاندھی.
1: مانو کا دانو ہونا اس کی ہار ہے, مانو کا مہا مانو ہونا اس کا چمتکار ہے, اور منشیہ کا مانو ہونا اس کی جیت ہے. ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن.
0: کوئی ترٹی ترک وترک کرنے سے ستیہ نہیں بن سکتی, اور نہ ہی کوئی ستیہ اس لیے ترٹی بن سکتا ہے کیونکہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہے. مہاتما گاندھی.
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार. नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम. पहले मुख्य समाचार. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र. कहा, बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार. मुख्यमंत्री ने लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना को लेकर की अहम बैठक. परियोजना के निर्माण के दौरान प्रभावितों के पुनर्वास और उचित मुआवजा उपलब्ध कराने पर दिया विशेष जोर. बदायूं में सड़क हादसे में 6 महिलाओं की मौत, 3 घायल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख. और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से दी शिकस्त. अब समाचार विस्तार से. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित ग्रेड ए के 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा के बेहतरीन वातावरण में अर्थव्यवस्था को गति मिली है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में यूपी की अर्थव्यवस्था तथा प्रति व्यक्ति आय 3 गुना से अधिक बढ़ी है.
3: हमने प्रदेश के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी लाने का कार्य किया भर्ती आयोगों में, बोर्डों में, उसके परिणाम आए हैं. हमने 9 लाख से अधिक तो केवल सरकारी नौकरी दी है. प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो वातावरण बना है, लाखों नौजवानों को उसके माध्यम से निवेश से और उद्योगों की संख्या, आप सोचो कि यूपी के अंदर कुल 14,000 बड़े कारखाने थे. कुल 14,000, इतनी बड़ी आबादी का राज्य. एमएसएमई लगभग बंद हो गया था. आज हमारे पास बड़े कारखानों की संख्या इन 9 वर्ष में 32,000 से अधिक हुई है.
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग की वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना को लेकर बैठक की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्राप्त प्रस्तावों की प्राथमिकता तय करते हुए शीघ्र ही कार्ययोजना शासन को भेजी जाए, जिससे उन्हें इस माह के अंत तक स्वीकृत कर कार्य शुरू कराया जा सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जनहित से जुड़े प्रत्येक विषय पर संवेदनशील है तथा जनप्रतिनिधियों के सुझावों और मांगों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्रभावितों के व्यवस्थित पुनर्वास और उन्हें उचित मुआवजा उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया. मुख्यमंत्री ने अवशेष कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के निर्देश देते हुए कहा कि जिन अधिकारियों के कार्यों में विलंब है या जिन्होंने अभी तक कार्य शुरू नहीं किए हैं, उनके जवाबदेही तय करते हुए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन को रेखांकित किया है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति आत्मनिर्भरता के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने पर भारत के प्रतिबद्धता को दर्शाती है. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सुरक्षित भारत ही विकसित भारत की आधारशिला है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत ने सुरक्षा और सामरिक सामर्थ्य के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है.

0: है। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने वाराणसी में सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है।
1: जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर सबका साथ देने का काम किया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को और हम लोग दीर्घायु होने की कामना भी करते हैं, ताकि आने वाले भविष्य में जो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें हमका योगदान हो सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुँच प्रदान कर रहा है।
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। बदायूं जिले के थाना उझानी क्षेत्र में बुटला गांव के पास कल एक ट्रैक्टर व ई रिक्शा में हुई टक्कर में 6 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदायूं में हुई दुर्घटना में जान माल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनकी सहानुभूति उन सभी के साथ है जिन्होंने हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे में हुई जनहानि पर गहरा शोक जताया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर ये टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कल राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में कल हुए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने शुभमन गिल और ईशान किशन के शतकों की बदौलत अफगानिस्तान के सामने 403 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में अफगानिस्तान की पूरी टीम 44 ओवर और 3 गेंद पर 232 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित गंगोत्री से गंगा सागर योग यात्रा के अंतर्गत कल वाराणसी में योग और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया।

0: प्रदेश सरकार में आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु भी कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे वाराणसी प्रतिनिधि ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत पिछली 13 जून को गंगोत्री से हुई थी। 20 जून को गंगा सागर में इसका समापन होगा। वाराणसी इस यात्रा का एक पड़ाव रहा। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज और कल कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने इस अवधि में पूर्वी जिलों में कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 930 कंप्यूटर ऑपरेटरों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, बेहतर सुरक्षा से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मिली रफ्तार। मुख्यमंत्री ने लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना को लेकर की अहम बैठक। परियोजनाओं के निर्माण के दौरान प्रभावितों के पुनर्वास और उचित मुआवजा उपलब्ध कराने पर दिया विशेष जोर। बदायूं में सड़क हादसे में 6 महिलाओं की मौत, 3 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर जताया दुख। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 170 रनों से दी शिकस्त। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

माधुरी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, मंगलम मंगलम ब्रजभूमि मंगलम, वंदे ब्रज वसुंधराम, ब्रज की आ पावन धरा को नमन करे, वंदन करे।

0: आए जुड़े सब ब्रज के वासी, जब ब्रज के वासी सब इकट्ठे है जाए तो ब्रज को माधुर्य अपने आप में प्रस्फुटित होने लगे, आनंदित करने लगे। ब्रज सम और नहीं कोई धाम, अभी अभी अधिक मास निकलो ही नहीं है, अब बाकी आनंद की जो फुलझड़ी है, आनंद की जो रसवर्षा है, खूब खूब मंदिरन में, देवालय में, ब्रज के गलियारिन में खूब खूब अबहू देखने को मिल रही है। साहब कैसे कैसे आनंद छाए, बेला के, मोंगरा के, गुलाब के, चंपा, चमेली, रायबेली, जूही, कैसे कैसे फूलन के बंगला खूब देखने को मिले, खसको बंगला और बड़े बड़े शरबत ब्रजवासी ने साहब बांटे, कहूँ खसको, कहूँ लीची के, कहूँ फाल से, कहूँ बेल बेल को, कहूँ रोब जा, कहूँ आम को से, कहूँ ठंडियाई, कहूँ बादाम, पिस्तान की खूब छनवाई साहब ब्रजवासी ने खूब, जो हमारे पर्यटक भारतीय आए को खूब स्वागत कियो और खूब आदान प्रदान भयो साहब। हटरी के दर्शन भये, सोने चांदीन के, हिंडुलान के दर्शन भये, खटान के दर्शन भये, अरे साहब कुनवारे के दर्शन भाई, परसों जो मामशा गई है बाद में कुनवारे के दर्शन, ठौर है, लड्डू है, मठरी है, अरे साहब बड़े आनंद आए, खूब छप्पन भोग के दर्शन भये, गुलाब जल के छिड़काव भे रहे, केवड़ा के छिड़काव भे रहे, चंदन के खूब इत्र लगाए जा रहे, धन है ब्रजवासी, धन है ब्रजधाम, ऐसो आनंद खूब खूब देखने को मिलो। और अब आपको सुनवा में ब्रजवार्ता, ब्रज के परे ब्रज को प्रभाव, वार्ताकार है डॉक्टर दाऊ दयाल गुप्ता। तो भैया सुनो ये ब्रजवार्ता।
1: ब्रज भाषा भावत सकल सोरवानी समतूल, ताहे बखानत सकल कवि जान महारस तूल। ब्रज भाषा ब्रजभूषण के मुख को भूषण है, वो बहुत ही मधुरी भाषा है। ब्रज भाषा को नाम सुनके ऐसो अनुमान होए कि ई भाषा तो ब्रजमंडल की भाषा होएगी। पया मिस्त्री ते मीठी भाषा को प्रभाव ब्रज ते परे दूर दूर ताऊ देखो जा सके। सांची बात तो ई है कि ब्रजी के जितेक सृजनहार ब्रज ते परे भये हैं, बिनते आधेऊ ब्रज क्षेत्र में नाय भये। आचार्य भिखारी दास जू ने ई बात साफ साफ कह दई है कि ब्रजभाषा के सृजनहार को अनुमान ब्रज में बास करवे वारे रचनाकारन ते ही नाय लगाया जाना चाहिए। ब्रजभाषा हेत ब्रजवास ही ना अनुमानो, यही कारण ते ब्रजी को प्रभाव मध्यकाल में भारत के उत्तर दक्षिण के विशाल भूभाग पे बहुत ही सबल रहो हतो। या बिरिया भला राजस्थान ब्रजी के प्रभाव ते कैसे अछूतो रह जातो। ब्रज की बंसी की धुन के संगई संग अपने पगन में बंधे घुंघरून की झनकार को अपूरम बेल मिलाए के प्रेम की मतवारी मीरा राजस्थान में ही नाची हती। कन्हैया के प्रेम में बाके मुक्ते निकस्यो एक एक शब्द ब्रजभाषा साहित्य की अमोलक निधि है। जाए सुनके भक्तन के मनुआ आज वो हुलस हुलस जाए। मीरा के अलावा राजस्थान में और अनेकन राजा रानी भये जिनने ब्रजभाषा को साहित्य रचके ब्रजी की अपूरव सेवा करी है। खोज करवे पे पतो चले के उदयपुर के 23, जोधपुर के 46, बीकानेर के 27, किशनगढ़ के 5, जयपुर के 14, बूंदी के 15, जैसलमेर के 3, अलवर के 8, भरतपुर के 4 और करौली के 6 राजा रानी ने ब्रजी की रचना करी है। किशनगढ़ के राजा नागरीदास जू को तो सपूरो परिवार ब्रजभाषा के साहित्य को सृजनहार रहे होए। बिनके परिवार में ब्रजी के ताई प्रेम तो यही ते जानो जाए सके के नागरीदास जू की सेवका बनी ठनियू कविता करई। आओ ऐसे ब्रजभाषा प्रेमी राजा नागरीदास जू की काव्य बाटका में एक पल हमऊ विहार करते चले। श्री राधा वृंदा विपिन नित विहार रस एक, बिछुरत नाही पलक हु बीतत कलप अनेक। नित्य केल आनंद रस बिच वृंदावन बाग, नागरिया ही में बसो श्यामा श्याम सुहाग। राजस्थान में ब्रजी को इतेक प्रभाव है वो कछु अचरज की बात ना है, या में कछु संसो ना है के ब्रज और राजस्थान को ना तो बहुत पुरानो है। बिनको संग चोली दामन को संग है। जा बिरिया ब्रज में मजहबी उन्माद को संकट आयो हतो, वह बिरिया पुष्ट मारक के श्रीनाथ जी को स्वरूप गोवर्धन सो हटाए के राजस्थान में ही लायो गयो। बुई श्रीनाथ जी आज नाथ द्वारा में विराज रहे हैं। राजस्थान के कामा और कोटा नगरन में पुष्ट मारक के दूजे स्वरूप प्रतिष्ठित हैं। गौड़ीय संप्रदाय के कई स्वरूप जयपुर में दर्शन दे रहे हैं। श्री मदन मोहन जू को स्वरूप राजस्थान के करौली नगर की शोभा

बढ़ाए रहे होए। राजस्थान में ब्रजभाषा की सेवा बहुत ही नीकी भई है। आजो इन मंदरन के पोथी खानेन में ब्रजभाषा में रचे हजारन ग्रंथ भरे परे। राजस्थान माए सन 1969 में हरनाथ ग्रंथावली नाम ते एक ग्रंथ छापो गयो हतो। या ग्रंथावली में ठौर ठौर पे ब्रजभाषा साहित्य कारण को और विनके साहित्य को परचो मिले, जाते राजस्थान में ब्रजी को प्रभाव स्वयं सिद्ध है जाए। 847 पन्नान में सिमटी या ग्रंथावली सो बानगी रूप में एक छंद आपू सुनो।

टोना है। ब्रजभाषा की या उत्तम कोट की रचना को सुनके राजस्थान में ब्रजी के प्रभाव ताई कछु संशय नाय रहे। यहाँ पे जैनीन के अनेक ग्रंथ भंडारों रहे हैं। खोज करवे ते पतो चले के इन विशाल भंडारन में ब्रजभाषा में लिखे ग्रंथन को कछु और छोर ना है। आज और राजस्थान में जित देखो तित छोटे मोटे रूप में ब्रजभाषा साहित्य रचो जा रहे हो। कांकरौली में श्री गोपी लाल जू और गोकुलनाथ तेलंग ब्रजभाषा को श्रृंगार कर रहे हैं। नाथद्वारा में श्री किशनचंद शास्त्री और प्रभुदास वैरागी जू को मनुआ ब्रजभाषा की कविता रचवे में रम रहे हो। आओ तेलंग जू की तूलिका ते तैयार भये कांकरौली के शब्द चित्तर को तनिक निरखें। ऊंचे जल बांधु बंधे निर्मल टापु सागर के चूमती सी झूमे जामे सुंदर एक नगरी है। तापे पुण्य दिव्य धाम बिल से प्रभु द्वार केश जिनकी सुषमा विभूत चारों ओर बगुरी है।

करौली नगरी है। उदयपुर में अक्षय कीर्ति जी ने प्रताप शतक ग्रंथ लिखो है, जामे वीर रस को बहुत ही मनोहारी निर्वाह भयो है। यही तरिया झालावाड़ में नवनीत दास जू और कोटा में श्री बालकृष्ण थोलंबिया व गजेंद्र सिंह सोलंकी आज के युग की समस्यान को ब्रजभाषा में गिनाए रहे। कोटा के पंडित रामनाथ दुखिया ब्रजभाषा के कहावत मुहावरेन को संबल लेके अपनो हृदय यात्रिया खोल रहे। खेलन ही खेलन में दुखिया तिहारी सो,

जावे नाम। उदयपुर माह डॉक्टर रामगोपाल जू दिनेश ब्रजभाषा गीतन को गाय रहे हैं। वहाँ पे ही तख्त सिंह भटनागर जू की वृत्यानुप्रा शतक और अंतिम ज्योति प्रकाशित रचनाएं बिन्ने प्रेम की पहचान यात्रियां कराई है। प्रेम के सिंधु में डूब गयो फिर ताहि न को निकार सके है। प्रेम को भूत चढ़ो जिन पे तिन को तन को न झार सके है। प्रेम को जाए बुखार चढ़ो ब्रह्मा हूं न ताहे उतार सके है। प्रेम की बाजी पे जो अर जाए तो ना वह काहू से हार सके है। जोधपुर में ब्रजभाषा की माला परोये बारे श्री बलराम किंकर और राजेंद्र कुमार निष्ठुर जू हैं। झुंझुनू में जन्मे डॉक्टर मनोहर शर्मा बीकानेर में भक्ति के अनूठे पद लिख रहे हैं। जयपुर में ब्रजभाषा की कविता को बाजार गरम है। बिन में ते राधा कृष्ण जू कृष्ण उपनाम ते कवित और सवैया लिख रहे हैं। श्री योगीदान कविया गरीब मजदूरन को बानी दे रहे हैं। मोटे पेट हू के बन बैठे यहाँ धन्ना सेठ ब्याज अरु ले तो सट्टा भक्त स्वाद है। हाकिम हजारन को वेतन हजम करें दीन मजदूरन की फीकी फरियाद है।

0: नई कविता लिखवे को नया प्रयोग कर रहे हैं। श्री हरिप्रसाद जी शास्त्री अतुकांत कविता रच के ब्रजभाषा के सृजन हारण को नया द्वार खोल रहे हैं। बिनकी अतुकांत कविता बानगी रूप में सुनो। जीवन अबहि तो माटी को कांचो और गीलो भाड़ो है, जाको समाज के कुंभकारण ने समय के चाक पे रख के सामान्य संदर्भ में गढ़ दीनो है। धौलपुर और करौली माए ब्रजभाषा को साहित्य बहुत ही नीको रचो जा रहे हो। धौलपुर में श्री रामदास जी की राजनीति पे करारे व्यंग बहुत ही फवे। भरतपुर तो ब्रजभाषा के सृजनहारन को गढ़ है। कवि कुसुमांजलि नाम के ग्रंथ में 177 पुराने और नए कवीन को परचो छप चुको है। या ग्रंथ के छब्बे के पाछे हूँ अनेकन तरुण कवीन की वाणी ब्रजी को प्रभावी बनाए हुए में सुनाई पड़े। इनके हाथन लिखी पैरोडी और लोकगीतन की श्रोतान के मुखते बहुत ही सराहना होती रही है। आओ धनेश फक्कड़ जू के या लोकगीत को सुने, जाए बार बार सुन के हूँ सुनवे की होंस पूरी ना हो। काहे बैठे हो पलंग पे उदास रसिया, चलो चलो काहू ज्योतिषी के पास रसिया, महंगाई में अन्न मिले ना कैसे हो गुजारो, राशन के चक्कर में फक्कड़ डोले मारो मारो, घी उनाए तेल उनाए इनको मिलवो खेलनाए, चलो चरे जंगल में घास रसिया, काहे बैठे हो पलंग पे उदास रसिया। या बिरिया भरतपुर अंचल के कवीन की कविता को और अधिक परचो देवो तो दूर रहो, बिनको नाम गिनावो संभव ना है। यह अंचल में ब्रजभाषा गद्य लिखवे वारे क्यू बाढ़ सी आई भई है। जा समय ब्रजभाषा को गद्य लिखवे की परंपरा चली उ नाई, बा समय जोधपुर के राजा जसवंत सिंह और राजा नागरीदास जू को लिखियो गद्य को नमूना जग जाहिर है। आज वो राजस्थान के पूर्वी अंचल में गद्य के मिस वार्ता नाटक रूपक संस्मरण रेखाचित्र और पत्र लिखे जा रहे हैं। यहाँ के पत्र पत्रकार ने ब्रजभाषा गद्य को स्वरूप स्वीकार कियो है। करौली ते निकसवे बारे सही दिशा साप्ताहिक माए मनसुखा आयो है खूब छपो है। कामा ते निकसवे बारे सही संकल्प और 84 खंभा में सुरी बेसुरी बांसुरी के स्तंभ माए ब्रजी की धूम रही है। बिन में आज के युग की अनेक समस्यान को करारे व्यंगन के सहारे खूब उभारो जा रहे हो। बिन में छपे व्यंगन की मार को हसस के झेलवे के सिवाय कछु और चारो नाए। या तरिया राजस्थान के कोने कोने में ब्रजी को प्रभाव पद्य और गद्य दोनों में पहुंचो भयो है। या में कछु संशय नाए कि ब्रजी के प्रभाव को पैदा करवे में बूढ़े और तरुण सभी साहित्यकारन की साधना अचूक काज कर रही है। बिनकी साधना ते ब्रजी को प्रभाव दिन दूनों और रात चौगनों बढ़ेगो, या में कछु संशय नाए।
1: भैया भैया आपने आनंद लियो या ब्रज वार्ता। ब्रज के परे ब्रज को प्रभाव, वार्ताकार है डॉक्टर ताऊ दयाल गुप्ता। भैया ब्रज को सो स्वाद तिहू लोक ना निहार्यो श्याम, ब्रज को सो स्वाद तिहू लोक ना निहार्यो श्याम, कोट तीर्थन ये माथे को टीको है, रस की रसायन और प्रेमीन की खान जहां, ब्रह्महू टटोरियो इन ब्रज गोपीन को छीको है। ब्रजमंडल में कहूँ दान लीला देखने को मिले, कहूँ माखन चोरी देखने को मिले, कहूँ प्रेम के माधुर्य की रसमयी लीला देखने को मिले, आज आपको सुनवा में ब्रज को ये लोकगीत, अरे मेरो मारक रोक्यो। संबेश्वर में

यहाँ भारत आजाद कहाँ पूरो बर्बाद है। अलवर अंचल माह ब्रजभाषा काव्य की पुरानी परिपाटी पे समस्या पूर्ति करवे वारे श्री नाथू राम जू बेजोड़ कवि हैं। श्री बलवीर सिंह करुण ब्रजभाषा में

क्यों कृष्ण कन्हैया ने सांबे स्वर में। भैया आपने ये सुनो ब्रज लोकगीत, हमारे ब्रज में राम कृष्ण दो एक हैं। कहूँ राम के दर्शन, कहूँ कृष्ण के दर्शन, कहूँ राधा वल्लभ, कहूँ राधा माधव के गोवर्धन नाथ यमुना जी, कैसो आनंद है। वंदनीय या भारत की माटी, मोहक ललित ललाम। और मेरी भारत की आत्मा आनंद प्रदान करवे वाली है, सुने या ब्रज लोकगीत को।

सब पंचन कु मेरी राम राम रे, सब भैयन कु मेरी राम राम रे। ग्रीस के स्वर में या ब्रज लोकगीत के गाए के संग ही आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए हैं। सब भैयान को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
4: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
5: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
3: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
6: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
3: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
7: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
3: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे

0: कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
1: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
3: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
4: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
2: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
5: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
2: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री

0: पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
1: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
2: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल, संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने

0: Pakistan by 170 runs in the second ODI of the three-match series to take an unassailable 2-0 lead. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: सुनते हैं चित्रपट संगीत के कार्यक्रम में कुछ फिल्मी गीत।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म हीर राजा में, और आइए सुनते हैं किशोर कुमार को, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी।

0: संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया।
1: अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और साथियों को फिल्म द ट्रेन में, और सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर हुगली से देशभर के करोड़ों किसान भाइयों के बैंक खातों में 2000 की सहायता राशि सीधे हस्तांतरित करेंगे। सभी किसान भाई बहन अपना ईकेवाईसी और बैंक विवरण अवश्य जांच लें। किसान सम्मान निधि किसानों की समृद्धि और सहायता की ओर भारत सरकार का एक मजबूत कदम है। सभी किसान भाई एवं देशवासी इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों के माध्यम से केवीके कृषि विश्वविद्यालय ICAR के अनुसंधान केंद्र कृषि उपज मंडी में उपलब्ध ऑडिटोरियम या खुले मंचों पर समूह में इकट्ठा होकर सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन केंद्र किसान चैनल पर भी सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। एक और सूचना। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स डॉक्टर में इस गुरुवार यानी कि आज 18 जून 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है किशोर व बच्चों में शारीरिक बदलाव एवं हार्मोनल परिवर्तन। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रमनीश प्रजापति, सलाहकार पीडियाट्रिक एवं हार्मोन विशेषज्ञ, आकाश शेट्टी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565 कोड लगाकर 2530135 पर फोन करके अथवा हमारा मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में किशोर व बच्चों में शारीरिक बदलाव एवं हार्मोनल परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है किशोर व बच्चों में शारीरिक बदलाव एवं हार्मोनल परिवर्तन। श्रोताओं, यदि आपको आपके बच्चों में शारीरिक एवं हार्मोनल परिवर्तन जैसे आवाज का बदलाव, डायबिटीज, थायराइड, हार्मोनल असंतुलन जैसे मासिक धर्म की समस्याएं, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमजोर होना, अत्यधिक मोटापा या बच्चों में असामान्य रूप से कम या अधिक विकार, लंबाई न बढ़ना आदि समस्याओं के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर रमनीश।

0: प्रजापति, सलाहकार पीडियाट्रिक एवं हार्मोन विशेषज्ञ आकाश शेट्टी, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओ ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार यानी कि आज 18 जून 2026 और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं काबिलो कार्यक्रम में विषय योग पर और प्रस्तुत कर रहे हैं मोहनलाल गौतम मोही।
1: प्राकृतिक सिद्धांत के अनुरूप जीवन जीवे की जो कला है, जीवन जीवे की जो शैली है, योग वा को मुख्य अंग है। तो एक गीत में प्रस्तुत कर रहे हूं योग के संदर्भ में।

पर हम भूल गए धन माया, भंवर बनी है भोग की, सुखी रहे विधि।

लायो, पतंजलि को योगी लायो, ये क्रांति उपयोग की, सुखी रहे विधि जो अपनावे, हिंदुस्तानी योग की। कि तीन अंग में होए योग, आसन

सुखी रहे विधि जो अपनावे हिंदुस्तानी योग की। देश विदेशी जनता खुल के अब या पथ

को 21 जून मनाए रही। अरवन की संख्या में मानव भूले बात वियोग की, सुखी रहे विधि जो अपनावे हिंदुस्तानी योग की। तो जाति धर्म को भेद मिटा है, योग करे सो है योगी, ऊंच नीच को

कर्म करे सो फल पावे, ये रीति है विनियोग की। सुखी रहे विधि जो अपनावे, हिंदुस्तानी योग की। कि एलोपैथी डॉक्टर हो जब जब निराश है जामे, कछु टहलो।

संजीवनी जग के, योग बनी संजीवनी जग के, हर नारी हर लोग की सुखी रहे, विधि जो अपनावे हिंदुस्तानी योग की। और यह गीत की अंतिम पंक्तियां हैं।

योग की सुखी रहे विधि जो अपनावे हिंदुस्तानी योग की। देखो भैया 20 वर्ष मैंने जो प्राकृतिक चिकित्सा को अध्ययन कियो है और एक महीना को प्रायोगिक प्रशिक्षण लियो है वाके आधार पे मैंने कुछ दोहा लिखे हैं। ये जीवन में बहुत काम आवे वाले दोहा है, एक तरह के मंत्र हैं स्वास्थ्य के, प्रस्तुत कर रहे हूं।

के भोजन कर विश्राम कर, पांच मिनट ही हो।

0: अब भैया आपने आनंद लियो कार्यक्रम काबलोक कार्यक्रम में विषय योग पे कविवर मोहनलाल गौतम मोहित के या का पाठ को आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: जल्दी चलो मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे।

0: लखनऊ से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी लखनऊ है, आइए सुनते हैं जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए एटा और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का।
2: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत एटा के ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक परिवहन सुविधा को बेहतर बनाने को महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। योजना के प्रथम चरण में 4 मार्गों पर बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। जिला मुख्यालय से राजा का रामपुर मार्ग पर 2 बसें और अमरोली रतनपुर और बिलसण मार्ग पर 1-1 बस चलाई जा रही है। लंबे समय से नियमित सार्वजनिक परिवहन से वंचित ग्रामीणों को इस पहल से बड़ी राहत मिली है। बस सेवा शुरू होने से विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों, नौकरी पेशा लोगों और मरीजों को जिला मुख्यालय के अलावा कस्बों तक पहुंचने में सुविधा होगी। ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत करते हुए अन्य मार्गों को भी योजना से जोड़ने की मांग की है। परिवहन विभाग की ओर से चरणबद्ध तरीके से नए मार्गों पर बस संचालन की संभावनाओं पर कार्य किया जा रहा है। जनपद के सभी 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। ये मेला बीते रविवार यानी 14 जून को लगाया गया। मेले में कुल 1030 मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं। सबसे ज्यादा संख्या त्वचा रोगियों की रही। इसके अलावा पेट दर्द, डायरिया, उल्टी, गैस और कब्ज से पीड़ित मरीजों ने भी उपचार लिया। मेले में 414 पुरुष, 477 महिलाएं और 139 बच्चे पहुंचे। चिकित्सकों ने बुखार के मरीजों की मलेरिया और डेंगू जांचें भी कराई, जिसमें कोई भी मरीज संक्रमित नहीं पाया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि मौसम परिवर्तन के कारण त्वचा और पेट संबंधी रोगियों की संख्या ज्यादा रही है और लोगों को स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल के प्रति जागरूक रहने की सलाह भी दी गई है। जिले में अवैध रूप से संचालित 21 लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटरों को माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अंतिम नोटिस जारी किया है। जिला विद्यालय निरीक्षक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि संबंधित संस्थानों को 7 दिन के भीतर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में पंजीकरण न कराने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। विभाग का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार सुनिश्चित करना है। जनपद में निराश्रित गौवंश की समस्या के समाधान के लिए शासन ने 2 बृहद गौशालाओं के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। पहली गौशाला मारहरा क्षेत्र के रहमतपुर माफी और दूसरी सकीट के नगला हरिकिशन में बनाई जाएगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आरपी शर्मा के अनुसार दोनों गौशालाएं 10-10 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित की जाएंगी। इनमें गौशाला शेड, पानी की व्यवस्था, भूसा, गोदाम, कार्यालय कक्ष, सोलर लाइट और सुरक्षा के लिए फेंसिंग जैसी सुविधाएं होंगी।
3: एक गौशाला हमारी मरहरा ब्लॉक में रतनपुर माफी में, दूसरी गौशाला शकीर ब्लॉक के नगला हरिकिशनपुर में स्वीकृत की गई है, जिसकी क्षमता 400 गोवंश की होती है। इसके अलावा भूसा गोदाम, एक ऑफिस बनता है, पानी की टंकी बनती है, उसके बाद उसके अलावा बाउंड्री वॉल होती है, इसमें निर्माण कार्य किया जाता है।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आर्ष गुरुकुल एटा में योग सप्ताह का भव्य शुभारंभ बीते सोमवार से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पालिका परिषद एटा की अध्यक्ष और मुख्य विकास अधिकारी ने किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में योग साधकों ने सहभागिता की। योग के प्रशिक्षकों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास किया। तमाम योग के आसनों के लाभ भी बताए। वक्ताओं ने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन का भी प्रभावी माध्यम है। एटा के अलीगंज में महिला सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत बनाने को महत्वपूर्ण पहल की गई है। अलीगंज मैनपुरी मार्ग पर लगभग 3,30,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले महिला थाना भवन का भूमि पूजन एवं शिलान्यास संपन्न हुआ। इस मौके पर विधायक सत्यपाल सिंह राठौर, उप जिलाधिकारी जगमोहन गुप्ता, सीओ राजेश कुमार मौजूद रहे। महिला थाना बनने से महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने, परामर्श और न्याय प्राप्त करने के लिए एक समर्पित मंच उपलब्ध होगा। इसी क्रम में जसरथपुर और नयागांव थाना इलाकों में 2 नई पुलिस चौकियों के निर्माण का भूमि पूजन भी किया गया। इससे ग्रामीण इलाकों में पुलिस की पहुंच और कानून व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। जिलाधिकारी अरविंद सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इला मारन ने जैथरा के मानपुर गाँव में एक

0: प्रयत्नशील किसान के कृषि फार्म का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने वर्मी कंपोस्ट निर्माण, बायोफ्लॉक तकनीक से मत्स्य पालन, गेंदा पुष्प उत्पादन और औषधीय पौधों की खेती का अवलोकन किया।
1: एटा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का।
2: 2 जून को गोरखपुर जनपद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिलुआ ताल में सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की वर्तमान डबल इंजन सरकार ताल पोखरों पर कब्जा नहीं होने देती, बल्कि प्रकृति संरक्षण के दायित्वों का निर्वहन करती है। उन्हें बेहतरीन पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित कर समाज को प्राकृतिक वातावरण में आनंदित होने का मंच देती है। 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निखारे गए इस पर्यटन स्थल को जनता को समर्पित करने के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चिलुआ ताल पर्यटन विकास परियोजना के अगले चरण में चिलुआ ताल को रामगढ़ ताल की तर्ज पर इको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स के बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि अच्छी सरकारें अच्छी चीजें लेकर आती हैं। उन्होंने बताया कि चिलुआ ताल में कोल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे चिलुआ ताल में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। पूरे शहर की बिजली आपूर्ति यहां से संभव हो सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामगढ़ ताल की तरह चिलुआ ताल में भी वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जब लोग चिलुआ ताल को देखेंगे तो यह और भी अच्छा लगेगा। उन्होंने चिलुआ ताल के प्राकृतिक वातावरण की तारीफ करते हुए कहा कि चिलुआ ताल के किनारे लहरों से होकर आ रही हवा तापमान को कम कर सुखद एहसास करा रही है। यहां पर लोग परिवार के साथ आकर आनंद के साथ घूम सकते हैं, स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। यहाँ न प्रदूषण है और न ही किसी प्रकार की अव्यवस्था।
3: ये डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ताल और पोखरों पर कब्जा नहीं बल्कि उनका संरक्षण करती है। एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में उसे विकसित करके लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए, आम नागरिकों के लिए और कलाकारों के लिए भी एक मंच उपलब्ध करवाती है।
2: 13 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी इंटर कॉलेज महुआ पार बड़हलगंज में आयोजित कार्यक्रम में 295 करोड़ से अधिक की लागत वाली 319 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह धरा मां सरयू के आंचल में है। यहां का नौजवान जहां भी गया अपनी प्रतिभा व परिश्रम का लोहा मनवाया है। एक समय बाढ़ की त्रासदी और कनेक्टिविटी के अभाव में क्षेत्र के लोग पलायन करते थे। आजीविका के लिए लोगों को विदेश जाना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ के नौजवान को बाहर नहीं जाना होगा, उससे यही रोजगार के ढेर सारे अवसर मिलेंगे। अब सरकार आपके द्वारा चुने गए विधायक सांसद डबल इंजन सरकार की ताकत का इस्तेमाल करते हुए विदेशों के लोगों को चिल्लूपार में काम करने का अवसर देने जा रहे हैं। विदेशी लोग आकर आपके यहाँ चाकरी करेंगे। सीएम ने विश्वास जताया कि विकास और विरासत की यात्रा के साथ चिल्लूपार वासी बिना रुके, डिगे, झुके, डरे निरंतर आगे बढ़ेंगे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत गरीबों का कल्याण, विकास योजना, सुरक्षा का बेहतरीन माहौल देते हुए माफिया को मिट्टी में मिलाता है। उन्होंने कहा कि एक समय राम जानकी मार्ग पर आवागमन ठप था, उपचार के लिए लखनऊ जाने को मजबूर होना पड़ता था, कनेक्टिविटी रोडवेज बस व अन्य साधन तक नहीं थे, जैसे तैसे व्यवस्था चल पाती थी, लेकिन आज कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। सीएम ने कहा कि 2017 के पहले कोई सोचता था कि धुरियापार में इंडियन ऑयल का सीएनजी प्लांट लगेगा या सहजनवा का गीडा धुरिया पार में आ पाएगा। यहाँ ग्रेटर गीडा बनाने जा रहे हैं हम। अभी से हजारों करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ गए हैं जिन्हें हमें उद्योग के रूप में स्थापित करना है। इसमें सीमेंट की फैक्ट्री धुरिया पार में लगने जा रही है, पावर प्लांट, आधुनिक पेंट और अत्याधुनिक डिस्टिलरी जहाँ मॉडर्न मेडिसिन एलोपैथ की दवा भी बनेगी। गोरखपुर जिले में बड़ा मंगल हर मंगल को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। 16 जून को बड़े मंगल पर शहर के विभिन्न मंदिरों में बजरंगबली की पूजा अर्चना श्रद्धालुओं ने की। इसके साथ ही जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया गया जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जिले में योग दिवस 21 जून को धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर गोरखनाथ मंदिर व गोरखनाथ मंदिर के में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से योग दिवस पर शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। 21 जून को योग दिवस को लेकर गोरखनाथ मंदिर के स्मृति भवन में योग किया जाएगा।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आबो हवा।
1: जब भी की जाती है तो इसका सीधा संबंध पेड़ पौधों से है और पेड़ों के संरक्षण के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि लोग इनकी उपयोगिता को गंभीरता से समझें। जब हम वन का नाम लेते हैं तब हमारी आंखों के सामने तरह तरह के हरे भरे चित्र उभरने लगते हैं। इनमें झाड़ियाँ, घास, लताएं, वृक्ष आदि विभिन्न रूप से शामिल होते हैं। वे एक दूसरे के सहारे जीते हैं और फैलते फूलते हैं। मात्र यह सोचना कि वन केवल लकड़ी की खाने हैं गलत है। वन केवल लकड़ी की खाने नहीं है, हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा को कम करने में वन बड़े सहायक होते हैं। वन प्राण रक्षक वायु ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करते हैं, इसीलिए वनों का संरक्षण जरूरी है। सच तो यह है कि कल तक जहां वन थे आज कुछ भी नहीं है। वनों को जंगल की आग, जानवरों एवं लकड़ी के तस्करों से बचाना होगा। इससे वनों की कई किस्में अपने आप उग आएंगी। वनों का विस्तार करने में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पक्षियों को अपनी ओर खींचने वाले पेड़ों के आसपास उनके द्वारा लाए हुए बीजों के कारण कई पेड़ पौधे उग आते हैं। यद्यपि पेड़ों को पानी की जरूरत कम से कम होती है, तथापि नए लगाए गए पौधों के लिए कुछ समय तक जल की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। यह व्यवस्था पोखर, तालाब और पहाड़ी ढालों पर कतार में गड्ढे बनाकर हो सकती है। इसे वृक्षारोपण कार्यक्रम का एक जरूरी हिस्सा समझना चाहिए। वनों की विविधता बनाए रखने के लिए तरह तरह के पेड़ पौधे, झाड़ियों और लताएं पुनः रोपनी चाहिए। आज जिस तरह से वनों की कटाई की जा रही है वह चिंता का विषय है। वनों से पर्यावरण स्वच्छ बना रहता है। मानव का अस्तित्व ही पेड़ पौधों पर निर्भर है। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर स्थित सभी जीवों के जीवन का आधार ही वनस्पतियां ही है। यदि पृथ्वी पर पेड़ पौधे ना होते तो यह जीवन शून्य और उजाड़ स्थान होता, चारों ओर एक वीरानी सी छाई हुई होती। चाहे कोई भी युग हो, मानव सभ्यता के विकास में पेड़ पौधों का महत्व रहा ही है। एक समय था जब मानव जंगलों में निवास करता था, फल फूल खाकर अपना गुजारा करता था, पेड़ों के तले विश्राम करता था, पेड़ों की शाखाओं पर सोता था। बाद में उसने पेड़ों की लकड़ी से चाक बनाकर मिट्टी के बर्तनों का निर्माण किया। उसने लकड़ी की ही गाड़ी स्लेज बनाई। भारतीय ग्रामीण जीवन का सदियों तक आधार बनी बैलगाड़ी लकड़ी की ही बनी थी। भारत के चिकित्सकों ने पेड़ पौधों पर आधारित चिकित्सा विधि आयुर्वेद की खोज की। पेड़ पौधों से प्राप्त घास फूस और लकड़ी से हमने घर बनाए, इन्हें जलाकर खाना पकाया। वनस्पतियां कदम कदम पर मानव को सहयोग देती रही। यहां तक कि मृत्यु के बाद जिस चिता पर मनुष्य को जलाया जाता रहा है वह भी लकड़ी की ही निर्मित होती है। पेड़ पौधे वायु को प्रदूषण मुक्त रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार महादेव गरल पीकर पचा गए, उसी तरह वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड रूपी गरल पीकर जीव जंतुओं को ऑक्सीजन रूपी प्राणदायी गैस भेंट करते हैं। भीषण गर्मी में जबकि भयानक लू चलती है, पेड़ पौधे वातावरण को ठंडा रखने में तथा अपने आश्रित को ठंडी छांव देने में बहुत मदद करते हैं। तरह तरह के स्वादिष्ट फल, जड़ी बूटियां, इमारती लकड़ी, कपास, गोंद, रबड़ आदि भेंट कर ये हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। कई पेड़ पौधों के पत्ते तो उपयोग में भी लाए जाते हैं, जैसे कि आम और केले के पत्ते। आम और केले के पत्ते पूजा पाठ में काम आते हैं। खजूर, नारियल, ताड़ आदि के पत्तों से टोकरी, चटाई आदि वस्तुएं बनाई जाती है। वनों की निरंतर हो रहे कटाव को रोककर दुर्लभ होते जा रहे वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस समय जबकि दुनिया के लोग विकास की दौड़ में अपने पर्यावरण के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, पेड़ पौधों को लगाकर पृथ्वी के पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी हम सब की है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबो हवा, विषय था हरियाली और पर्यावरण, आलेख और वाचन था मोनिका विजय का। FM 102.2 मेगाहर्ष पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम परिचर्चा, वर्तमान संदर्भ में योग की आवश्यकता। प्रतिभागी हैं पीयूष द्विवेदी, चंद्र प्रकाश, दीपिका पाराशर और संचालन कर रहे हैं OP सिंह।
1: मानवीय जीवन में योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में, भारतीय जीवन शैली में हमेशा से ही योग को लेकर बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ चिंतन और मनन किया गया है। अगर हम ये कहें कि जीवन जीने का तरीका लोगों ने योग से ही सीखा है, या कहें कि योग करके जीने का अपना जो तरीका है वो ईजाद किया है, तो ये भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वर्तमान संदर्भों में योग हमारे जीवन में किस तरह समाहित है, योग से अगर हम जुड़ते हैं तो हमारे लिए क्या फ़ायदे हो सकते हैं, योग हमको किस तरह मदद कर सकता है अपने न सिर्फ व्यक्तित्व के विकास में बल्कि जीवन की उन सहूलियतों को पैदा करने में भी जो अचानक पैदा हुई परिस्थितियों में, अचानक आई हुई परिस्थितियों में कई बार हमको दो चार जब होना पड़ता है तो हमारी समझ में नहीं आता कि हम इन परिस्थितियों से किस तरह दो चार हों, इनसे कैसे निजात पाएं, इनसे कैसे निकल करके आएं। तो योग वहाँ हमारी कितनी मदद कर सकता है, ये आज हमारी चर्चा का विषय है। और हमारे साथ हैं कुमारी दीपिका पाराशर जी, जो योग शिक्षक हैं, प्रशिक्षक हैं, योग से जुड़ी हुई है। दो युवा साथी जो योग साधक हैं, भाई चंद्र प्रकाश हैं और भाई पीयूष द्विवेदी हैं। आपसे हम जानेंगे और जाने उससे पहले श्रोताओं के लिए मैं आपका अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप आए और इस हमारी चर्चा में शामिल हुए। दीपिका जी, योग को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है, लेकिन जब कभी व्यावहारिक रूप में हम ये बात करते हैं कि क्या हम योग से जुड़ सकते हैं, योग को अपना सकते हैं, तो इसी रूप में दो चार होते हैं कि क्या योग सबके लिए है।
2: बिल्कुल जी, योग सबके लिए है।
1: तो उस पे हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को बताएं कि योग अगर हम सबके लिए है तो हम उससे कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे उसको अपना सकते हैं।
2: देखिए, योग शब्द संस्कृत के शब्द युज धातु से बना है जिसका अर्थ ही जोड़ना होता है
1: जी।
2: इसमें शरीर, मन और आत्मा को जोड़ना, ये तो इसकी एक शारीरिक भाषा के अनुसार योग की परिभाषा है। लेकिन हम व्यक्तिगत जीवन में या सामाजिक जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे हमें जुड़ना होता है, जैसे कि परिवार है, समाज है, आर्थिक स्थितियां हैं, और जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है पर्यावरण, उसके साथ भी हमें जुड़ना है। तो इन सब चीजों में योग हमें इन सब के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं और प्रकृति की ओर लौटते हैं, तो योग हमें इन सब में बहुत मदद करता है। आप योग करेंगे तो योग अनुभव का विषय ज्यादा है और सैद्धांतिक विषय कम है, इसलिए आप इससे में जितनी साधना करेंगे उतना आपको इसका अनुभव प्राप्त होगा कि हम किस तरह अपने आसपास से, अपने प्रकृति से, अपने आप से किस तरह जुड़ रहे हैं और किस तरह हम अपने आप को जान रहे हैं, इन सब विषयों के विषय में हमें पता चलेगा
1: जी। यानी आपका कहने का आशय यह है कि ऐसे सिद्धांत जिनको हम करके देख सकते हैं, अपना के देख सकते हैं, वो योग है। हाँ। और निश्चित तौर पर जब हम जुड़ते हैं, चाहे अपने जीवन से जुड़े, चाहे अपने आप से जुड़े या अपनी ये परिवेश और परिस्थितियों से जुड़े, उसमें योग हमारी मदद करता है। तो आजकल जैसा कि भागदौड़ का जीवन है, जीवन बड़ी द्रुत गति से चल रहा है, परिस्थितियां बड़ी विकट है, हर आदमी अपने जीवन जीने की जद्दोजहद में बस भागा चला जा रहा है।
2: जी, जी।
1: तो सबसे बड़ी जो प्रश्न उठता है कि समय का अभाव हर व्यक्ति अपने जीवन में मान करके चल रहा है, तो क्या आज के उसमें संभव है कि इस योग जैसी चीज के लिए, प्राणायाम जैसी चीज के लिए या जो और भी योग के आयाम है उनके लिए हम समय निकाल पाए, क्या ऐसा संभव है इसमें?
2: जी बिल्कुल संभव है। आज हम अपने आप में डिसिप्लिन नहीं लाते हैं। एक्चुअली हमारा जो डे टू डे लाइफ है वो इतनी बिगड़ चुकी है कि हम इतना असंतुलन आ गया है कि हम अपने आप पर ध्यान नहीं

0: दे पा रहे हैं। ना खाने का ध्यान है, ना जगने का ध्यान है और ना सोने का ध्यान है। तो गीता में 6 अध्याय में 17वां श्लोक है, उसमें कहा गया है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न प्रबोधस्य योगो भवति दुखः। यानी कि आप उचित आहार लेंगे, उचित निद्रा लेंगे, उचित खान पान रखेंगे, योग जैसे विषय से आप अपने पूरे शरीर, तन, मन और समाज में एक संतुलन पैदा कर सकेंगे।
1: जी जी, यानी तो बात नजरे की है, बात समझने की है, बात अपनाने की है, समय अपने आप निकल आता है। हमारे साथ योग साधक हैं पीयूष जी, आप तो चूंकि योग जैसी चीजों को करते हैं, जीवन में अपनाया हुआ है और युवा भी हैं, क्योंकि आज के युवा के पास थोड़ा वक्त कम है ऐसा मान के चला जाता है, तो आप जब इसको अपनाते हैं, करते हैं, तो क्या लगता है कि संभव हो पाता है इसमें?
2: आज के समय बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा व्यस्त हों, हर चीज के लिए हमारे पास समय है, लेकिन हम इसके लिए भी समय निकाल सकते हैं। बस हमें अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है, प्रायोरिटीज को हम ठीक से आगे चल रहे हैं, इस योग को भी हम अपनी प्राथमिकता पे लेके चलते हैं, तो बिल्कुल हम इसे आज के समय में भी कर सकते हैं। हमारे पास सुबह हम उठते ही 7:30 बजे हैं और हम समय पे उठ रहे हैं 1 घंटा पहले, तो 1 घंटा हमारे पास है
1: जी।
2: जो अक्सर आज की पीढ़ी जो खेलों में गेम्स में अपना समय व्यतीत कर रही है, थोड़ा इन सबको कम करके हम 15 मिनट योग के लिए दे दें, 15 मिनट ध्यान के लिए दे दें, तो भी हम इससे बहुत कुछ लाभान्वित हो सकते हैं
1: जी। तो ये 15 मिनट जो वक्त निकाल के आपने जीवन के उससे चुरा के इस जगह लगाया, क्योंकि आपने ऐसा लगा कि योग शायद मेरे जीवन में एक बेहतर परिणाम लाएगा, मुझे बेहतर बनाने में, मेरे व्यक्तित्व के निखार में ये शायद अच्छा लगेगा, तो क्या आपने जब इसको वक्त दिया, करके देखा, तो ऐसा लगा कि नहीं मैं सही था और करके मुझे अच्छा लगा उसमें?
2: नहीं बिल्कुल, मैं अपना कुछ व्यक्ति को बताना चाहूंगा सर, इससे बहुत फायदे होते हैं आपको। आंतरिक चेतना आपको मिलती है जब आप योग करते हैं, थोड़ी देर प्राणायाम आप करते हैं, तो आपके अंदर एक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जो ऊर्जा आपको भले ही आप 5 घंटे सो रहे हैं, लेकिन आप उस ऊर्जा के साथ आप 8 घंटे 9 घंटे सोने के बाद की जो ऊर्जा होती है उसका अनुभव आप कर सकते हैं। आप कम घंटे सो के भी ज्यादा काम कर सकते हैं और ज्यादा प्रभावकारी तरीके से कर सकते हैं।
1: यानी योग न सिर्फ आपको ऊर्जा देता है, बल्कि आपके जो फिजिकल जो लाइफ है, फिजिकल जो बॉडी की नीड है, उसको भी कम समय में पूरा करता है।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये आप कह रहे हैं।
2: और एक चीज और समय युवाओं के लिए कहना चाहूंगा कि हम काफी घंटे समय जिम में देने के लिए तैयार हैं, आधा घंटा पौन घंटा ट्रेनर की कड़ी देखरेख के दौरान, जो कि हमारे से बाहरी शरीर को बलिष्ठ बनाता है, लेकिन थोड़ा अगर हम योग को और हम थोड़ा सा प्राणायाम को समय दे रहे हैं, तो ये हमारे बाहरी शरीर को तो बलिष्ठ बनाते ही है, साथ ही साथ जो हमारे अंदर के जो नाजुक अंग हैं, जैसे हमारी किडनी है, लिवर है, आंत है, इन सारे अंगों के लिए भी ये बहुत लाभकारी है, क्योंकि जिम से बाहरी रूप से सौष्ठव प्रदान करते हैं, आंतरिक सौष्ठव हमें ये प्राणायाम ही दे सकता है,
1: योग और प्राणायाम दे सकता है। चंद्रप्रकाश जी, आप भी इससे जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं, आपने भी देखा है उसमें, भाई पीयूष ने जो बातें कही कि न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक और हमारी जो आत्मिक संतुष्टि है उसको भी योग से हमें एक खुराक मिलती है, तो जो जो खुराक हमको मिलती है आत्मीय तौर पर, आंतरिक तौर पर, वो कहीं हमारे व्यक्तित्व के विकास में, उसको निखारने में, चाहे जीवन को में अनुशासन की बात हो, जीवन में परिस्थितियों से सामंजस्य की बात हो, या किसी अचानक आई हुई परिस्थितियों में अपने आप को रिएक्ट करने की बात हो, क्या ऐसा लगता है कि ये जो आंतरिक ऊर्जा हमको योग और प्राणायाम से मिलती है वो हमारी ओवरऑल कहीं मदद करती है उसमें?
3: जी बिल्कुल, मैं सिस्टर से दीपिका जी से भी सहमत हूँ और भाई मेरे पीयूष जी उनसे भी बिल्कुल सहमत हूँ कि योग हमारे जीवन में हमेशा सहायता करता है। आज की जो जिज्जत है चल रही है, आप देख सकते हैं कि 15 साल से लेकर के और आपके 60 साल के व्यक्ति के अंदर सिर्फ एक ही लड़ाई है, कैसे मैं कामयाब नहीं हो रहा, इतनी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन वो उस चीज़ को पाने के लिए अपने आप को पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन रिजल्ट भी नहीं मिल पाता उनको, मन माफी रिजल्ट भी नहीं मिल पाता। उसका कारण क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हिस्सा उनका छूट रहा है जिससे वो अपना उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं, खाली भौतिक चीजों पर ही अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं। जो एक ईश्वरीय पावर है जो योग के द्वारा हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, वो हम उसको छू नहीं पा रहे हैं। अगर हम उसको अपने जीवन में ढाल के देखना चाहें तो हमारे अंदर एक जीवन में संतुलन का अनुभव करेंगे हम। अगर वो संतुलन अगर हमारे अंदर आ जाएगा तो हमें अपनी परिस्थितियों में या समस्याओं में हमें समय मिल जाएगा उनमें रिएक्ट करने का। वो आपको ताकत सिर्फ योग ही दे सकता है, जो मैंने अनुभव करके पाया है। योग आपको वो चीज देता है जो आपको समाज से नहीं मिल सकती, आपके द्वारा नहीं मिल सकती, कमाई के द्वारा या किसी परवेश आपको दे नहीं सकता। योग आपको सिर्फ शांति दे सकता है और शांति

0: में जो निर्णय लिए जाते हैं वो हमेशा सकारात्मक होते हैं। और शांति के लिए आपको हमेशा योग करना ही पड़ेगा, ये मेरा निजी मानना
1: है। करना ही चाहिए, पड़ेगा नहीं, करना ही चाहिए, हमारे जीवन की आवश्यकता है। दीपिका जी, जैसा ये योग साधक दोनों हमारी बात कर रहे हैं, बड़ी व्यावहारिक और प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आज के संदर्भ में जब हम योग की बात करते हैं या उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं तो योग के बहुत छोटे पक्ष को हम सामने रख करके चलते हैं, जिसमें सिर्फ प्राणायाम और आसन तक सीमित है। योग का अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा व्यापक स्वरूप है, जैसा इनकी बातों से लगा कि ये थोड़ा हमसे और पहले आगे निकल गए, क्योंकि हम शायद योग को शरीर और मानसिक उससे जोड़ रहे थे, ये आत्मिक संतुष्टि की बात कर रहे हैं। तो योग का अगर देखा जाए तो जो मायने बड़े व्यापक हैं जीवन में।
2: हाँ बिल्कुल, बहुत व्यापक।

0: अगर देखा जाए तो जो मायने बड़े व्यापक हैं जीवन में।
1: हाँ बिल्कुल, बहुत व्यापक हैं। हम प्राचीन वेदों, पुराणों, उपनिषदों में हम योग के विषय में पढ़ते हैं कि श्वेता श्वेतर उपनिषद में लिखा है, न तश्चय न रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगा निमेम शरीरम, यानी कि आप योग करके बुढ़ापे को जीत सकते हैं, मृत्यु को जीत सकते हैं और रोगों से दूर रह सकते हैं। अग्नि में, जो योग की अग्नि में जलकर एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, ये एक जीवन पद्धति है।
0: जी,
1: और ये मन को ही संतुष्ट नहीं करता, ये आत्मा को संतुष्ट करता है योग।
0: जी। तो चंद्र प्रकाश जी, आपकी बात को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं और जोड़ने की कोशिश करते हैं दीपिका जी से, जो बात कर रही है कि योग से जो हमको मिलता है। आपने बात कही कि न सिर्फ भौतिक पक्ष की बात करें हम, बल्कि जो जीवन का एक दूसरा पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष, उसकी भी बात कर लें तो शायद योग के माध्यम से वो पूरी हो सकती है। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज का जो व्यक्ति है उसके सामने का जो लक्ष्य है वो एकाकी लेकर चल रहा है, वो पैसे और पैसे से जुड़ी हुई दुनिया को ही देख रहा है, उसका जो दूसरा पक्ष है, आत्मिक पक्ष है, या जीवन का जो लक्ष्य है उसका वो छोटा हो गया है, या बड़े लक्ष्य को वो देख नहीं पा रहा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं इसमें?
2: बिल्कुल, आज का जो समय चल रहा है उसमें सिर्फ आदमी अपने आप को सीमित करके रखना चाहता है, सीमित दायरों से, सीमित दायरे के अंदर सब कुछ पाना चाहता है। लेकिन जीवन में सीमित दायरे से एक दूसरा पक्ष हमारा आध्यात्मिक पक्ष है, जिसे हम योग साधना के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। उससे जो मिलने वाली चीज़ें हैं अगर उनको हम जीवन में ढाल दें तो हमारा जो भौतिक पक्ष है उसके अंदर जितनी हम तरक्की देख पाएंगे या महसूस कर पाएंगे उसका आप अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि आपको ईश्वर के द्वारा जो मिलता है, जो योग के द्वारा जो आपको मिलता है, उससे जुड़ने पर वो भौतिकता से भी कहीं ज़्यादा होता है, जिसे आत्मसंतुष्टि कहते हैं। आज के समय में आत्मसंतुष्टि किसी को मिल नहीं पा रही है। जो मैं देख पा रहा हूँ वो सिर्फ 1 से 4, 4 से 8, 8 से 16 करना चाह रहा है, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता कि बहुत है मेरे लिए। बहुत की स्थिति आदमी जब ही ला सकता है जब वो आध्यात्मिक पक्ष को चखना चाहेगा, उसमें डूबना चाहेगा या उसकी शक्ति को लेना चाहेगा। वो आपको वहाँ संतुष्ट करेगा और संतुष्टि में जो आनंद मिलेगा, आप अपने आप को थोड़ा सा उससे अलग करेंगे, अलग होने पर आप उससे ईश्वर के प्रति जाएंगे। जब ईश्वर के प्रति हम जब जाते हैं तो हमारा एक पक्ष खुलता है जिसे बोलते हैं आध्यात्मिक पक्ष। जब हम आध्यात्मिक पक्ष और भौतिक पक्ष को साथ लेके चलेंगे तो उस वक्त हम वो अनुभव करते हैं जो हमारे पीछे महान पुरुषों ने प्राप्त किया। उन्होंने धन भी लिया, उन्होंने शांति भी ली और उन्होंने ईश्वर को भी पाया। लेकिन हम आज के दौर में सिर्फ क्या चाह रहे हैं ये सिर्फ आप खुद पसंद कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं।
0: यानी हम एकाकी जीवन जी रहे हैं, हम एक पक्षी जीवन जी रहे हैं, हम सिर्फ भौतिकता की चमक दमक में जीवन जी रहे हैं और इसीलिए कहीं बहुत कुछ पाकर के भी, साधन संपन्न होकर के भी, सुविधा संपन्न होकर के भी जीवन में न शांति है न संतोष है। पीयूष जी, क्या आप भी जैसा चंद्र प्रकाश जी कह रहे हैं, आप भी एक व्यावहारिक जीवन जी रहे हैं, एक पारिवारिक जीवन जी रहे, तो क्या लगता है कि शायद जीवन की जो हमारी दिशा है, जीवन के जो हमारे मायने या लक्ष्य कहीं आधे हैं, इसीलिए हम जीवन में अधूरापन कर रहे हैं? अगर शायद बैलेंस हो जाए, अगर व्यक्तित्व के विकास में हम दोनों चीज़ों को, भौतिकता और आध्यात्मिकता को शायद बराबर अगर तवज्जो दे दें तो हमारा कुछ काम बन सकता है।
3: जी बिल्कुल, मैं थोड़ा सहमत हूँ इससे। मैंने कहीं पढ़ा है कि जीवन एक जहाज की तरह, जिसके दो पंख हैं, एक भौतिक जीवन और एक आध्यात्मिक जीवन।
0: जी,
3: हम दोनों पक्षों को ही साधेंगे तभी हमारा जो जीवन रूपी विमान है तरीके से उड़ पाएगा, वरना यह जीवन धराशायी होकर जमीन पे गिर पड़ेगा।
0: यानी एक पंख से उड़ान संभव नहीं है।
3: हमें अपने आध्यात्मिक पक्ष को भी संभालना है और हमें भौतिक पक्ष को भी। सिर्फ पैसा रुपया ये सब चीजें नहीं है, हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति भी उतना ही काम करना है।
1: हाँ, यौगिक भाषा में इसे अभ्युदय और निःशेष की प्राप्ति कहा गया है। अभ्युदय मतलब भौतिक सांसारिक प्राप्ति और निःशेष मतलब आध्यात्मिक प्राप्ति, परमात्मा की ओर गमन। तो योग हमें वसुदेव कुटुम्बकम की भावना को सिखाता है और सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाव भवेत्।
0: जी जी, तो योग मतलब एक संपूर्णता देता है, न सिर्फ अपने घर परिवार या आसपास के परिवार में बल्कि जो संपूर्ण दुनिया है उसमें हम एकता और एक भाव ला सके, ये योग हमसे सिखाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये कहें कि कहते हैं कि आम के आम और गुठली के दाम, अगर हम योग करते हैं तो हमारा ये पक्ष भी सुधर जाता है और वो पक्ष भी सुधर जाता है। तो मतलब जो छोटे छोटे लाभ है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे मानसिक शांति को लेकर,
1: हाँ,
0: वो भी बैलेंस हो जाते हैं और आगे का पक्ष भी।
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्याएं हैं, आतंक

0: बाद है या नशाखोरी है या भ्रष्टाचार है, अगर हम योग को वर्तमान जीवन में युवाओं बच्चों वृद्धों के बीच में अगर हम इसको जागरूकता लाएंगे तो शायद उनका मन आत्मा परिवर्तित हो और वो एक सही रास्ते पर मानवता के कल्याण के रास्ते पर चल सकें। आज हम देखते हैं कि बाजार भी कलुषित हैं, काला बाजारी है और समाज भी कलुषित है, चोरी चकारी डकैती है। तो हम योग को एक व्यापक स्तर पर परिवार समाज देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आम लोगों के जीवन में लाएंगे या इसका अभ्यास करेंगे तो हम देखेंगे कि परिवार समाज देश और विश्व में परिवर्तन आ रहा है।
1: परिवर्तन आ रहा है और वो योग से संभव है। चंद्रप्रकाश जी चलते चलते क्या कहना चाहेंगे युवा, आप चूंकि आप तो युवा हैं और करके देख रहे हैं तो जो लाभ आपको मिल रहा है वो युवाओं को भी मिले तो कहीं वो तलाश कर सकते हैं कि भाई जहाँ भी संभव है जैसे भी संभव है योग से तो जुड़ा ही जा सकता है उसमें।
2: बिल्कुल हर, मैं ये कहता हूँ कि युवा को सबसे पहले जुड़ना चाहिए क्योंकि समाज की शुरुआत उसी से होती है। अगर युवा जुड़ेगा तो उससे इसका अनुभव पाएगा तो जीवन उसी को जीना है। हमारे बुजुर्गों का तो जीवन हो चुका जैसा उनका होना था लेकिन जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है आने वाले समाज की और पीछे जो देंगे हम उसकी। तो युवा को सबसे पहले आगे आना होगा इस योग के अंदर और उस सत्ता से जुड़ना होगा जो सब कुछ देता है। भौतिक जीवन ही सब कुछ नहीं है, योग भी करके देखिए और संतुष्टि पाइए और जीवन को आगे लेके जाइए।
1: पीयूष जी क्या कहना चाहेंगे?
3: चंद्रप्रकाश जी ने अपने आगे व्याख्यान में सब कुछ कह दिया है कि हाँ बिल्कुल हमें इस पे आगे बढ़ना चाहिए तभी हम अपने आप को संतुलित कर पाएंगे, तभी एक अच्छा स्वस्थ जीवन हम जी पाएंगे।
1: तो निश्चित तौर पर श्रोता बंधुओं योग के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है, योग के जितने आयामों की चर्चा की जाए उतना कम है। योग एक संपूर्ण और व्यावहारिक जीवन के साथ साथ एक प्राकृतिक जीवन जीने की कला भी हो सकता है अगर आप योग करते हैं। आप कैसे करते हैं, किस पद्धति से करते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप योग करते हैं और जैसा दीपिका जी ने शुरू में कहा था कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम योग है, तो उस तरफ जब आप चल देते हैं, उस मार्ग पर जब आप चल देते हैं तो निश्चित तौर पे उस तरफ से भी सहूलियतें और मदद आपको मिलना शुरू हो जाती है। और जब मदद मिलती है तो जीवन में आने वाली जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनका समाधान भी संभव हो पाता है। आप सब लोग आज आए और हमारे श्रोताओं के साथ अपने योग संबंधी जो व्यावहारिक अनुभव है वो आप लोगों ने बांटे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
4: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम परिचर्चा वर्तमान संदर्भ में योग की आवश्यकता। प्रतिभागी थे पीयूष द्विवेदी, चंद्र प्रकाश, दीपिका पाराशर और संचालन कर रहे थे ओपी सिंह। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गजलों में कलाकार है गुलाम अली।

अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की गाई गजलें। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना कुमार सानू अलका याग्निक को फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनारी में, और आइए सुनते हैं आशा भोसले को, फिल्म का नाम है उमराव जान।

सुनिधि चौहान, कैलाश खेर, जसविंदर नरोला और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म आपकी खातिर में। और आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल कुमार सानू को फिल्म आशिकी में।

अनुराधा पौडवाल कुमार सानू को अभी आपने सुना फिल्म आशिकी में। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं एक सूचना। प्रिय किसान भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर हुगली से देशभर के करोड़ों किसान भाइयों के बैंक खातों में 2000 की सहायता राशि सीधे हस्तांतरित करेंगे। सभी किसान भाई बहन अपना KYC और बैंक विवरण अवश्य जांच लें। किसान सम्मान निधि किसान की समृद्धि और सहायता की ओर भारत सरकार का एक मजबूत कदम है। सभी किसान भाई एवं देशवासी, इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों के माध्यम से KVK कृषि विश्वविद्यालय ICAR के अनुसंधान केंद्र कृषि उपज मंडी में उपलब्ध ऑडिटोरियम या खुले मंचों पर समूह में इकट्ठा होकर सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन केंद्र किसान चैनल पर भी सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं एक और कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स डॉक्टर में इस गुरुवार यानी कि आज 18 जून आज 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है किशोर व बच्चों में शारीरिक बदलाव एवं हार्मोनल परिवर्तन। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रमनीश प्रजापति, सलाहकार पीडियाट्रिक एवं हार्मोन विशेषज्ञ आकाश शेट्टी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94-1222-5575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में किशोर व बच्चों में शारीरिक बदलाव एवं हार्मोनल परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है किशोर व बच्चों में शारीरिक बदलाव एवं हार्मोनल परिवर्तन। श्रोताओं, यदि आपको आपके बच्चों में शारीरिक एवं हार्मोनल परिवर्तन जैसे आवाज का बदलना, डायबिटीज, मधुमेह, थायराइड, हार्मोनल असंतुलन जैसे

समस्याएं यानी हड्डियों का कमजोर होना, अत्यधिक मोटापा या बच्चों में असामान्य रूप से कम या अधिक विकास, लंबाई न बढ़ना आदि समस्याओं के समाधान के लिए पूछे सवाल डॉक्टर रमनीश प्रजापति, सलाहकार पीडियाट्रिक एवं हार्मोन विशेषज्ञ आकाशिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। श्रोताओं ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार 18 जून 2026 और समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कुमार सानू, अलका याग्निक को अभी आपने सुना फिल्म साजन में, और आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर को। फिल्म का नाम है धर्मात्मा।

0: लता मंगेशकर के गाए फिल्म प्रेम रोग के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की है।
1: हेलो हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हां श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है

0: 25 30 135, मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 एसटीडी कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो
2: हेलो आकाशवाणी
1: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: मैं ब्रज रेडियो श्रोता मित्र नेत्रपाल जी ग्राम नंगला विजयी राया से बोल रहा हूँ जी आपसे। सर
2: स्वागत है नेत्रपाल जी कार्यक्रम में आपका, कैसे हैं?
1: सही सर, आपका स्वास्थ्य क्यों स्वास्थ्य कैसा है सर?
2: बिल्कुल अच्छे हैं सभी लोग।
1: आज फिल्म है मदर इंडिया,
2: गीत कौन सा सुनेंगे?
1: नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे समरिया।
2: लीजिए सुनवाते हैं नेत्रपाल जी आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका
1: सर। राधे राधे
2: राधे राधे।

0: हेलो।
1: हेलो आकाशवाणी।
0: हाँ सर जी, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: नीति जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम अच्छे हैं। कौन साहब हैं हमारे फोन लाइन पर?
0: मैं जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह।
1: अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
0: धन्यवाद सर जी। सर कैसे हैं आपके परिवार आकाशवाणी जी?
1: एकदम अच्छे हैं। आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त। बस आपसे बात हो गई और अच्छे हो गए।
1: जी। और जबलपुर में कैसा है मौसम?
0: मौसम तो अभी सूखा ही है, 37-38 चलता रहता है, गर्मी
1: अच्छा
0: है उमस।
1: जी। और सब ठीक ठाक हैं घर में?
0: सब ठीक ठाक है, बस आपकी कृपा बनी रहे। आज
1: जी। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आज के कार्यक्रम में आपको?
0: पंडित जी से, पंडित जी मेरे मरने के बाद, रोटी कपड़ा और मकान।
1: लीजिए, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी
0: जी, दीक्षित साहब, सुहास का प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है।
0: और क्या हाल चाल है आपके दीक्षित साहब?
1: एकदम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: हम भी बहुत बढ़िया है, एकदम मस्त और दुष्ट हैं।
1: जी जी, अब परिचय हो जाए आपका।
0: हाँ जी, आपके रेडियो मित्र सुभाष गर्ग आपसे बातें कर रहे हैं।
1: जी जी गर्ग साहब, बहुत दिनों के बाद कॉल मिली है आपकी।
0: हाँ, मिलता ही नहीं है, क्या करें। और आप नाराज तो नहीं है हमसे?
1: हम अपने श्रोताओं से नाराज हो ही नहीं सकते।
0: ये बात तो सही है।
1: जी
0: जी, आज एक गाना लेकर आपकी सेवा में प्रस्तुत हुए हैं।
1: जी जी,
0: जब हम और आप साथ साथ हैं तो एक गाना सुनवा दीजिएगा। अल्लाह ये अदा कैसी है इन हसीना की, रूठे पल में न माने महीनों में।
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश, बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब।
0: जी, आपका भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सर, नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो, नमस्ते सर। सर,
0: नमस्कार
1: हम सचिन कुमार बोल रहे हैं, गांव छोली से।
0: सचिन, कैसे हैं?
1: सर बढ़िया हैं, आप बताइए, आप कैसे हैं? सर,
0: हम भी अच्छे हैं। क्या चल रहा है गांव में आपका?
1: गांव में बढ़िया है एकदम, सभी पेड़ों की हवा ले रहे हैं।
0: गांव में तो बहुत अच्छी हवा लगती होगी,
1: यस सर,
0: गांव की बात ही निराली है।
1: यस सर।
0: और खेतों में क्या हो रहा है?
1: सर, खेतों में तो अभी कुछ बया नहीं है, पर कुछ दिनों में बहेंगे।
0: अच्छा, बताइए आज
1: यस
0: कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: सर, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। धन्यवाद
0: लीजिए, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: सर, नमस्ते सर।
0: नमस्ते।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: जी नमस्कार जी,
0: नमस्कार
1: मैं सुरेश चंद शर्मा सहरसे बोल रहा हूँ।
0: शर्मा साहब, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: और सर कैसे हो? आकाशवाणी की
0: सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं ये बताइए।
1: हम भी बढ़िया हैं सर। बढ़िया
0: और क्या चल रहा है?
1: चल रहा, धंधा पानी परचूने दुकान करते हैं।
0: जी, बहुत दिनों के बाद कॉल मिला है आपका।
1: हाँ सर, मन करता है सर लगा लेते हैं।
0: जी, बहुत अच्छा किया आपने, बात करते रहा करिए।
1: गाना सुनना है,
0: बताइए कौन सा गीत सुनवाएं।
1: वो गाना सुनना है, एक मोटे दाल रहेगा निकलो जब दाल से। श्री
0: लीजिए, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका
1: हरदास।
0: श्री हरिदास।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए श्रोताओं। स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर में इस गुरुवार यानी कि आज 18 जून को 12 बजे से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है किशोर वय बच्चों में शारीरिक बदलाव एवं हार्मोनल

परिवर्तन। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर रमनीश प्रजापति, सलाहकार पीडियाट्रिक एवं हार्मोन विशेषज्ञ आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412255575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में किशोर वय बच्चों में शारीरिक बदलाव एवं हार्मोनल परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है किशोर वय बच्चों में शारीरिक बदलाव एवं हार्मोनल परिवर्तन। श्रोताओं, यदि आपको आपके बच्चों में शारीरिक एवं हार्मोनल परिवर्तन जैसे आवाज़ का बदलना, डायबिटीज, मधुमेह, थायराइड, हार्मोनल असंतुलन जैसे PCOS, मासिक धर्म की समस्याएं, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों में कमजोरी आना, अत्यधिक मोटापा या बच्चों में असामान्य रूप से कम या अधिक विकास, लंबाई न बढ़ना आदि समस्याओं के समाधान के लिए पूछिए सवाल डॉक्टर रमनीश प्रजापति, सलाहकार पीडियाट्रिक एवं हार्मोन विशेषज्ञ आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा गुरुवार यानी कि आज 18 जून 2026, समय दिन में 12 बजे से। सूचना समाप्त हुई। एक और सूचना, प्रिय किसान भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर हुगली से देश भर के करोड़ों किसान भाइयों के बैंक खातों में ₹2000 की सहायता राशि सीधे हस्तांतरित करेंगे। सभी किसान भाई बहन अपना EKYC और बैंक विवरण अवश्य जांच लें। किसान सम्मान निधि किसानों की समृद्धि और सहायता की ओर भारत सरकार का एक मजबूत कदम है। सभी किसान भाई एवं देशवासी इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों के माध्यम से KVK कृषि विश्वविद्यालय, ICAR के अनुसंधान कृषि उपज मंडी में उपलब्ध ऑडिटोरियम या खुले मंचों पर समूह में इकट्ठा होकर सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन केंद्र किसान चैनल पर भी सुना जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत के इस सफर में श्रोता साथियों आपका स्वागत है और आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र उषा पांडे। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। साथियों आपसे होगी चर्चा दो अलग अलग विषयों पर, लेकिन उससे पहले आइए सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये पहला प्यारा सा गीत।

साथियों, आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के बारे में। क्या है ये? ये हर वर्ष 18 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को ऐसे भोजन और खान पान की आदतों के प्रति जागरूक करना है जो पर्यावरण, कृषि, स्थानीय संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायक हो। ये दिवस हमें सिखाता है कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, किसानों और समाज से जुड़ा हुआ है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का अर्थ है ऐसा भोजन तैयार करना और उसका उपभोग करना जिससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो, भोजन की बर्बादी कम हो और स्थानीय किसानों को समर्थन मिले और साथ ही पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। अन्न केवल भोजन नहीं, जीवन का आधार है। प्रकृति का यह अनुपम उपहार है। आइए ऐसा भोजन अपनाएं जो धरती को भी मुस्कुराना सिखाए।

साथियों, हम बात कर रहे थे सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के बारे में। ऐसा भोजन उत्पादन तैयारी उपभोग जो पर्यावरण संस्कृति अर्थव्यवस्था और समाज के लिए लाभदायक हो, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी करना इसमें शामिल है। यह दिवस हमें समझाता है कि हमारी छोटी छोटी आदतें भी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। यदि हम आवश्यकता के अनुसार भोजन लें, स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें और भोजन की बर्बादी रोकें, तो हम एक स्वस्थ और टिकाऊ विश्व के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे का मुख्य संदेश है कि स्वस्थ भोजन और स्वस्थ पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हमें ऐसी जीवन शैली अपनानी चाहिए जो प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखे और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखे। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि भोजन का सम्मान करना, किसानों के परिश्रम का सम्मान करना और पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। थाली में जितना लें उतना ही खाएं, अन्न का सम्मान कर दुनिया को सजाएं। हर भोजन में प्रकृति का प्यार समाया है, सतत जीवन का यही सच्चा संदेश लाया है। सही भोजन, स्वस्थ जीवन और सुरक्षित पर्यावरण, यही है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी।

साथियों, हम बात कर रहे थे सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के बारे में, और अब आइए चर्चा करते हैं, सेवा का दीप जलाएं हम, मानवता का मान बढ़ाएं हम, निस्वार्थ भाव से आगे बढ़कर सतत विकास का पथ अपनाएं हम, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का हाथ थामते हैं वही स्वयं सेवक समाज और राष्ट्र के भविष्य को संवारते हैं। साथियों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डे घोषित किया है। इसका उद्देश्य स्वयं सेवकों के योगदान को सम्मान देना और सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs की प्राप्ति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना है। स्वयं सेवक वे लोग होते हैं जो बिना किसी आर्थिक लाभ की अपेक्षा के समाज, पर्यावरण और मानवता की सेवा में अपना समय, श्रम, कौशल समर्पित कर देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, आपदा राहत, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय जैसे अनेक क्षेत्रों में स्वयं सेवकों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2026 को इस विशेष वर्ष के रूप में घोषित करके संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के देशों से आह्वान किया है कि वे स्वयं सेवा को अपनी विकास योजनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएं। सरकारों, सामाजिक

संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्रों को स्वयं सेवा को बढ़ावा देने, स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देने और उनके कार्यों को मान्यता देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सन 2026 के लिए एवरी कंट्रीब्यूशन मैटर्स, अर्थात हर योगदान महत्वपूर्ण है, विषय निर्धारित किया गया है। यह संदेश बताता है कि समाज के विकास में प्रत्येक व्यक्ति का छोटे से छोटा योगदान भी मूल्यवान है। आपसे चर्चा होती रहेगी इसी तरह से, लेकिन आइए सुन लेते हैं उससे पहले कार्यक्रम का ये अगला गीत।

साथियों, हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। इस वर्ष के दौरान विभिन्न जागरूकता अभियान, स्वयंसेवी कार्यक्रम, प्रशिक्षण शिविर और सामुदायिक विकास गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में सेवा भावना को बढ़ाना, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में जनभागीदारी सुनिश्चित करना है। आज जब विश्व जलवायु परिवर्तन, गरीबी, असमानता और अनेक सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब स्वयं सेवकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वे समाज को जोड़ने, सहयोग की भावना बढ़ाने और सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य करते हैं। अंततः इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2026 हमें यह संदेश देता है कि प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए थोड़ा सा समय और प्रयास समर्पित करे तो एक बेहतर और अच्छा, बल्कि मानवता के प्रति हमारी जिम्मेदारी और समर्पण का जो प्रतीक है, ऐसा जीवन समावेशी टिकाऊ भविष्य का निर्माण भी किया जा सकता है। न कोई स्वार्थ, न कोई अभिमान, सेवा ही है उनका सम्मान। स्वयं सेवकों के प्रयासों से ही सजेगा विकास का नवविहान। हर योगदान महत्वपूर्ण है, स्वयं सेवा से ही सतत विकास संभव है। इसी विचार के साथ, इसी चर्चा के साथ अनुमति दीजिए उषा पांडे को, स्वीकार कीजिए। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। आज का विषय है किशोर वय बच्चों में शारीरिक बदलाव एवं हार्मोनल परिवर्तन। विशेषज्ञ हैं रमनीश प्रजापति, सलाहकार पीडियाट्रिक एवं हार्मोन विशेषज्ञ आकाश, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स मथुरा।
1: है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर शिरादा वैली मथुरा।
2: श्रोताओं नमस्कार। आपके अपने कार्यक्रम जिसका नाम है आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर, ये कार्यक्रम हम हर गुरुवार को 12 बजे आपके लिए लेकर के आते हैं। बहुत सारे विषय हमारे जीवन से जुड़े हुए, हमारी जिंदगी से जुड़े हुए, ऐसा ही एक विषय आज हमारे साथ है। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमनीश प्रजापति साहब। आप वरिष्ठ जो पीडियाट्रिक जो प्रॉब्लम होती हैं उनको देखते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसको देखते हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो हार्मोन से संबंधित है हम देखते हैं कि जीवन में, चाहे डायबिटीज हो, चाहे थायराइड हो, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं या इंटरनल फिजियोलॉजी है हमारे हार्मोन्स पर आधारित होती है। और वो जब हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो हमारे जो शारीरिक क्रियाएं हैं, शारीरिक स्थितियां हैं वो बदलती हैं, चाहे हमारा शारीरिक विकास हो, चाहे हमारी दिन प्रतिदिन की चीज़ें हों, वो बहुत कुछ हार्मोन्स पर डिपेंड करती हैं। तो ये समस्याएं आज हम लेंगे। हमारी दो टेलीफोन लाइनें खुली हुई हैं, 102-530-135 नंबर है, 0565 कोड लगाएं, या व्हाट्सएप नंबर है 94-122-25-575। इन दोनों उस पर आप अपनी जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो शारीरिक विकास की हो, चाहे शारीरिक फिजियोलॉजी की हो, तो ये आप हमको भेज सकते हैं। हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर साहब, आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार।
3: नमस्कार सर जी।
2: तो ये जो सब्जेक्ट आज हम लेकर के चल रहे हैं अपने बच्चों के लिए, विशेषकर जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो 13-14 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चे हैं, उसमें हम विशेषकर युवाओं की बात कर रहे हैं उसमें, तो बहुत सारे एक ऊपर नीचे रहे दौर से वो गुजरते हैं, उसमें एक मेंटल चेंज होता है, शारीरिक चेंज होता है, फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, तो वो खुद ही दो चार होते रहते हैं। परिवार में थोड़ा बहुत सलाह मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो अपने समूह में ही उनका इंटरनल एक्सचेंज होता है, बातचीतें होती हैं, तो वहाँ समस्याएं ज़्यादा होती हैं, समाधान नहीं होते। तो आज थोड़ा सा खुल करके बताएं कि युवाओं की जो इस तरह की समस्या है ये कितनी बड़ी समस्या है जिससे वो रोज़ाना दो चार होते रहते परिवार में।
3: देखिए, जो युवाओं की जो समस्या हैं, स्पेशली जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, जो जिस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसमें ना जो जैसा कि आपने बताया कि जो अपने हम उम्र लोगों से जो बात करते हैं, जो चीज़ें समझ रहे हैं, उनमें ना तो जो बच्चा जो बात कर रहा है उसको कोई समझ है, और ना जिससे वो सलाह ले रहा है उसको कोई समझ है। और हमारी जो सोसाइटी इस तरीके से डेवलप हुई है पौराणिक तौर पे टाइम पे, ये सब चीज़ें बहुत ही ओपनली डिस्कस की जाती थी, ओपनली समझी जाती थी, ताकि ना बहुत अच्छा, मतलब हमारे पास हमारे जो मंदिरों में सारी आकृतियां भी हैं, बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, ये दर्शाता है कि हम लोग इस पूरे सब्जेक्ट पे काफी ज्यादा खुले थे, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है, हेल्दी चीज है। अब जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है, सोसाइटी बदलती जा रही है, सब लोग इस चीज को दबा के रखने लग गए हैं, छुपा के रखने लग गए। अब जिसके दिक्कत नहीं है उसके लिए तो कोई बात नहीं, पर जिसको दिक्कत है वो घुटता चला जाता है, उसके अपने आप जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत खराब होता है और आगे चल के और भी दिक्कतें आती हैं, डिप्रेशन भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ऐसे में जितना आप इस चीज के बारे में किसी विशेषज्ञ से, जैसे कि अगर कोई एंडोक्राइन रिलेटेड चीज है यानी हार्मोन से रिलेटेड कोई भी चीज है, उसके लिए अगर आप एक्सपर्ट के पास जाते हैं, बात करते हैं, तो आपको उस चीज की डेप्थ में नॉलेज मिलेगी। पहली चीज आपको ये पता चलेगा कि क्या वो नॉर्मल है, क्या वो नॉर्मल नहीं है, और तीसरी चीज उसका हल मिलेगा।
2: जी जी जी जी। इस बीच में एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, डॉक्टर साहब बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, चलिए संपर्क नहीं हो पाया उसमें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो चीज है वो इतना आज के समय में उस पर चर्चा कम हो रही है, लेकिन एक समय ऐसा था कि जब लोग इस पर खुल के चर्चा करते थे और इसका एक विज्ञान था, एक जानकारी थी और पूरी जानकारी लोगों के पास थी जिसको उन्होंने सिस्टम में लेकर के आए। श्रोता जुड़ रहे हैं उससे। हेलो हेलो जी, बोलिए। नमस्कार। संपर्क नहीं हो पा रहा उसमें, तो कहीं बीच में फिर उस पर चर्चा होना बंद हो गया। उसको एक जैसे कहते हैं ना, ये कहने में भी आता है कि ये गुप्त रोग है, गुप्त अंग है, तो कहीं उस पर उसको एक ऐसा चर्चा से बाहर का विषय बना दिया।
3: हाँ, अब ये जो टर्म ही यूज कर रहे हैं गुप्त अंग, ऐसा कुछ चीज नहीं है। हाँ। पूरा शरीर का पार्ट है, कोई गुप्त नहीं है इसमें, ऐसी कोई चीज नहीं है।
2: हाँ,
3: वो उस चीज को, मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ना, हमारी जो सभ्यता है, लोग कई बार बोलते हैं कि हमारी सभ्यता में ऐसा नहीं होता या ऐसा कुछ नहीं होता, हमारी सभ्यता वन ऑफ द मोस्ट एडवांस रही है पहले से, और पहले से इन सब चीजों पे होती थी। अब आकर के क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई हैं, वेस्टर्नाइजेशन भी आया है, बहुत कुछ आया है, जिस वजह से दब गई है। तो मेरा कहने का, मेरा मैसेज है वो ये है कि ना, इस चीज को एक बार अपने बच्चों से, स्पेशली अगर आप बात करते हैं, कोई दिक्कत है आपका, मतलब पेरेंट्स का कोई कंसर्न है, बच्चों को कोई दिक्कत है, उनका वो है, तो इस बारे में बात करें। और अगर समझ में नहीं आ रहा, काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आता, टोटली नॉर्मल है
2: जी,
3: पर ना ऐसे में किसी एक्सपर्ट से आकर के बिल्कुल बात करें और देखें कि क्या चीज नॉर्मल है, क्या चीज नहीं है।
2: मतलब विज्ञान इतना बढ़ गया है, सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं, जानकारी इतनी बढ़ गई है, चिकित्सा विज्ञान का अपना इतना बड़ा विस्तार हो गया, तो चीजें हम ऐसा नहीं है कि लाइलाज कुछ नहीं है। हाँ। और संकोच की भी कोई विषय नहीं है। तो अगर कोई चीज हमारे ऐसे आया है, क्योंकि हम बात हमने शुरू की कि सब कुछ हार्मोनल उस पर डिपेंड है, अगर शारीरिक बनावट में, शारीरिक विकास में कहीं कोई चीज रह गई है कमी, तो उसका इम्पैक्ट तो आएगा। अगर इम्पैक्ट आ रहा है तो उसका फिर समाधान भी है, ये आप कहना चाह रहे हैं?
3: हाँ जी
2: जी।
3: जैसे मैं स्पेसिफिकली अगर डिस्कस करूं, तो कई बार मेरे पास ओपीडी में ऐसे पेशेंट आते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं जिसके माँ बाप लेकर के आ रहे हैं कि उनका लिंग छोटा है। ये जो चीज है इसका कई बार लोग मजाक उड़ाते हैं, कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारी चीज होती है। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि ना, ये इसको जैसे बाकी सब चीजों को हम लेते हैं, बीमारियों को हम लेते हैं, इसको भी एक उस तरीके से लिया जाए।
2: हाँ।
3: इसको भी इम्पोर्टेंस दी जाए, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो आगे चल के उस जिस भी व्यक्ति में जो चीज है वो चीज है, उसके मेंटालिटी को इफेक्ट करता है, उसकी मैरिड लाइफ को इफेक्ट करता है, और चीज होती है। ये तो एक चीज हो गई
2: जी।
3: इसके अलावा कई बार ऐसी चीजें होती हैं, स्पेशली एंडोक्राइन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूं, तो ये एक अर्ली साइन होता है एक बहुत बड़ी बीमारी का। जैसे कि कई बार कई सारे कैंसर्स जो होते हैं वो शरीर में और किसी तरह से नहीं दिख रहे, पर कई बार जैसे हम देखते हैं कि छोटे मोटे लड़के हैं, ऐसा कुछ है, जिनकी छाती थोड़ी बड़ी हुई है,
2: जी जी,
3: ऐसा कुछ है। अब इस चीज पे ना सब लोग बड़े वो जाते हैं कि मजाक उड़ाने लग गए, आस पड़ोसी देख के मजाक उड़ाने लग गए, और घर वाले भी थोड़े से इस चीज से परेशान है, बच्चा तो डेफिनेटली परेशान होता है, वो घर वाले भी है, वो कई बार एक बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। तो एक बार अगर आप एक्सपर्ट के पास आते हैं, इवैल्यूएशन कराते हैं, तो बताएगा कि ना, हाँ ठीक है, ये क्या ये नॉर्मल है, क्या इसका वो है, समाधान क्या है, और कहीं कोई बड़ी चीज तो नहीं है, क्योंकि बड़ी चीज जितनी जल्दी पकड़ लेंगे उतना ही जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है।
2: जी जी जी। दूसरा ये कि कोई चीज अगर हमारे सामने आ गई है, परिस्थिति हमने सामने, तो निश्चित तौर पर जब तक आप उस प्रॉपर जगह नहीं पहुंचेंगे, निदान नहीं होगा, तो समाधान भी हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में, न्यूज़ में, अखबारों में ऐसे विज्ञापन निकलते हैं कि गुप्त रोगों का इलाज, फला चीज का इलाज, संतुष्टि के लिए आइए। अब वहाँ आदमी इलाज भी नहीं मिल रहा, समाधान भी नहीं मिल रहा, पैसा भी खर्च हो रहा है, और वो परेशानियाँ कई बार तो बहुत विकट हो जाती हैं। लोग ऐसे जाल में फंस जाते हैं कि वो कहते हैं कि न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे उसमें।
3: बिल्कुल। तो ना ऐसे में ना जो स्पेसिफिकली अगर मैं माइक्रोपेनिस की बात करूँ या फिर छाती बढ़ने को गायनेकोमास्टिया बोलते हैं।
2: जी जी जी। डॉक्टर साहब, इस एक श्रोता जुड़ रहे हैं हमसे। हेलो।
4: हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते।
2: जी नमस्ते, नमस्ते। बताइए भैया, नाम बताइए।
4: नाम, मैं हरीश कुमार सनोरा से बोल रहा हूँ।
2: सनोरा से हरीश जी है ना?
4: हाँ, जिला मथुरा।
2: हाँ बताइए बताइए, समस्या बताइए।
4: मेरी एक समस्या, मेरा एक भाई है, उसके गले में थायराइड है, जिससे उसकी आवाज साफ नहीं निकलती और उसका कद जो है छोटा रह गया है।
2: अच्छा, चक्कर छोटा रह गया है और थायराइड की प्रॉब्लम। ये कैसे पता लगा कि आपको थायराइड है? जांच करा ली?
4: जांच कराने गई थी।
2: हाँ चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, बात करें डॉक्टर साहब।
3: ठीक है। तो जो कद छोटा रहना और थायराइड की समस्या जो है, कई बार ये साथ में हो जाती है। तो एक बार ना आकर के पहले देख लें कि किस टाइप की थायराइड की, कभी कभार थायराइड बढ़ने की भी होती है, कम होने की भी दिक्कत होती है, और उसमें भी कितनी सीवियरिटी है उसकी, कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो, तो वो देख करके उसका इलाज डिसाइड करते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो आप एक बार आकर के मिल सकते हैं, तो उसके बाद फिर उसका समाधान देख लेंगे।
2: ठीक है। एक दूसरे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो।
5: हाँ
2: जी, नमस्कार।
5: नमस्कार।
2: बता भैया, बोलो बेटा। हेलो,
5: से बोल रहे हैं।
2: कहाँ से?
5: अहमल।
2: अहमल से? हाँ बताओ।
5: गाना सुनना है?
2: नहीं नहीं बेटा, इस समय गाने सुनने की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस समय जो छोटे से बड़े बच्चे होते हैं 14 से 18 20 साल तक के, उसमें जो परिवर्तन आते हैं, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन या अन्य परिवर्तन, उन पर बात कर रहे हैं। तो ऐसी कोई समस्या हो तो बताइए, गाना हम आपको बाद में सुनवाएंगे। डॉक्टर साहब, अब इसमें जैसे आपने बात कही कि जो जैसे कई बड़ी समस्या का साइन एक छोटा हो सकता है उसमें, फिर से एक लाइन श्रोता लाइन पे। हेलो।
6: हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते।
2: नमस्ते नमस्ते, बताइए नाम अपना। शायद कॉल ड्रॉप प्रॉब्लम आज हमारे साथ।
3: अगर किसी को नाम नहीं बताना तो ऐसे भी कोई?
2: हाँ, अगर कोई श्रोता अपना नाम नहीं बताना चाहता, अपन कोई सिर्फ समस्या शेयर करना चाहता है। हेलो।
6: हाँ डॉक्टर साहब, मैं प्रीति बोल रही हूँ।
2: प्रीति?
3: हाँ जी नमस्कार।
6: प्रीति?
2: हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हेलो, चलिए कोई बात नहीं, जब तक वो आता है इस प्रश्न को आगे बढ़। हेलो। चलिए, हाँ कुछ प्रॉब्लम है, तकनीकी प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें वहाँ फिर उस चीज़ को जब तक आप साइन को नहीं पकड़ेंगे तो फिर न समस्या आपके पकड़ में आएगी न समाधान।
3: हाँ, अब यही है कि अगर शरीर तो संकेत दे रहा है, उस चीज़ को हम पकड़ नहीं पा रहे क्योंकि हमने उसे गुप्तांग बोल दिया है।
2: हाँ,
3: तो वो चीज है कि हमें ना पहले उस चीज को एक्सेप्ट करना
2: पड़ेगा। नाम से उस समस्या को हमने अंदर दबा दिया।
3: हाँ, नाम से अंदर दबा दिया है। तो उस चीज को एक बार आकर के दिखा जरूर लें ताकि ये डिसाइड हो जाए कि वो नॉर्मल है कि नहीं है नॉर्मल।
2: हेलो
7: डॉक्टर, नमस्कार।
2: जी नमस्कार, नाम बताइए।
7: बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी बोल रहा हूँ, आपको भी नमस्कार।
2: बुलंदशहर से बताइए अब्बासी जी।
7: डॉक्टर ऐसा मेरे जो है ना चेस्ट में थोड़ी मतलब दर्द की सी प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पार्क में लोग हम जाते हैं सुबह सुबह घूमने।
2: हाँ।
7: तो उन्होंने जो वैसे एक्सरसाइज वगैरह कराया।
2: हाँ।
7: काफी मतलब तो वो काफी मतलब फ्री में एक्सरसाइज कराते थे वो।
2: हाँ।
7: तो रेगुलर मैं कराता रहा थोड़ा बहुत रिलीफ मिला। मगर अब मैंने छोड़ दिया कराना, उसके बाद में फिर ज्यादा परेशानी होनी शुरू हो गई। अब मैं इस दिक्कत में हूँ क्योंकि जो कराते थे वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए, उनका पता नहीं चल रहा है।
2: कोई बात नहीं, बुलंदशहर तो वही है, बुलंदशहर में और भी लोग हैं। तो चेस्ट की प्रॉब्लम आप बता रहे हैं ना?
7: जी जी जी जी
2: जी जी। चलिए ठीक है।
7: कभी कभी एकदम से मतलब चीज मतलब जैसे कि एकदम करंट सा चलता है।
2: जी डॉक्टर साहब, अच्छा, अच्छा। डॉक्टर साहब बताइए।
3: हाँ जी, तो क्या मतलब छाती?
2: हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है इनकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम।
3: हाँ, ऐसा कुछ वो नहीं लग रहा, इसका एंडोक्राइन नहीं लग रहा, पर जो भी है अपना। हाँ जी,
7: मैं बीपी वगैरह भी चेक रहा, बीपी वगैरह बीच में बढ़ गया था, फिर मैंने मेडिसिन ली थी, जो सही हो गया, मगर कभी कभी एकदम से करंट सा दौड़ता है।
3: वजन कैसा है आपका?
2: वजन कितना आपका
7: जी?
2: वजन और उम्र बताइए अपनी।
7: वजन वजन मेरा है, मेरी उम्र है करीब 60 प्लस है, और वजन मेरा होगा करीब 70 के आसपास।
2: अच्छा
3: ठीक है, वजन तो इतना ज्यादा नहीं है। तो आप ना अपना एक तो खान पान के बाद ना तुरंत लेटिए नहीं, ठीक है?
7: अच्छा जी, अच्छा।
3: हाँ, हाँ, खान पान के बाद तुरंत लेटते हैं तो उससे ये सारी चीजें हो सकती हैं। आप थोड़ा कम से कम 1 घंटे से 2 घंटे तक बैठे रहना, अगर चलते हैं तो बहुत ही अच्छा है।
7: अच्छा जी, अच्छा जी।
2: ठीक है
7: ठीक है ठीक है।
2: चलिए डॉक्टर साहब, इस बार इस समय कुछ प्रश्न मिले हैं हमें व्हाट्सएप से। आप नांदेड़ से प्रकाश जैन जी लिख रहे हैं, 18 साल के ऊपर के बच्चों में थायराइड की समस्या हो रही है, क्या कारण हो सकते हैं, इसका फ्यूचर में क्या असर होगा?
3: थायराइड की समस्या किसी
2: छोटे बच्चों में,
3: हाँ, थायराइड की समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है। कारण जो होते हैं, कारण तो खैर कई सारे हैं। अब ये चीज इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको ऐसा थायराइड की दिक्कत लग रही है तो पहले आप आकर के ये दिखा लें, सुनिश्चित कर लें कि थायराइड की ही दिक्कत है कि कोई और दिक्कत है। दूसरी चीज ये है कि जिस भी उम्र में है, अब वो किस टाइप का है, कि थायराइड बड़ा है कि थायराइड कम है, तो

0: और जो भी चीज है उसको देख करके उसका फिर इलाज किया
1: जी
0: जाता
1: जी एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो।
2: है। हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: नाम बताइए।
2: मेरा नाम राम जी लाल।
3: मेरा नाम राम जी लाल है सर, राम जी लाल।
1: राम जी लाल, ठीक है। कहाँ से बोल रहे हैं?
3: ये गोवर्धन से नगला देविया से सर।
1: गोवर्धन नगला देविया, समस्या बताइए।
3: अरे सर, एक हमारा बच्चा लड़का है, वो बहुत मोटा हो गया है। उम्र तो ऐसी करीब 18 साल हो गई है।
1: 18 साल, थोड़ा मोटा ज्यादा हो गया है।
3: मोटा ज्यादा हो गया है और वो मशीन चलाता है तो ज्यादा मोटा हो गया है सर।
1: ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब।
0: तो मोटापा आजकल बच्चों में काफी बड़ी समस्या है, और मोटापे के चक्कर में काफी सारे जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं वो हो सकते हैं, आगे चल के कई सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं।
3: हाँ सर, बिल्कुल।
0: अब एक तो तरीका ये रहता है कि जो जो नॉर्मल जनरल एडवाइस है वो ये है कि इतना अगर बहुत ज़्यादा मोटा बच्चा है तो उसे एकदम से आप एक्सरसाइज कराएंगे तो वो नहीं कर पाएगा, तो बहुत ही ग्रेजुअली उसे शुरू करना, बहुत धीरे धीरे शुरू करना होता है। पहले केवल आधे से 1 घंटे से चलना शुरू कराइए, उसके बाद सब धीरे धीरे शुरू करें। अगर कुछ इसमें भी दिक्कत आती है, खान पान इसका कम किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, या फिर इसको चलने में भी दिक्कत आ रही है या नहीं कर पा रहा है, तो एक बार ला करके दिखाना बेहतर रहता है। हमारे पास कुछ दवाइयां हैं जो हम इसे दे सकते हैं, कुछ और तरीके हैं वो हम देख सकते हैं जिससे मोटापा कम हो जाएगा और आगे की दिक्कतें बच जाएंगी।
1: ठीक है डॉक्टर साहब, एक थोड़ा सा हटके है। रीता भारद्वाज जी ग्वालियर से लिख रही हैं ऐप पर हमारे, ये 47 साल उम्र है। ये लग रही है कि 40+ होते होते कुछ लोगों की हड्डियाँ इतना कमज़ोर हो जाती हैं कि वो कई बार तो स्वयं फ्रैक्चर हो जाता है, छोटे मोटे से उससे उसमें। तो ये क्या थायराइड का प्रभाव हो सकता है क्या, या हार्मोनल
0: हाँ
1: डिसबैलेंस?
0: हाँ जी, ये जैसे 47 उम्र है तो ये पोस्ट मीनोपॉजल हो सकती है, यानी कि जो जो औरतों में महावारी है वो खत्म हो जाती है, खत्म होने लगती है, खत्म हो जाती है। तो ऐसे में जो हार्मोन्स बन रहे हैं नेचुरली उनके, वो हार्मोन्स बनना कम हो जाते, बहुत तेजी से बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, तो उनका एक इफेक्ट होता है हड्डियों पे भी। अब हड्डियों को वो मेंटेन करके रखते हैं, वो सारी की सारी चीजें करते हैं। हर एक इंसान में अलग अलग इफेक्ट आता है, पर अगर आपको ऐसी कोई समस्या है और स्पेशली अगर फ्रैक्चर हो रहा है, ऐसा कुछ चीज हुई है, तो एक बार इस चीज का, इसके इलाज है, संभव है। आप वहां पे जाकर के अपने किसी किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को, या फिर किसी, हाँ किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखा दें ताकि वो एक बार अच्छे से इसके जांचें करा लें और फिर उसके बाद ट्रीटमेंट दे दें।
1: जी। अब इसमें थोड़ा सा मैं फिर से लौट के वहीं आता हूँ, किशोर भाई जो थोड़ा सा 13-14 साल से अब ऊपर की बढ़ रहे हैं, शारीरिक बदलाव हो रहे हैं, मानसिक बदलाव हो रहे हैं। आजकल पीयर प्रेशर है, करियर का प्रेशर है, आगे बढ़ने का प्रेशर है, तो बहुत सारे ऐसे प्रेशर उन पे ऑलरेडी होते, लेकिन शारीरिक बदलाव एक उनके लिए और एक नई चीज़ हो जाता है। तो क्या कैसे उसको वो टैकल करें, क्योंकि उनका ग्रुप एक वही अपने उसमें है, पारिवारिक परिवार अब छोटे हो गए, परिवारों में लोग कम रह रहे हैं, परिवारों का अब वो माहौल नहीं है जहाँ बहुत मिलजुल करके चीज़ें लोगों तक पहुँच जाती थी। तो जानकारी के पॉइंट कम हो गए, ले दे के सोशल मीडिया ही हमारे पास रह गया, या हमारे पास फ़ोन है, हालांकि फ़ोन से अच्छी जानकारी हमको मिल सकती है, लेकिन फिर भी क्या कहना चाहेंगे, यूथ किन चीज़ों से दो चार ज़्यादा हो रहा है इस समय?
0: इस जैसा बता रहे हैं, इसमें ना एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है कि बच्चों को अपने पेरेंट्स से डर नहीं होना चाहिए।
1: जी।
0: बच्चे जो हैं, पेरेंट्स बहुत सारे
1: डॉक्टर साहब, एक प्रश्न श्रोता जुड़े उसको पहले ले लें, इसका हम
0: हाँ
1: बाद में
0: हाँ
1: जब।
0: बिल्कुल
1: हेलो
0: बिल्कुल।
4: हेलो सर, नमस्ते।
1: नमस्ते नमस्ते।
0: नमस्ते
4: सर, मैं बचने से बोल रही हूँ। सर, मेरा 12 साल का लड़का है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है।
1: 12 साल का लड़का है,
0: हाँ
1: हाइट
0: जी
1: कम है,
4: हाँ जी सर।
1: और कोई समस्या?
4: और कोई समस्या कुछ ऐसा रहता है, बोलो तो कुछ तो पढ़ने की नहीं, बोलो कुछ भी बोलो तो ऐसे गर्म हो जाता है, झगड़ाता है मेरे
1: मतलब
4: ऊपर।
1: वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, नाराज हो जाता है।
4: हाँ सर,
1: हाँ ठीक है ठीक
0: ठीक
1: है,
0: है।
1: चलिए।
0: तो एक तो ये चीज़ है कि ना हाइट, एक जो बच्चों की हाइट होती है वो कई सारे कारणों पे डिपेंड करती है, उसके कई सारे कारण होते हैं जिससे हाइट बढ़ती है। तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्या कारण है उसका एग्जैक्टली। दूसरी चीज़, एक कॉमन जो धारणा है वो ये है कि ना

0: बच्चा छोटा है, हाइट में कोई दिक्कत है, तो लोग आस पड़ोस के बोलते हैं कोई बात नहीं आगे चल के बढ़ जाएगा। इस चीज को जितना जल्दी आप एक्सपर्ट के पास ले आएंगे उतना ही जल्दी उसको हाइट में आराम मिलेगा। कई बार जो शुरुआती तौर पे जो हाइट जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी अगर नहीं बढ़ पाती है तो आगे की हाइट भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड रहती है।
1: भाई साहब देखो 12 साल का है और ऐसा लगता है कि 10 साल का है।
2: हाँ, अब मतलब आपको ऐसा लग रहा है माँ होने के नाते कि उसकी उम्र के हिसाब से उसकी लंबाई नहीं है उसमें, तो ये आपकी समस्या बिल्कुल जायज है। और आप एक अच्छे डॉक्टर,
0: तो
2: अच्छा हॉस्पिटल आपके आसपास, कहाँ रहती हैं आप?
1: लक्ष्मी नगर।
2: लक्ष्मी नगर, ये क्या जमुना पार की तरफ?
1: हाँ जी सर।
2: हाँ ठीक है, तो आप तो शहर में ही रहती हैं, शहर में अच्छे हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर साहब
0: आप
2: से भी मिल सकती हैं
0: एक बार
2: सिम्स पे
0: आकर
2: आकर।
0: के अगर आप दिखा सकती हैं तो ना, हम एक बार उसको पूरी तरीके से एवेल्युएट करना चाहेंगे, उसके शारीरिक चेंजेस अभी किस स्टेज पे पहुंचे हैं तो वो देखना चाहेंगे। हाँ
1: कहाँ
0: जी,
1: आना
0: आकाश आकाश सिम्स अस्पताल,
2: सिम्स की बात कर रहे हैं ना?
0: है?
2: ये कार्यक्रम जो चल रहा है आपको बाद में बताएंगे ये हॉस्पिटल कहाँ है, ठीक है? आप सुन सकते हैं उसको, आप
0: 10 से
2: कार्यक्रम
0: चार
2: सुनते
0: बार
2: रहिए,
0: तक।
2: अभी इस तरह की और भी समस्याएं आएंगी इसी तरह का। डॉक्टर साहब, ये मोहन कुमार 50 वर्ष उम्र राया से आप व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं कि मेरी बेटी 25 साल की हुई है, 5 फीट की उसकी लंबाई है, ट्रीटमेंट भी कराया लेकिन हाइट नहीं बढ़ी है, अब बढ़ सकती है क्या? कभी कभी बहुत दुखी भी हो जाती है बच्चे की, तो उसमें सुझाव
0: हाइट
2: दें
0: की
2: आप।
0: जो समस्या है ये बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत इफ़ेक्ट करती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बार अगर प्यूबर्टी जो चेंजेस, जो हार्मोनल चेंजेस जो शरीर में आते हैं वो
2: हाँ
0: पूरी तरह से हो गए तो हाइट नहीं बढ़ पाएगी। आपने कई सारे एड्स देखे होंगे, कई सारी मैगजीन्स देखी होंगी, कई सारे लोग क्लेम करते हुए देखे होंगे कि हम हाइट 100% बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होता है।
2: उसकी भी उम्र होती है एक।
0: उसकी उम्र होती है, और वो जो जैसा जो 12 साल के बीच जो लास्ट शुरू होता है 12 साल की, इस उम्र पे शुरू हो जाते हैं वो चेंजेस। अब किसी कारण से शुरू नहीं हुए हैं या किसी कारण से पहले शुरू हो गए हैं तो वो हाइट को डेफिनेटली इफेक्ट करेगा।
2: लेकिन वो 17-18 साल तक ही ग्रोथ का वो रहता है वहां,
0: 17-18 साल बहुत हो
2: लेट
0: जा
2: है,
0: बहुत लेट है।
2: बहुत लेट है।
0: अगर हाइट की कोई भी चीज बात करें तो जितना जल्दी आएंगे उतना ही ज्यादा इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि हम हाइट हमेशा,
2: मतलब बचपन से हम जैसे ही किशोर वय की तरफ जा रहे हैं वो चेंज दिख रहे हैं जो शारीरिक
0: हाँ
2: है मानसिक है, वहां फिर वो चीजें बढ़ने का क्रम भी शुरू हो ही जाता है उसमें,
0: हाँ
2: तो
0: जी,
2: उसको हमें
0: मतलब
2: देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना
0: हाँ
2: चाहिए।
0: मतलब ऐसा है, होता है कि ना, शरीर ऐसा नहीं है कि पूरे समय एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है। जो अब ये अगर आप सोचें कि ना, एक जो बच्चा, जो नवजात शिशु होता है वो 1 साल में ही कितना अपनी जो हाइट, उसकी जो बचपन में हाइट है उससे कितना गुना बढ़ गया, उसका वजन 3 गुना तो बढ़ जाता है। तो अब ये सारी की सारी चेंजेस अर्ली टाइम में ज्यादा है जितना जल्दी उम्र में, फिर
2: समझ।
0: उसके बाद जितना लेट होते जाएंगे फिर धीमे होंगे,
2: जी जी
0: ये सारी
2: जी
0: चीजें आती है। तो जितना जल्दी आएंगे उतना ही जल्दी आराम मिले, मतलब
2: जी
0: फायदा होगा उतना।
2: जी जी एक श्रोता जुड़ रहे हैं हमसे। हेलो।
3: हाँ जी नमस्कार सर।
2: नमस्ते
0: नमस्कार
2: भैया,
0: सर,
2: नाम बताइए।
3: नेत्रपाल बोल रहा हूँ सर, गांव जहांगीरपुर से।
2: नेत्रपाल जहांगीरपुर से, बताओ भैया। नेत्रपाल जी,
3: मेरा सर ये है सर कि हमारा बच्चा है 12-14 साल का, तो शरीर में थोड़ा हल्का है,
2: शरीर उसका हल्का है, मतलब उम्र के हिसाब से आपको लगता है?
3: हाँ हाँ डॉक्टर।
2: ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब से बात करिए।
0: हाँ जी, तो क्या 12 साल का है? पहली चीज तो 12 साल का है कि 14 साल का है? 2 साल का अंतर बहुत ज्यादा
2: बहुत
0: अंतर
2: ज्यादा
0: होता है।
2: होता है, उम्र बताइए एग्जैक्ट।
3: 12 साल का है डॉक्टर।
2: 12 का
0: 12 साल
2: है।
0: का है, तो 12 साल का है, चांसेस हैं कि उसकी ना बॉडी में चेंजेस आने अभी शुरू हुए होंगे या फिर चल रहे होंगे। तो ऐसे में जो पहली चीज, सबसे अच्छी चीज ये है कि खान पान का आप जो कॉमनली मिस आउट होती है वो खान पान की चीज रहती है, ठीक है?
3: खान पान डॉक्टर को थोड़ा बाहर का खाना खाता है, रोटी पानी कम खाता है।
0: हाँ, तो अब जैसे एक तो बाहर का खाना हफ्ते में एक बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हफ्ते में एक बार भी मतलब बहुत है, वरना तो घर का खाना बहुत अच्छा है और जितना वो लेंगे उस पर फर्क पड़ेगा।
2: जी,
0: दूसरा, हाँ
2: बताइए।
0: हाँ, दूसरी जो चीज है वो ये है कि थोड़ा सा ना प्रोटीन इंटेक, जैसे जो पनीर हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन, ये सारी जो चीजें हैं उसके खाने में ऐड कीजिए, उससे फर्क पड़ेगा।
2: जी, खान पान थोड़ा सा। डॉक्टर साहब, एक श्रोता और है जो जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन अभी किसी कारण से नहीं हो पाया। एक प्रश्न हमारे पास आया मुस्कान साहनी जी का, लोहवन मथुरा से। आप लिखते हैं कि मेरी बेटी 19 वर्ष की है, छोटी सी थी तभी से बहुत एक्टिव रही है, अच्छी प्लेयर भी है, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हो रही है उसका व्यवहार थोड़ा बदल रहा है और उसको लड़कों की तरह रहना और जीना पसंद है। उसको लड़कियों का जो एक स्वतंत्र जो सौम्य जीवन है उसको ऐसा लगता है कि ये तो एक गुलामी की सी वो है। तो ये क्या कोई हार्मोनल चेंज बीमारी हो सकती है या एक सामान्य व्यवहार है?
0: नहीं, मतलब नहीं, हाँ
2: एक बच्ची का बच्चे की तरह बड़े होना, और ये तो आपका काफ़ी कॉमन है पहनावे हाँ। पे व्यवहार पे उसमें, फिर भी वो जानना चाहते हैं कि
0: हाँ, देखिए ऐसा है कि ना ये कोई बीमारी नहीं है, इसको ये जो चीज़ें हैं ये ना और ऐसा कुछ हार्मोन वाला भी यूजुअली नहीं होता है। अक्सर ये जो अब जो कई बार जैसे जैसे बहुत सारे लोगों की मेंटलिटी भी वो रहती है, उस पर कोई भी गलत बात नहीं है, कोई भी खराब चीज़ नहीं है, उसको अपने आप को व्यक्त करने का मौका देना चाहिए और जैसे जैसे वो कर रही है मतलब इस चीज पे उसे जज नहीं करना चाहिए।
2: खुद भी बता रहे कि अच्छी प्लेयर अगर है कोई हाँ। प्लेयर है तो मैं समझता हूँ उसके वो खुद भी काफी चीजों हाँ। को देख रहा है समझ रहा है उसमें।
0: अगर प्लेयर जैसे प्लेयर के लिए स्पेसिफिकली बताऊं मैं अगर हाँ। तो अपना कि कौन सा प्लेयर साड़ी में खेलते हुए देखा आपने?
2: हाँ, सही बात है।
0: प्लेयर तो जो पैंट है वो है उनको पहननी ही पड़ेगी हाँ, उसमें खेल ही नहीं पाएगा।
2: ऐसा है उसमें
0: तो हाँ, तो
2: ऐसे वो फिर वो ठीक भी लगने लगता है, आदत सी पड़ जाती है, तो उसको नॉर्मल ही ले।
0: हाँ नॉर्मल, इसमें कोई वो नहीं है, कोई खराब चीज नहीं है।
2: तो ये चीजें नॉर्मल है, खाना नॉर्मल है, पहनना वो है, एक्टिविटी नॉर्मल है, तो एबनॉर्मल क्या है थोड़ा सा आप चलते चलते आप ये भी बता दीजिए
0: abnormal,
2: कि क्या चीजें ऐसी हैं जिनको हम एबनॉर्मल मान सकते हैं।
0: एबनॉर्मल में जो स्पेसिफिक चीजें हैं, पहली चीज कि जैसे जो हम शुरुआत जो बात हुई थी कि अगर लिंग छोटा है तो कई बार बहुत छोटे बच्चों में जो नवजात शिशु हैं उनमें देख करके पेरेंट्स नोटिस कर लेते हैं कि इस बच्चे का लिंग छोटा है
2: हाँ।
0: अगर छोटा है तो उसे इवेल्युएट कराना चाहिए है, अगर नहीं करा रहे हैं तो उसमें ना कई बार बहुत बड़ी चीजें होती हैं, जैसे कि एक हार्मोन एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, कई बार उस पिट्यूटरी ग्लैंड से ही चीजें नहीं बन रही होती हैं, ठीक है, तो वो केवल लिंग पे तो अभी दिख रहा है, बाकी बहुत सारी चीजों में
2: आगे जाके बहुत सारी चीजों को इम्पैक्ट करेगा
0: हाँ। तो ऐसे में ना ये नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं आगे चल के बड़ा हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, आप पहले आकर के दिखा लें, फिर डॉक्टर कहता है वो आपको पता चल जाएगा कि ना हाँ इसमें रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर हम छाती भरने की बात करें तो छाती भरने वाले उसमें क्या होता है कि प्यूबर्टी के टाइम पे तो ये नॉर्मल है, इतना थोड़ा बहुत भरता है, पर अगर किसी भी कारण से एक ही साइड से भर रहा है या फिर दर्द हो रहा है भरते समय या फिर बहुत तेजी से भर रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि कोई ना कोई अंदर दिक्कत होती है, और ऐसे केसेस मिले हैं कि बस केवल छाती भरने के लिए आया और आगे चल के इवैल्यूएशन पे पता चला कि वो कैंसर है,
2: कैंसर है उसमें।
0: तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, वो जरूरी नहीं है कि छाती का कैंसर हो, वो कैंसर कहीं का भी हो सकता है, मतलब कुछ है स्पेसिफिक कैंसर वो हो सकते हैं, तो ऐसे में ना इवैल्यूएशन कराना सबसे सही तरीका है।
2: एक व्यवहार का तो उसमें जैसे बढ़ते हैं बच्चे तो थोड़ा सा साइकी हो जाते हैं, अलग एक दुनिया बना लेते हैं, मिक्सअप कम होते हैं, चिड़चिड़ापन जैसे एक दो उसमें आया हाँ। कि बड़े बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बड़ों की बात ना मानना भी एक बड़ा कॉमन सा वो है, तो ऐसे में फिर पेरेंट्स की भूमिका परिवार की भूमिका को आप क्या समझते हैं?
0: देखिए हमें ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि जो प्यूबर्टी की जितनी मैं बात कर रहा हूँ, प्यूबर्टी मतलब अभी तक बच्चा जो जब बच्चा जब से पैदा हुआ है तब से 9-10 साल की उम्र तक उसकी प्यूबर्टी नहीं है, अब पहली बार उसके शरीर में जो हॉर्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, जो मेजर जो हॉर्मोन्स है वो पहली बार शरीर में आए, अब वो कहीं ना कहीं पूरे शरीर पे दिमाग से लेकर के हड्डियों तक हर जगह पे कुछ ना कुछ इफेक्ट डालते हैं
2: जी जी।
0: तो ये वाले जो सिम्टम्स हैं चिड़चिड़ापन गुस्सा करना ये सारे के सारे एक हद तक उस उन हार्मोनों की वजह से हो सकते हैं, ठीक है, पर अगर वही चीज है कि एक हद तक अगर कुछ पहले हो रहा है बाद में हो रहा है क्या चीज हो रहा है तो उसको अलग से दिखाना चाहिए, पर कुछ हद तक ये चीज नॉर्मल होती है और इसको एक ग्रोन अप एक पेरेंट की तरह आपको उसे करना चाहिए, उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, जैसे जैसे उसका शरीर बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका दिमाग भी बढ़ रहा है।
2: जी जी जी, एक समस्या जो पेरेंट्स की बड़ी कॉमन होती है कि भाई क्लास भी बढ़ रही है, जिम्मेदारियां भी बढ़ रहा है, बच्चा खुद बढ़ रहा है उसमें, और बच्चा कई बार अचानक सब कुछ मिक्सअप होते होते पेरेंट्स की बात मानना बंद कर देता, अपने जो नियर डियर होते हैं उनकी, तो ऐसे में क्या लगता है कि जब आप की बात आपको लग रहा है कि बच्चा इग्नोर कर रहा है, तो उसको समस्या न लेकर के निदान के रूप में कहीं आप जा करके एक डॉक्टर से संपर्क कर लें, खुद चले जाएं, बच्चे को साथ लेकर के जाएं, और एक बिहेवियरल जो साइंस है उसमें भी आज विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है, तो और साइकिक के बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी आ गए, तो मनोवैज्ञानिक उनसे सलाह ली जा सकती है क्या?
0: नहीं, इसमें भी आपको बच्चे की ना मानसिकता समझनी होती है। जब बच्चा जो है छोटा है तो उसका पूरी दुनिया, पूरे सब कुछ
2: आप ही है,
0: है ना। जैसे जैसे वो स्कूल से एक्सपोज होगा, जैसे जैसे अपने दोस्तों से एक्सपोज होगा, तब उसे पता चलेगा कि हाँ मेरे हम उम्र के लोग हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं।
2: उसको स्कोप बड़ा दिखता है करने का, और वो करना भी चाहता है, आप कहीं उसको थोड़ा रोक रहे हैं, तो एक छोटी सी लिबर्टी धीरे धीरे देना उसको। अब
0: इसमें दूसरी चीज जो है वो ये भी है कि जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, आप भी बड़े हो रहे हैं। जब आप बड़े हो रहे हैं तो आपके शरीर में वो क्षमता नहीं है उसकी एनर्जी से मीट करने की।
2: ओके,
0: तो उस केस में अब क्या है, बच्चा अपने आसपास के दोस्तों के साथ मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो आपसे कितना कम बात कर रहा है, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की नजर में आपकी रिस्पेक्ट कितनी है। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हाँ अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में है, अगर मुझे कुछ भी चीज दिक्कत होती है या फिर कोई भी जैसे ये वाली जो सारी जो गुप्तांगों वाली चीज है, अगर उसे ये पता चल जाता है बच्चे को कि हाँ पेर को मैं कोई भी चीज बताऊंगा मेरे पेरेंट्स मुझे तो वो ज्यादा खुलेगा, और ज्यादा खुलेगा ये नॉर्मल है कि थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ ज्यादा रहे, थोड़ा सा पेरेंट्स से कट जाए, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और यही चीज जब ये वाले पूरे चेंजेस हो जाते हैं, कॉलेज वॉलेज टाइम आ जाता है, जब बाहर से चले जाता है, उसके बाद बच्चे वापस आके बात भी करना शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है।
2: बड़े हो जाते हैं तो उन चीजों को बड़े सहज रूप से बात करते हैं, चाहे वो सेम सेक्स के साथ बात करना, अपोजिट सेक्स के साथ बात करना, क्या बातें हुई, उनको हमने किस तो रूप में लिया, तो ये मतलब सामान्य सी प्रक्रिया,
0: ये सामान्य सी प्रक्रिया है
2: जब समझने लगते
0: हैं। हाँ, बस ये है कि आपको अपने बच्चे के साथ लिमिटेड ये फ्रीडम तो देनी है, पर एट द सेम टाइम वो बच्चा अभी भी बच्चा ही है, तो आपको एज अ एडल्ट थोड़ा सा उस पर वो रखना होगा, निगरानी रखनी होती है, उसे कंट्रोल ना करें पर निगरानी रखें।
2: जी, तो श्रोता बंधुओं, आप डॉक्टर रमनीश प्रजापति जी, वरिष्ठ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और जो पीडियाट्रिक जो समस्या है उनके हैं, सिम्स आकाश हॉस्पिटल में आप बैठते हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं। आज भी बहुत सारे जो प्रश्न आए, समस्याएं आई, जानकारी आई, सुझाव आए, उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। देखना हमें यही होगा, आज के इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य यही था कि बदलाव प्रकृति का बहुत सहज है, स्वाभाविक है, वो शारीरिक स्तर पर भी होता है, मानसिक स्तर पर भी होता है, और बढ़ती हुई उम्र में होता है, तो उसको हमें स्वीकार करना है, लेकिन उसमें सजग भी रहना है, देखना भी है कि बच्चे का मेरे का शारीरिक बनावट ठीक हो रही है, शारीरिक विकास ठीक हो रहा है, मानसिक विकास ठीक हो रहा है, देखना है। और सजगता यह है कि अगर ऐसा लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, तो उस एबनॉर्मल चीज़ को एक अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल में जाके दिखा लें, और इस बात का विज्ञान भी साक्षी है और हमारी इतिहास भी साक्षी है कि परंपरा में और इतिहास में हमारे यहाँ इन चीज़ों पर जो जिनको आज हम गुप्त बोलते हैं, चाहे गुप्तांगों के रूप में बोलें या गुप्त बीमारियों के रूप में बोलें, वो अक्सर में है नहीं, वो गुप्त नहीं है, वो हमारी अपनी शारीरिक बनावट से संबंध है, हमारी निजी जिंदगी से संदर्भ रखती हैं। और कभी मौका लगे तो बच्चों के साथ आप खजुराहो जाओ, एक ऐसी जगह है जहाँ इन सब चीज़ों पे बहुत विस्तार से और चित्रात्मक चीज़ें हमारे समाज में बताई गई हैं, लिखाई गई हैं, और इस चीज़ को उस समय के जो वैज्ञानिक होते थे ऋषि मुनि, उन्होंने कहा है, तो चीज़ें समझने की हैं, सोचने की हैं, आप उसको उसी रूप में लेंगे तो चीज़ों के समाधान आपको मिल जाएंगे। रमनीश जी, आप आए, जानकारी दी, हमारे श्रोताओं से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद,
2: नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर, विषय था किशोरवय बच्चों में शारीरिक बदलाव एवं हार्मोनल परिवर्तन, विशेषज्ञ थे डॉक्टर रमनीश प्रजापति, सलाहकार पीडियाट्रिक एवं हार्मोन विशेषज्ञ, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सिम्स मथुरा।
5: सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भर

0: भरपूर सुविधाएं, 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर, मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर, कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर, नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर शिरादा वैली मथुरा। सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज, सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं, 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर, मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ, आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर, कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर, नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर शिरादा वैली मथुरा।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज लोकगीत। आज की कलाकार हैं बीना शर्मा और सखियां।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हमारी जनगणना हमारा विकास।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या
3: आराम से पहुँचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं बीना शर्मा और सखियों के द्वारा गाए हुए कुछ ब्रजलोक गीतों का।

0: FM 102.2 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कार्यक्रम ब्रज लोकगीत अब यहीं समाप्त होता है। आज की कलाकार थी बीना शर्मा। इस समय अपराह्न के 1 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का ये सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
2: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर मिस्ताल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ दाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपड़े।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी

0: ने 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। फीफा फुटबॉल विश्वकप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी कि अपराह्न 1:10 पर आप सुनेंगे समवेत स्वरों में देशगान। बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोग, जिसे अपराह्न 1:15 पर प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंतर्गत होगी चर्चा। विषय होगा घरेलू महिलाओं का समाज और परिवार में योगदान और महिला सशक्तिकरण में योग की भूमिका। साथ ही आप सुनेंगे ओबी आधारित भेंट वार्ता, ध्यान और योग का महत्व। वार्ताकार होंगी श्रीमती बुद्धि मिश्रा, जिला कार्यक्रम अधिकारी। साथ ही वर्तिका सिंह, शशि मिश्रा, निर्मल गौतम भाग लेंगी और इनसे बातचीत करेंगी सुरभि शर्मा। फिल्म संगीत श्रोता साथी आनंद ले सकेंगे। अपराह्न 1:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित उमंग आप सुनेंगे। अपराह्न 2:30 पर हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी, संध्या 4 बजे। फिल्म संगीत का आनंद श्रोता साथी ले सकेंगे 5 बजे। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे संध्या 5:30 पर, जिसमें आज की बात के अंतर्गत महारानी लक्ष्मीबाई शहीद दिवस एवं गुरु अर्जुन देव जी शहीदी दिवस विषय पर होगी चर्चा। साथ ही आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम रानी लक्ष्मीबाई, लेखन एवं प्रस्तुति होगी अमरलता यादव की।

संध्या 6:15 पर किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम में होगी चर्चा मिट्टी परीक्षण का महत्व और संतुलित उर्वरक प्रबंधन विषय पर, और साथ ही चर्चा होगी कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे करें इस विषय पर। साथ ही आप सुनेंगे भेंटवार्ता खेत बचाओ अभियान क्रम में मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु परंपरागत तरीके। वार्ताकार होंगे गेंदालाल, प्रगतिशील किसान, और इनसे बातचीत करेंगे ओपी सिंह। संध्या 6:45 पर फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुन सकेंगे। कार्यक्रम ब्रज साहित्यिक में देश हमारो क्रम के अंतर्गत झीलन को शहर उदयपुर के बारे में जानकारी देंगे वार्ताकार भगवान सिंह चौहान। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी आप संध्या 7:31 पर सुनेंगे। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं रात्रि 8:00। चित्रपट संगीत सुहाने तराने रात्रि 9:15 पर प्रसारित किया जाएगा। रात्रि 10:00 रूपक विशेष रूपात्मक कार्यक्रम अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी आप सुनेंगे। लेखक होंगे प्रकाश दीक्षित, प्रस्तुति मदन मोहन मिश्रा की। उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर, विदुषी बेगम अख्तर का ठुमरी और दादरा गायन आप सुन सकेंगे।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है संवेद स्वरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं दीप्ति शर्मा।

बहनों, एक ऐसी ऊर्जा जिसे जिंदगी का कोई भी अंधेरा रोशन किया जा सकता है, उसे कहते हैं उम्मीद। तो बहनों, इसी उम्मीद के साथ हम सही समय पर उपस्थित होते हैं आपके लिए वनिता लोक कार्यक्रम लेकर। अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ और अच्छे अच्छे चुनिंदा गानों के साथ। तो बहनों, सबसे पहले आप स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आज के वनिता लोक कार्यक्रम में। तो बहनों, बात जब हम बहनों का कार्यक्रम है और बातें हम बहनों की कर रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे कि घरेलू महिलाओं का समाज और परिवार में योगदान किस प्रकार होता है। बहनों, जो महिलाएं पूरी तरह से अपना समय घर परिवार को देती हैं, उन महिलाओं का समाज और परिवार में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुआयामी और सराहनीय होता है।

ये परिवार की रीढ़ मानी जाती हैं और उनके कार्यों का प्रभाव केवल घर तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। घरेलू महिलाएं बच्चों की देखभाल करके उन्हें नैतिक मूल्यों, अनुशासन और सामाजिक व्यवहार की शिक्षा देती हैं। ये बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। घर का भोजन हो, साफ सफाई, बजट प्रबंधन, परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखकर अन्य कार्यों का संचालन करती हैं। घर में व्यवस्था और संतुलन बनाए रखती हैं। परिवार के सदस्यों को मानसिक और भावनात्मक सहारा हर परिस्थिति में प्रदान करती हैं। परिवार के बुजुर्गों और बीमार सदस्यों की सेवा और देखभाल का महत्वपूर्ण दायित्व भी साथ ही निभाती हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार देकर भविष्य के जिम्मेदार नागरिक तैयार करती हैं। उनका ये योगदान समाज के विकास की नींव बनता है। परिवार और समाज की परंपराओं को, संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य भी घरेलू महिलाएं ही करती हैं। कई घरेलू महिलाएं सामाजिक सेवा, स्वयं सहायता समूहों, शिक्षा अभियान और सामुदायिक कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। भले ही उनका कार्य अक्सर वेतनभोगी न हो, लेकिन घर का कुशल प्रबंधन करके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाकर अनेक खर्चों की बचत करती हैं। घर की महिलाओं का योगदान अमूल्य है और उनके श्रम, त्याग और समर्पण के कारण परिवार और समाज दोनों सुदृढ़ बनते हैं। तो बहनों, हम माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाती हैं। तो बहनों, हम कह सकते हैं कि हम बेस्ट हैं, तो हमें कहना चाहिए बिल्कुल गर्व के साथ कि आई एम द बेस्ट।

0: तो बहनों, हम सभी प्रतिदिन अपने पूरे जीवन को भी अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, सभी के लिए पूरी तरह से समर्पित करते हैं। इसलिए महिलाओं का पूरी तरह से स्वस्थ होना और सशक्त होना बेहद जरूरी है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सक्षम बनना, ताकि हम आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले सकें। योग इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि योग महिलाओं के समग्र विकास में सहायता करता है। योग करना हमारे शरीर को स्वस्थ, लचीला और ऊर्जावान बनाता है। नियमित योग के अभ्यास से मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हार्मोन असंतुलन जैसी समस्याओं को नियंत्रित करने में सहायक होता है। स्वस्थ और सशक्त महिला परिवार और समाज दोनों के विकास में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती है। आज की व्यस्त जीवन शैली में महिलाएं अनेक प्रकार के तनाव, चिंता और जिम्मेदारी का सामना करती हैं। योग, प्राणायाम और ध्यान इन सभी को कम करने में सहायक होता है। योग के नियमित अभ्यास से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। मातृ स्वास्थ्य में भी योग गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। ये शारीरिक शक्ति, मानसिक शांति और स्वस्थ मातृत्व को प्रोत्साहित करता है। योग के द्वारा अनुशासन, धैर्य, सहानुभूति और नेतृत्व जैसे गुणों का विकास होता है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए योग को दैनिक जीवन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। योग न केवल स्वास्थ्य का आधार है, बल्कि आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सशक्त महिला के निर्माण का आधार भी है। तो बहनों, जब हम बात कर रहे हैं योग की, हमारे जीवन में, महिलाओं के जीवन में क्या महत्व है, तो हम इसी विषय पर आपको बहुत अच्छी जानकारी दिलवाते हैं। ओबी पर आधारित भेंट वार्ता के माध्यम से ध्यान और योग का महत्व, इसमें प्रतिभाग कर रही हैं श्रीमती बुद्धि मिश्रा, वर्तिका सिंह, शशि मिश्रा और निर्मल गौतम।
1: श्रोताओं, भारतीय संस्कृति में ध्यान योग का बहुत बड़ा महत्व है, योगदान है। जब भी हम ध्यान करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने विचारों को एकाग्र करते हैं और अपने शरीर में या हमारे अंदर जो ऊर्जा है उसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उस ऊर्जा से अपने को ऊर्जावान करने का प्रयास करते हैं। ऋषि मुनियों की परंपरा रही है ध्यान की, योग की। और वैसे भी ध्यान शब्द इतना आम है कि हम हर कार्य करने से पहले हमेशा बच्चों को भी सिखाते हैं, बड़ों को भी सिखाते हैं, ध्यान से कार्य करो, ध्यान से चला करो। ये ध्यान शब्द इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इन्हीं सारे विषय को लेकर हमने बातचीत करी। हमारे साथ है,
2: मेरा नाम बुद्धि मिश्रा है, मैं जनपद मथुरा में जिला कार्यक्रम अधिकारी के पद पर कार्य कर रही हूँ।
1: ध्यान शब्द इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
2: देखिए, मैंने अभी तक जितना जो सीखा है और जितना जाना है, ध्यान शब्द इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब आप ध्यान लगाते हैं तभी आप जान पाते हैं कि आप खुद क्या हैं, आपके अंदर कौन सी कमजोरियां हैं जिन

0: को आपको दबाना है और कौन सी अच्छाइयां हैं जिनको आपको उभारना है, और अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में आजकल हर जगह ही स्ट्रेस है, उसको कैसे आपको हैंडल करना है, वो सब चीज़ें आप ध्यान के माध्यम से सीखते हैं। बेसिकली अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो ध्यान के माध्यम से आप अपने आप को खुद से कनेक्ट कर पाते हैं।
1: अक्सर मनुष्य की आदत होती है कि अगर सरकार की तरफ से प्रयास किए जाएं तो उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो तवज्जो देता है। क्या हमारे शरीर में जो ऊर्जा है या ध्यान जो हम जैसे पद्धति है, क्या उस विषय को लेकर सरकार की तरफ से कुछ प्रयास किए जा रहे हैं?
0: जो देखिए, सरकार की तरफ से हमेशा ही जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाती हैं, वो जनता के वेलबींग के लिए होती हैं। ऐसे ही सरकार अपने कर्मचारियों के लिए भी सोचती है, क्योंकि सरकार की सारी योजनाएं सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से ही इम्प्लीमेंट होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में रहता है कि हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके स्ट्रेस को कम करने के लिए या और वो अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें, इसके लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है। एक मिशन कर्मयोगी भी सरकार की तरफ से चल रहा है, जिसके अंतर्गत लगभग 200+ कोर्सेज हैं जो सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए हैं। उन कोर्सेज में ये योगा और मेडिटेशन भी है, तो उनसा और सभी कर्मचारियों को कम से कम किसी को 15 कोर्स करने अनिवार्य हैं, ग्राउंड लेवल वर्कर को 20 कोर्स अनिवार्य किया गया है, ऑफिसर्स के लिए 5 कोर्स अनिवार्य किया गया है। तो ये सारे कोर्सेज इसीलिए हैं कि एक तो हम नई टेक्निक से रूबरू हो सकें अपने डे टू डे की वर्किंग में, प्लस कुछ स्पिरिचुअली भी हम सीख सकें अपने आप को और अपनी क्षमता का कैसे बेहतर प्रदर्शन करना है, अपने कार्य में और अधिक अच्छा कैसे ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी पर्सनालिटी को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। जाहिर है, आपकी पर्सनालिटी बेहतर बनेगी तो आप अपने वर्क प्लेस पे भी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे और आप अपने परिवार और वर्क प्लेस दोनों को मैनेज कर पाएंगे। तो इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं और हम लोगों ने किए भी हैं। उसी कड़ी में ये हार्टफुलनेस संस्था की तरफ से ये मेडिटेशन का भी कार्यक्रम 3 दिन का कोर्स कराया जा रहा है। अभी ऊपर के स्टाफ को कराया जा रहा है, इसके बाद ग्राउंड लेवल वर्कर्स को कराया जाएगा। तो उसी कड़ी में ये कराया जा रहा है। कल हम लोग का पहला दिन था, आज सेकेंड डे हम लोगों ने किया है। फर्स्ट डे में हम लोगों ने ध्यान लगाना सीखा है कि कैसे हम ध्यान लगाते हैं, और आज सेकेंड डे में हम लोगों ने ये सीखा है कि हम अपनी इनर क्लीनिंग कैसे करते हैं और कैसे ध्यान के लिए खुद को तैयार करते हैं। तो ये 2 दिनों का सत्र बहुत ही अच्छा रहा है। जो भी हमारे डाउट्स रहे हैं वो हमने पूछे हैं, तो ट्रेनर ने उनका समाधान भी किया है। और चूंकि अभी ये ट्रेनिंग प्रोसेस है, जाहिर है कि एक दिन में किसी का ध्यान नहीं लग जाता है, एक दिन में सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। बेसिकली ये आज की जो भाग दौड़ वाली लाइफ है उसमें आपको सुकून देने के लिए आपको अपने आप को भी कुछ समय आप इसी बहाने देते हैं, ये हम लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं।
1: आपने जिक्र किया कोर्सेज हैं, क्या इसके लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा, किसी कॉलेज में जाना पड़ेगा, या कुछ ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि वो अपना कार्य करते करते ये कोर्स कर सकें?
0: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सरकार ने, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि इन कोर्सेज के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है आई गॉट पोर्टल, और मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये सारे ही कोर्सेज जो मैंने बताया 200+ कोर्सेज हैं, वो सब ऑनलाइन हैं, छोटे छोटे वीडियोस के रूप में हैं, और डिफरेंट टॉपिक्स पे है, AI पे है, और जो हमारे नए नए टूल्स आ रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं। AI हो गया, और हमारे नए जो कंप्यूटर में एडवांस सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, योगा पे हो गया, इवन बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनका मैं नाम भी नहीं गिना पा रही हूँ। ये सब ऑनलाइन है, छोटे छोटे वीडियोस के रूप में हैं, आपको वो वीडियोस देखने होते हैं। हर कोर्स के बाद आपने कितना देखा है, कितना समझा, इसके बारे में 10-15-20 क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर देना होता है। जब आपके कम से कम 50% से ऊपर क्वेश्चन आंसर सही होते हैं, तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है। ऑनलाइन सब होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने एक कोर्स कर लिया। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं जनरेट हुआ है तो नहीं माना जाएगा कि आपने कोर्स किया है। तो ये आप अपनी सुविधानुसार कभी भी कहीं भी बैठ करके ये कोर्सेस कर सकते हैं।
1: आज के समय में देखा जाता है कि जो बच्चे इतनी मेहनत से पढ़ लिख कर IAS बनते हैं, PCS बनते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाते हैं, कुछ समय बाद वर्क प्रेशर की वजह से या मानसिक तनाव की वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं, ऐसे केसेस बहुत सुनने में आ रहे हैं। क्या आप महसूस करती हैं कि इस तरह के कोर्सेज से कहीं ना कहीं उनको जो

0: परेशानियां, मानसिक अवसाद की स्थिति है, उससे वो निकल सकते हैं?
1: देखिए, मैं किसी पर्सनल उस पर नहीं कमेंट करना चाहूंगी। मैं मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो लोग सुसाइड करते हैं, कहीं ना कहीं चाहे किसी भी वजह से कर रहे हो, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भाव जरूर पैदा होता है, वो अपने आप से हार मान चुके होते हैं। और कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भाव होता है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अपनी लाइफ को ख़त्म करने का डिसीजन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो मेडिटेशन करें, ध्यान करें या मानसिक रूप से मजबूत हों, तो ये जो जल्दी से हार मान लेने वाली प्रवृत्ति है या ये सोचना कि मेरा जीवन व्यर्थ है, अब कुछ हो नहीं सकता है, वो आपको कहीं ना कहीं मानसिक दृढ़ता और मजबूती मिलेगी और आप निगेटिव पक्ष की बजाय आप पॉजिटिव पक्ष की ओर ज़्यादा देखेंगे। तो जब ये फीलिंग आ जाती है इंसान के अंदर, तो जाहिर है कि रिजल्ट भी पॉजिटिव होते हैं।
0: आम आदमी के जीवन में भी ध्यान और योग से क्या बदलाव आ सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, किसी भी?
1: डेफिनेटली बहुत बदलाव आ सकता है। ध्यान और योग दोनों ही आपस में जुड़े हुए हैं और योग को तो सरकार इतना प्रमोट कर रही है, आप देख रही हैं हर साल योग दिवस मनाया जा रहा है। और योग के बारे में तो अब मैं नहीं समझती कि कोई भी ऐसा होगा जो योग के बारे में ना जानता हो। तो योगा से जितने फायदे हैं, शारीरिक फायदे भी हैं और मानसिक फायदे भी हैं। और अगर आप योगा करते हैं तो सबको पता है कि आपकी जितनी भी मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल बनती हैं, बोन्स के लिए कितना फायदेमंद है। ऐसे ही ध्यान भी आपके मानसिक चिंतन के लिए, मानसिक एकाग्रता के लिए और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए ध्यान भी बहुत जरूरी है। तो मैं सभी श्रोताओं से यही कहूंगी कि ध्यान और योग दोनों ही अपने जीवन में एक रूटीन में अपनाएं। और ध्यान और योग में आप जितना समय देते हैं, आप ये समझिए कि आप खुद को वो समय दे रहे हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए, खुद को और अच्छा इंसान बनाने के लिए, खुद को चुनौतियों से लड़ने में सक्षम बनाने के लिए आप अपने आप को वो समय दे रहे हैं। तो ये समय आप जरूर दें, क्योंकि ये सिर्फ आप अपने बेहतरी के लिए ये समय दे रहे हैं। और जब आप ध्यान में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस ईश्वर के साथ भी जरूर जुड़ने का अनुभव करते हैं।
0: इसी कड़ी में हमारे साथ हैं,
2: मैं शशि मिश्रा।
3: मैं निर्मल गौतम।
0: जी बताइए कि ध्यान आप जब आप करती हैं, ध्यान मुद्रा में बैठती हैं, तो आपको कितना बदलाव अपने जीवन में लगा?
2: ये ध्यान हमारा कल से स्टार्ट हुआ है और कल तो हमने सीखा था कि ध्यान कैसे करना है और अपने तनाव को कैसे दूर कर सकते हैं। अच्छा लगा बहुत सीख के और अनुभव भी थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छा रहा। पर जब मैं कल सीख के आज मैंने कहा कि मैं अपने आप करके देखती हूँ, तो जो अनुभव मुझे यहाँ पर हुआ वो मैं अपने अकेले में नहीं कर पाई। तो फिर मैंने यहाँ आगे प्रश्न पूछा, मैम ने बताया कि यहाँ की तरंगे जो आपको पहुँच रही थी वो आपको अकेले में नहीं पहुँची, पर हम 3 दिन के जो ध्यान प्रशिक्षण किया है हमने, उसमें आप स्वयं इतनी परफेक्ट हो जाएंगी कि अच्छी तरीके से ध्यान कर सकेंगी।
0: आपका अनुभव?
4: जैसे ध्यान करने के लिए हम लोग बैठते हैं तो बिल्कुल अकेले और अच्छे से बैठेंगे तो हमें ध्यान बहुत अच्छे से आएगा और जो तरंगे हैं हमारी वो तरंगे अंदर उतरेंगी। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें तनाव को दूर करने में और अपने आप को उस ध्यान मुद्रा में पहुंचाने में। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा टाइम निकाल के सभी लोग इस ध्यान का विशेष करके अनुभव प्राप्त करें और ध्यान जरूर करें।
0: ध्यान की जो मुद्रा है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के आत्मिक चिंतन को बढ़ाती है, यानी आत्मा के बल को बढ़ाती है। वो जान सकता है कि उसके अंदर कितना बल है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था हर व्यक्ति अपने आप में संपूर्ण है। आप इस बारे में क्या महसूस करती हैं? अपना नाम?
5: हाँ जी, मेरा नाम वर्तिका सिंह है और मैं हार्टफुलनेस ट्रेनर हूँ। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ध्यान हमारे एक्चुअल में कॉन्शियस को बढ़ाता है। कॉन्शियस डिग्री ऑफ अवेयरनेस है
0: जी।
5: तो जैसे जैसे हमारा कॉन्शियस बढ़ता जाता है, चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा समझ रख पाते हैं, इवन हम बहुत एम्पैथेटिक हो पाते हैं, लोगों को अच्छे से समझ पाते हैं और जो हमारा व्यवहार है उसमें हम और भी ज़्यादा परिष्कृत हो पाते हैं। जो हमारा वर्क प्लेस है उस पर हम 100% दे पाते हैं और उसके साथ साथ हम अपनी फैमिली को भी लेके बहुत ही अच्छे से चल पाते हैं। तो हम अपने सारे रोल पैरेलल निभा पाते हैं। तो ध्यान केवल स्पिरिचुअल नहीं है, वो हमारी अभिव्यक्ति भौतिक जीवन में भी उसकी आती है। तो ध्यान के माध्यम से हमारे दोनों पक्ष संभल जाते हैं, चाहे वो भौतिक हो चाहे

0: है वो स्पिरिचुअल हो।
1: तो आपको लगता है कि ध्यान हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो?
0: जी बिल्कुल, ध्यान में उम्र और वर्ग की कोई सीमा है ही नहीं। ध्यान धीरे धीरे हमें परिवर्तित कर देता है और ये सभी पे लागू होता है।
1: जी, जैसे आपके यहाँ जो व्यक्ति आते हैं वो ध्यान सीखते हैं, एक आम आदमी जो मतलब आपके साथ जुड़ नहीं सकता या उसको लगता है कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि आजकल की भागम भाग की जिंदगी में आजकल जो इतनी ज्यादा परेशानियां हैं उन सब से वो आगे आ सके, उनसे पार पा सके,
0: उसके लिए हमारे पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, व्हाट्सएप है। तो कोई भी व्यक्ति जो भी चाहता है और किसी वजह से यहाँ तक नहीं आ पा रहा है वो व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकता है और उसके साथ ट्रेनर के साथ भी ध्यान कर सकता है। उनमें उसमें ट्रेनर के साथ ध्यान करने का ऑप्शन है, तो ये सबसे अच्छा माध्यम उसके लिए रहेगा कि वो व्हाट्सएप डाउनलोड कर दे, क्योंकि फोन अब सबके पास अवेलेबल है और हम ज्यादातर चीजें ऑनलाइन करने के आदि हो गए, तो इसमें मुझे लगता है लोगों को परेशानी नहीं होगी, वो इजीली कर पाएंगे।
1: फायदे क्या है ध्यान करने के?
0: ध्यान एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। दूसरा, हम स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन करते हैं, हम रिएक्ट कर देते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी बात बिगड़ भी जाती है। तो हम ध्यान अगर रेगुलर कर रहे हैं तो हमारा ये जो रिएक्ट करने का तरीका है वो रेस्पॉन्ड करने में परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान धीरे धीरे हमारे आचार व्यवहार को बदलता है, हम दूसरों को समझ पाते हैं, हम खुद शांत रह पाते हैं। तो व्यवहारिक पक्ष इसके ऐसे हैं कि हमें अनुभव जब हम करेंगे तो हम खुद ही महसूस करेंगे कि क्या परिवर्तन आ रहा है।
1: आज की युवा पीढ़ी को इसकी ज्यादा जरूरत है?
0: बिल्कुल, आज की युवा पीढ़ी को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि युवा पीढ़ी के पास पहले तो बहुत अच्छे दोस्त, फैमिली, सब कुछ था। आजकल के बच्चों के पास ऐसी चीजें नहीं है, पीयर प्रेशर बहुत है और बच्चों को लगता है कि कोई उन्हें अप्रिशिएट करे, लेकिन जब वो खुद से जुड़ के जीवन जीते हैं तो उन्हें दूसरों के निगाहों में अपने आप को पहचानने की जरूरत नहीं होती।
1: बहुत उम्दा बात आपने बोली, खुद से जुड़कर पहचाने।
0: जी, खुद से जुड़ के जब वो जीवन जीते हैं तो उन्हें किसी दूसरे के अप्रिशिएशन की जरूरत नहीं पड़ती। इवन वो इंट्यूटिव होते हैं, उनको समझ आता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, किसी के कहने से या किसी के प्रेशर में वो कोई गलत काम नहीं करते। और बहुत सारे एडिक्शन जो आजकल बच्चे शिकार हो जाते हैं, तो अगर वो ध्यान करते हैं तो उनमें ये खुद ब खुद चीजें डेवलप होती हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या उनके लिए अच्छा रहेगा, ये उसकी बहुत अच्छा पक्ष है। और दूसरा, आजकल जो मीडिया की वजह से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हम ओवरलोड कर रहे हैं, तो जब हम ध्यान
1: कुछ सही और
0: कुछ गलत भी, तो ध्यान के माध्यम से हम जागरूक हो जाते हैं, अवेयरनेस के साथ जी पाते हैं, हम चुनाव कर पाते हैं कि हमें क्या सही है हमारे लिए और जो सही नहीं है क्या हमें उसे छोड़ना है। तो ये चीजें ध्यान के माध्यम से हमारे जीवन में उतरती हैं।
2: बहनों, अभी आपने ओबी पर आधारित वार्ता सुनी, ध्यान और योग का महत्व। इसमें प्रतिभाग कर रही थीं श्रीमती बुद्धि मिश्रा, वर्तिका सिंह, शशि मिश्रा और निर्मल गौतम। तो बहनों, हमारे जीवन में ध्यान का, योग का क्या महत्व है, बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त की हमने। और वनिता लोक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं थोड़े से गीत संगीत की ओर और सुनते हैं एक प्यारा सा गाना।

तो वेणु वनिता लोक कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है और चलते चलते हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि जो आनंद शांत रहकर चुप रहने में है वो शिकायत करने में नहीं है। इसलिए आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने जीवन में नियमित व्यायाम, ध्यान, योग, इन सभी को महत्व दें और प्रत्येक दिन पानी 8-10 गिलास जरूर पिएं और अपने आप को धूप से बचाव करते हुए अपनी और अपने परिवार की सभी की रक्षा करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। इसी के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया दीप्ति शर्मा ने। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना नीति मोहन को फिल्म पद्मावत के इस गीत के लिए। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर को, फिल्म थी मैंने प्यार किया। इस गीत को लिखा असद भोपाली ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला और आखिरी गीत।

अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की जुगलबंदी में फिल्म मन के इस गीत को। फिल्म संगीत का ये सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर। इस समय अपराह्न के 2 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में होंगे समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर

0: विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारे की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और

0: अपने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर हॉर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
1: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमेरिका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था।

0: अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
2: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
3: आराम से मैडम।
2: क्या?
3: आराम से पहुंचेंगे मैडम। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
4: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

0: पतंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोड़ जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
3: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले

जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है। यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून हैं, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते, जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओं, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओं, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्यौहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओं, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्वविख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं।

0: इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं।

आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के

0: बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
1: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो

0: से की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
1: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
2: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना, जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
1: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
2: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो।
1: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
2: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहां ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया।
0: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
1: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। दो दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
2: भोली चिड़िया।

0: तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
1: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो?
0: हाँ?
1: मैं तुम्हें नहीं जानती।
0: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
1: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
0: चिड़िया, तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूं।
1: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
0: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
1: वो सोना क्या चीज होती है?
0: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
1: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
0: ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी मां है, पर मां क्या है,

0: इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
1: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
1: सेठ, मुझे देर हो रही है।
0: देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
1: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
0: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
3: जी मालिक।
2: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
0: हाथ से निकल गई।
2: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
1: माँ
2: ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
4: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
1: ना,
4: ना, ना।
2: पर बच्ची

कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। संध्या के 4 बजे हमारी दूसरी सभा के प्रसारण में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय संध्या के 4 बजे हैं। अब हमारी दूसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नंदन वंदन अभिनंदन। मैं गीतिका उनियाल संदेश टू सोल्जर्स के आज के संक में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। यह हमारे लिए हमेशा ही हर्ष की बात है कि हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हमारे मेहमान हमें कुछ ऐसा दे जाते हैं जो ना केवल एक याद होता है लेकिन हमारे लिए एक पग होता है आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश के प्रति अपनी सद्भावना को दिखाने के लिए। और हम हमेशा यही कहते हैं कि संदेश टू सोल्जर्स के अपने इन एपिसोड्स के माध्यम से हम घर घर तक पहुंचते हैं, हर उस घर तक जहां से एक वीर निकलता है, जहां से एक सिपाही निकलता है, जहां से माँ ये कहती है कि जा बेटा निकल, तुझे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना, तेरी माँ वहीं तेरे लिए खड़ी है तेरी आस में, लेकिन तुझे सर्वप्रथम भारत माता के लिए, चाहे फिर तेरे अपने प्राणों का निछावर क्यों ना करना हो, तुझे हमेशा हमेशा देश की गौरव के लिए, समृद्धि के लिए काम करना है, कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और आज इसी कड़ी में हम आप सभी से साझा करना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आमंत्रित हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तरवर, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, थल सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी कर्नल वरुण सिंह तनवर, जिन्हें 2023 में माननीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। तो आइए सर्वप्रथम हम स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर जी का। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: थैंक यू सो मच गीतिका एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स लिसनर्स हु हैव कम इन।
0: जी जैसा कि मैंने कहा कि हम घर घर तक पहुंच रहे हैं, हर घर से एक वीर निकलता है, एक सिपाही निकलता है, अधिकारी बनता है, देश के लिए समर्पण की भावना लिए वो यही सोचता है कुछ भी हो जाए लेकिन देश की आन बान और शान के लिए हमेशा हमेशा अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहूंगा। लेकिन वो फैसला लेना कि मैं देश के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ, मैं आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले ये भावना अपने मन में उत्पन्न करना कि देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है। आपके मन में ये भावना कैसे उत्पन्न हुई कि मुझे भी देश के लिए काम करना है, क्योंकि जिस वक्त ये फैसला लिया होगा निश्चित रूप से बहुत छोटी उम्र के रहे होंगे आप।
1: बिल्कुल गीतिका जी, मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। मेरे नाना जी मेजर नाथन सिंह, वो फर्स्ट राजपूत जो कि अभी फोर गार्ड्स है उसमें थे, सेकंड थर्ड जीआर में भी थे। मेरे फादर खुद कर्नल गजराज सिंह आर्मी सर्विस कोर में थे। और मैं वैसे हरियाणा का रहने वाला हूँ, हमारा मेरा गांव है जाटू लोहारी भिवानी में
0: जी।
1: वहाँ से भी एक एक एक वो है, ट्रेडिशन है कि सारे बच्चे

0: फौज में जाएं। और इन्हीं को देखते हुए मेरा हमेशा मन रहा है कि मैं फौज में जाऊंगा। और मैंने सिर्फ एक ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया था, वो भी राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी का, अपने फादर की यूनिफॉर्म, अपने ग्रैंडफादर की यूनिफॉर्म को देख के उसी से मैं मोटिवेट हुआ और मैंने अपना जीवन सेना को समर्पित कर दिया।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो जब पिताजी को आपने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, और जब उस वक्त फॉर्म भरा होगा, जब सिर्फ एप्लीकेशन दायर की गई होगी, तो उस वक्त घर में माहौल कैसा था?
0: देखिए, हालांकि हम फौजी परिवार से हैं, लेकिन कोई माँ, किसी माँ को ऐसा नहीं लगता कि मेरा बेटा मेरे को छोड़ के चले जाए। तो ये बातचीत तो हुई थी, लेकिन अपने मन पे शायद पत्थर रख के मेरी माँ ने खुशी खुशी मेरे को एनडीए भेजा। मेरे को याद है मेरे सिलेक्शन के बाद हम तीन लड़के थे जो कि साथ में एनडीए की तरफ गए, और रेलवे स्टेशन पे सभी की माएँ हमको बाय बाय करने आई। शायद दो माएँ रो रही थी, लेकिन मेरी माँ हंसते हंसते उनको उन्होंने मेरे को अलविदा किया एनडीए की तरफ।
1: वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात। और एक माँ की पुकार एक माँ ही सुन सकती है। जब भारत माता की बात होती है तो उसकी आवाज ना सिर्फ एक माँ के दिल तक ही पहुंच सकती है, इसीलिए वो अपने बच्चे को तैयार करती है, बोलती है जाओ अब पीछे मुड़कर मत देखना। अच्छा, ये बताइए कि जब आप स्कूल में थे और आपने उस वक्त निर्णय लिया कि अब आर्म्ड फोर्सेस जाना है, साथ में बहुत सारे दोस्त होंगे, क्या उनमें भी यही भावना थी? और जब आपका सिलेक्शन हुआ तो किस तरह से आपको उन्होंने, कहते हैं ना, अपना प्यार कैसे बसाया?
0: मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं, टैप्स बोलते हैं उसको, धौलाकुआं का पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ पे अधिकतर सेना के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो काफी जोश था उस टाइम पे, 92-93 की बात कह रहा हूँ मैं, बच्चों को एनडीए ज्वाइन करने का। और हम तीन चार लड़के सिलेक्ट हुए थे एनडीए में, मैं उनमें से एक था, तो पूरे स्कूल में नाम हुआ। इसके अलावा मैं थोड़ा गोलू मोलू था अपने 12th क्लास में, और जब उन्होंने मेरे को देखा एनडीए जाते हुए, उस टाइम पर मेरे को वजन घटाना पड़ा, तो काफी अचंभित हो गए मेरा मोटिवेशन देख के कि कैसे मैंने इतना वजन घटाया। और जब मैं उसके बाद अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो वो देखते हैं कि कैसे ये एक मामूली सा बच्चा एक अफसर बन गया।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। जब आप ऑफिसर बने तब अलग तरीके से आपको लिया गया होगा, क्योंकि उनका हीरो उनके बीच में था, तो उस वक्त वो उन्होंने आपको बहुत प्रेज किया होगा, पूछा होगा कि क्या हम भी जा सकते हैं आर्म्ड फोर्सेस, ऐसा कुछ हुआ?
0: देखो, जाना तो काफी लोग जाते थे, ये मेरे को हर बच्चा जो कि एपीएस से होता है तकरीबन कोशिश तो करता है बट हो नहीं पाता। तो काफी प्रेज होती है उन बच्चों की स्कूल में, अपने क्लास में, हमारे स्कूल का जो न्यूज़लेटर निकलता है उसमें हमारा नाम आता है। तो और जो मेरे क्लासमेट्स थे जो एनडीए नहीं जा पाए, वो हमेशा मेरे को एक अलग ही नज़र से देखते हैं, एक अलग ही इज्जत से देखते हैं। वो इज्जत तभी मिलती है जब आप मेहनत करके देश के लिए एनडीए या जो भी एंट्री आप चाहते हो फौज ज्वाइन करो।
1: क्या बात है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप अपने दोस्तों के बीच काफी लोकप्रिय थे और इसी वजह से आपको बहुत प्यार भी मिला, दुलार भी मिला। ये बताइए, स्कूल में काफी शैतानियां क्या करते थे?
0: हाँ, यस, मेरा एक बड़ा भाई है तो मैं छोटा, घर में भी छोटा हूँ, और स्कूल में भी मेरे अच्छे दोस्त थे, मैं काफी शरारती था। मेरे 12th ए की बात कर रहा हूँ, अगर कोई मेरे 12th ए वाला सुन रहा है तो, काफी शरारती था मैं, लड़कों लड़कियों को दोनों को तंग करता था छोटी मोटी बातों के लिए, कभी कभी उनका टिफिन खा जाता था, गोलू मोलू तो था ही मैं, पर मैं काफी लोकप्रिय था। मेरे अच्छे दोस्त हैं और कुछ हैं जो अभी भी मेरे ख्याल में 30-35 साल बाद मेरे टच में हैं, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, हम उनसे बात करते रहते हैं। जो रिश्ते स्कूल में बने वो अभी तक बरकरार है।
1: अच्छा, ये बताइए, शैतानियों का ये दौर क्या एनडीए तक जारी रहा, या वहां पर आप एनडीए खड़कवासला वहां एंटर करते साथ ही डिसिप्लिन बॉय बन गए? आर्मी का तो काम ही है आर्म फोर्सेस का कि आपसे, आप में से एक ऑफिसर बनाना है, लेकिन एक यंग बच्चा जब आर्म फोर्सेस ज्वाइन करता है या पहले एनडीए एंटर करता है तो उस वक्त उसके सोचने का तरीका सब कुछ अलग होता है, आचार व्यवहार, तो शैतानियों का वो दौर वहां चला या फिर वहीं जाकर एंटर करते साथ ही सुधर गए?
0: शैतानियों का दौर तो एनडीए में भी चला। शुरू में जब एनडीए पहुंचे तो एनडीए की जो फिजिकल एक्टिविटी होती बहुत कठिन होता है, बहुत डिसिप्लिन होता है। हालांकि मैं फौजी बैकग्राउंड से था, लेकिन मैं तैयार नहीं था कि एनडीए में कितना आपको रगड़ा लगता है, कितना डिसिप्लिन, तो उसके चलते थोड़ा शरारत करने का मन तो करता है। और मेरे को लगता है इसीलिए ये जितने भी हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं

0: हूँ चाहे ड्रिल उस्ताद हूँ, वो खड़े रहते हैं हमको ये शरारत करने में रोकने के लिए। एनडीए में मन चंचल होता है, आप सिलेक्ट हो गए होते हो, एनडीए में पहुंच जाते हो, आपको लगता है आप यहाँ के आप ही राजा हो, लेकिन फौज के लिए एक अलग किस्म का डिसिप्लिन चाहिए। टाइम पे उठना, टाइम पे काम करना, टाइम पे हर चीज करना, वो डिसिप्लिन ये हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो हैं, हमारे कोर्समेट्स होते हैं, कुछ कुछ हमारे स्क्वाड्रन सीनियर्स होते हैं, वो हम में लाते हैं।
1: वाह क्या बात है। तभी कहते हैं कि हम आपसे अधिकारी बनाएंगे, आप में से ही उस अधिकारी को निकालेंगे, उस ऑफिसर को बनाएंगे जो कल चलकर देश के लिए अपनी सेवाओं को देगा। तो निश्चित रूप से एनडीए ने आपका फॉर्मेशन किया, आपके व्यक्तित्व का निर्माण किया। एनडीए के उपरांत, एनडीए के बाद फिर आगे कहाँ, किस ओर रुख किया आपने, कब कमीशन हुए और एनडीए की सीधे बाद पोस्टिंग मिली या फिर आगे ट्रेनिंग का दौर चला?
0: एनडीए के 3 साल के बाद 1 साल के लिए मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी गया। देहरादून में स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि बहुत ही पुरानी 1930s की एकेडमी है। वहाँ से मैंने कमीशन पाया रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में। मेरी रेजिमेंट है 93 फील्ड रेजिमेंट, जिसको मैंने कमांड भी किया। और कमीशन होते ही मेरी रेजिमेंट उस समय कश्मीर में तैनात थी। और इमेजिन मेरा मेरी किस्मत कितनी अच्छी, मैं पैदा भी कश्मीर का हुआ हूँ और मेरी पहली पोस्टिंग भी कश्मीर में थी, तो मेरी जन्मभूमि और कर्म भूमि दोनों ही कश्मीर बन गए। मेरी रेजिमेंट ने बहुत अच्छा काम किया उस टाइम पे। 93 फील्ड रेजिमेंट को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला, क्योंकि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में हमने बहुत अच्छा काम किया। और उसी में मैं अपनी रेजिमेंट के रंग में रंग गया और आगे मेरा सफर 93 फील्ड रेजिमेंट और तोपखाना आर्टिलरी जिसको कहते हैं उसमें शुरू हुआ।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो जब एक पूर्ण रूप से अधिकारी बनके पीछे मुड़कर देखा, तो क्या कभी सोचा था कि जो आज सब कुछ महसूस कर रहा हूं शायद वो महसूस न कर पाता अगर यहां ना होता?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं जब अपनी जिंदगी के बारे में सोचता हूं तो मेरा निर्णय, मेरा बैकग्राउंड जिसकी वजह से मैं एनडीए गया, एनडीए में मेरा स्क्वाड्रन हंटर स्क्वाड्रन, मेरे कोर्समेट्स हंटर स्क्वाड्रन के या अलग और कोर्समेट्स हैं, आईएमए में मेरा जोजिला कंपनी, मेरा जोजिला कंपनी के जो मित्र हैं, और मेरी रेजिमेंट 93 फील्ड रेजिमेंट, इनका बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है। जो आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरा वेल्थ ऑफ नॉलेज मैंने इकट्ठा किया है, वो सब इनकी वजह से है। अगर मैं ये शायद नहीं करता तो शायद मेरी मेरी जिंदगी इतनी फुलफिलिंग नहीं हुई होती।
1: वाह क्या बात है। अच्छा एक बात बताइए, और माँ से दूर हुए कुछ दिन तो बड़ा खराब लगता होगा, रोना भी आता होगा, माँ से बात भी नहीं हो पाती होगी, तो ऐसे में क्या करते थे?
0: आप दुखती रख पे मेरे हाथ रख दिया। मैं
1: आज बच्चे के लिए माँ बहुत महत्वपूर्ण है।
0: 2 दिन 3 दिन पहले ही मैं इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे एनडीए में रात को, अच्छा तो मैंने एक फोटो एल्बम लेके गया था मैं,
1: अच्छा,
0: जिसमें मेरे भाई के, मेरी मदर के, फादर के पुराने फोटोज थे उस टाइम पे, तो मतलब नए फोटो थे। तो रात को जब मेरे को याद आती तो मैं फोटो देखता था, एंड शायद एक दो बार शायद रोने को भी हो गया हूं, रोया नहीं हूं, बट देख के ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी माँ किसी तरह मेरे को उठा के वापस ले आओ,
1: ले जा ले, ग्रिल लगा।
0: 5 महीने का टर्म होता है जून टू नवंबर, बस फिर वो वेट करते करते कि कैसे दिसंबर होगा और कैसे मैं घर जाऊंगा, उसी में समय निकल जाता है।
1: वाह क्या बात है। तो माँ का जो प्यार है वो तो हमेशा
0: हमेशा,
1: हमेशा आपके साथ रहता है, कहीं ना कहीं वो जितनी बार आप गिरते हैं ना आपको उठने भी मदद करता है,
0: मदद करती है।
1: आप
0: मेरी माता जी बहुत ही स्ट्रांग, अभी 75 की है, शी इज वेरी स्ट्रांग, और मेरे को लगता है मेरे में जो भी मनोबल आत्मविश्वास आया है, अ लॉट हैज गॉट टू डू विद माय मदर, क्योंकि वो हमेशा, मैंने उनको हंसते हुए कोई भी प्रॉब्लम से आराम से उभरते हुए देखा है, उनको कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा। एक बार जब उनकी मदर पास अवे हुई थी उसी टाइम पे मैंने उनको रोते हुए देखा, वरना मैं उनको कभी रोते हुए नहीं देखा। ऐसी बहुत कम माएं होंगी जिन्होंने, तो शी गिव्स मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन।
1: जी कहीं ना कहीं अगर आपके व्यक्तित्व की बात की जाए तो आर्म्ड फोर्सेस के अलावा माँ का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, और कहा जाता है कि बच्चे का भाग्य उसकी माँ द्वारा निर्मित होता है। तो निश्चित रूप से आप और आप जैसे सभी ऑफिसर्स अधिकारी जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, अपने प्राणों तक का त्याग देते हैं, उन सभी माओं को सलाम है जो कहीं ना कहीं हर बार ये कहती हैं कि जाओ जीतो जंग। कोई एक ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब हो, यहां मैं प्ले करना चाहूंगी।
0: तो माँ के, जब माँ के बारे में बात आती है तो एक वो गाना है, लुक्का छुपी बहुत हुई।

0: जी,
1: वो बहुत ही बेहतरीन गाना है। एंड हाँ। वो पिक्चर भी ऐसी है कि एकदम आमिर खान की पिक्चर है, जो आपको याद होगा मेरे ख्याल में।
0: जी जी, जिस तरह से जो मुद्दे उसमें उठाए
1: मुद्दे
0: गए,
1: उठाए बहुत ही अच्छे मुद्दे थे। एंड आई थिंक वहीदा रहमान जी अपने, जब उनका कफन वापस आता है उसको देख के वो गाना गाती हैं,
0: हाँ हाँ
1: जो फाइटर पायलट बचे थे उनके।
0: जी
1: एंड मेरे जितने भी एयरफोर्स कोस्टमेट्स हैं जिन्होंने देश के नाम अपने जान निछावर कर दी है, उनके लिए ये गाना और देश की सारी माओं के लिए गाना।
0: वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारी बात आपने यहाँ पे कर दी है। और ये गाना भी उतना ही प्यारा है जो एक माँ के दिल के जज्बात और उसके जज्बात देश प्रेम से जुड़े हुए हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, उसके पास रहोगे तब भी याद करेगी, दूर हो जाओगे तब भी याद करेगी। तो उन सभी माओं को यहाँ पर कर्नल तनवर ने यहाँ पर एक तरीके से सलामी दी है। माँ को सलाम करना निश्चित रूप से हर व्यक्ति को अपनी निजी जिंदगी में करना चाहिए। सो वी आर प्रिविलेज टू हैव कर्नल तनवर ओवर हियर हु हैज सच काइंड ऑफ, ये कहूंगी मैं, सोच है जिसके पास, जो अपनी माँ के लिए सोच सकता है वो देश की सभी माओं के लिए सोच सकता है।

0: आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और किससे बात करने के बाद ना जाने कहते हैं कि स्मृति के पन्नों को जब पलटा जाता है ना तो लगता है कि कुछ कहानियां हम जैसी हैं। और कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर से बात करते हुए ना जाने कितने फौजी जिस वक्त हमें सुन रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि जब हम अपनी किताब के स्मृति पन्नों को पलट रहे हैं तो कर्नल तनवर को सुनने के बाद वो सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि आपने जीवन के उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर कर दिया। खासतौर पर जब एक बच्चा एनडीए जाता है और उसके बाद फिर आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से वो देश के लिए अपनी सेवाएं देता है, लेकिन कहते हैं कि कुछ कारवां बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं और आपके लिए आपके घर में ही वो माहौल बन चुका था। एक बात बताइए कर्नल तनवर, मुझे पिताजी की यूनिफॉर्म कितना फैसिनेट करती थी आपको, क्योंकि आप रोज पिताजी को देखते होंगे उस यूनिफॉर्म में, तो उस यूनिफॉर्म ने कहीं ना कहीं आपके दिल में क्या वो जगह बना दी थी?
1: बिल्कुल, इनफैक्ट मेरे को बहुत ही डिस्टिंक्ट मेमोरी है। मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड स्टैंडर्ड में, फिरोजपुर में मेरे फादर पोस्टेड थे और एक दिन वो स्कूटर था उस टाइम पे हमारे पास, स्कूटर में आम लेके आए थे, आम छोड़ के वापस ऑफिस जा रहे थे। तो मैंने उस टाइम पे मेरे को ध्यान आया जिस जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहन रखी थी, मेरे को लगा हाँ मैं भी यही यूनिफॉर्म पहनूंगा। और तब से ही मेरा ये जज्बा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, एक ही एग्जाम दिया मैंने एनडीए का, और बारहवीं के बोर्ड एग्जाम से पहले ही मैंने सब क्लियर करके बैठा हुआ था। सो दैट मोटिवेशन मेरे पिताजी से ही, और वो फैसिनेशन यूनिफॉर्म का मेरे नाना और मेरे पिताजी से ही आया।
0: वाह क्या बात है। अगर अब आपके कार्यकाल की बात की जाए तो 26 सालों का ये जो सफर है, सफर नहीं हम कहेंगे इसको, हम कहेंगे ये तो कहीं ना कहीं आपके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर हम किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो वो संस्था कहीं ना कहीं हमारा विकास करती है। हम अपनी सेवाएं देते हैं, निश्चित रूप से हम भी कुछ अर्जित करते हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद भी आपको महसूस हो रहा होगा जैसा कि कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, तो आज भी वो फीलिंग, वो अनुभूति विद्यमान है, आई एम स्टिल एन ऑफिसर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके बात करने के तरीके, जिस तरह से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपका जो बैठने का पॉस्चर है, आई कैन वेल प्रेडिक्ट यस आई एम टॉकिंग टू एन ऑफिसर। और कहीं ना कहीं आप जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम भी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं फीलिंग अभी भी साथ होगी।
1: बिल्कुल गीतिका, मेरे को हालांकि मैंने यूनिफॉर्म पहनना छोड़ दिया है, लेकिन मेरी, मेरा सोच विचार, मेरे मोटिवेशंस, मेरे बिलीफ्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए। फौज में जो सिखाया गया है वो बहुत अच्छी चीज सिखाते हैं, वो एक इंसान को हमेशा ठीक चीज ही करने को बुलाते हैं। आर्मी में बोलते हैं चूज द हार्डर राइट देन द ईजियर रॉन्ग, और उसी वही ट्रेनिंग को मैंने अपने रिटायरमेंट के बाद मान रखा है। और मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कभी फौज मेरे को छोड़ सकेगी, हालांकि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा। मेरे यार दोस्त, मेरा सोच विचार, मेरा देश प्रेम, मेरे रेजिमेंट की तरफ मेरा प्रेम, मेरे स्क्वाड्रन की तरफ मेरा प्रेम ऐसा है कि मैं मरते दम तक शायद फौजी ही रहूंगा।

0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। वो कहते हैं कि रग रग में जितने कतरे जो है लहू के बह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय सेना का बहुत बड़ा योगदान है और आप जी रहे हैं उसे आज भी। लेकिन अगर स्मृति के पन्नों को फिर पलटा जाए और आपके उन मिशंस की ओर रुख किया जाए जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जहन में आपके दिल में एक घर बना रखा है, खुद भी याद करते होंगे, अकेले बैठते होंगे, इंट्रोस्पेक्शन करते होंगे, तो स्मृति पल आपको याद आते होंगे जहां जिंदगी के टफेस्ट डिसीजंस लिए गए। कौन से मिशंस थे जो दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं?
1: तो आई थिंक एक सबसे पहला जो मेरा मोटिवेटिंग इंस्टेंस रहा है वो मेरी स्क्वाड्रन में रहा है, हंटर स्क्वाड्रन में, मतलब कमीशन के बारे से पहले ही बात कर रहा हूं मैं, और ये शायद फोर्थ टर्म था। और हंटर स्क्वाड्रन एक स्क्वाड्रन होती है जिसमें जो बोलते हैं बहुत मुश्किल स्क्वाड्रन है, वहाँ पे फिजिकल कार्रवाई बहुत ज़्यादा करते हैं। उस टाइम पे 12 स्क्वाड्रन होती थी, तो 12 में से सबसे टफ स्क्वाड्रन बोलते थे हंटर स्क्वाड्रन। और हंटर स्क्वाड्रन में 1.5 साल हो गए थे हमको, और हमने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, मतलब कोई चैंपियनशिप हमने नहीं जीती। खूब मेहनत करते थे हम भी, सुबह शाम दिन रात, सुबह 4 बजे भी, रात को 12 बजे भी, फिर हम, लेकिन हमारे पास ट्रॉफी नहीं आती थी। फिर किसी तरह मेहनत करके सब चीजें इकट्ठा हुई, हमको रियलाइज हुआ कि सिर्फ अंधाधुन भाग दौड़ करने से हम जीत नहीं पाएंगे, हमने कुछ दिमाग लगाया और फिर हमने एक ड्रिल कॉम की ट्रॉफी जीती। और उस ड्रिल कॉम ट्रॉफी जीतने के बाद हमने एक गाना, तब बहुत मशहूर होता था यहाँ के हम सिकंदर, उस गाने पे कर तकरीबन 2-3 दिन हमने बस उसी गाने पे डांस किया, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि हमारा जो 1.5 साल का परिश्रम है, तपस्या है, वो फाइनली पूरी हुई। तो उससे मेरे को जिंदगी में बहुत सीख मिली कि कैसे अपने अपनी मेहनत को एक तरफ चैनलाइज करके, जीत की तरफ चैनलाइज करके जीत हासिल करना।
0: वाह क्या बात है, अगर आपने उस नगमे की बात यहाँ पे की है तो क्यों ना उसी नगमे को हमारे लिसनर्स तक जरूर पहुंचाया जाए और आगे का कारवां आप ही की जुबानी हम सुनेंगे, क्योंकि भी बहुत कुछ है कर्नल तनवर से सुनने के लिए। बने रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए संदेश टू सोल्जर्स।

0: संदेश सोल्जर्स के आज के इस अंक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और आज हमारे साथ स्टूडियो में है कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर। और कर्नल तनवर को सुनने के बाद ना मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ना जाने मैं कितनी ही लोगों की कहानियां एक साथ पढ़ रही हूँ, एक साथ सुन रही हूँ, क्योंकि जो ताना बाना कर्नल तनवर ने यहाँ पिरोया है ना, आपके बहुत सारे बैचमेट्स कोर्समेट्स कहीं ना कहीं अगर वो सुन रहे होंगे या आगे चलकर हमें यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे तो वो यही कहेंगे कि जैसे आपने उनके दिल की व्यथा कह दी। कहते हैं कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है लेकिन यहाँ गंतव्य डेस्टिनेशन एक है और वो है देश प्रेम, देश के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। सेवाओं में रहते हुए यानी कि भारतीय सेना में आपका जो योगदान है वो अतुलनीय है, लेकिन वो एक मिशन जो आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, क्या उसको आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? कोई कैसा मिशन जिसके बारे में बार बार जब आप सोचते हैं तो कभी शायद आंखों में आंसू भी आते हो, दिल भर भी जाता हो, लेकिन गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है।
1: 97 जून में मैं कमीशन हुआ और 1999 जून दो साल बाद कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। उस टाइम पे हम सब दो साल के यंग ऑफिसर्स थे और कारगिल की लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई थी, पहाड़ चढ़ने पड़ते थे, लीड फ्रॉम द फ्रंट जो हमको बचपन से सिखाया गया एनडीए में कि आप आगे आगे चलेंगे। तो उस समय मेरे काफ़ी कोस्टमेट्स ने अपने जान देश के लिए निछावर कर दी। उसमें मेरे क्लासमेट भी थे जो मेरे साथ स्कूल में थे, यहीं पे एपीएस धौलाकुआ में अनुज नैयर, मेजर अनुज नैयर, जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र भी हैं मेरे कोस्टमेट मनोज पांडे। तो कई कोस्टमेट्स थे जिन्होंने अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी और आप उनके साथ कॉलेज में थे, आप अगर इंडिया को कॉलेज माने तो जब आप उनका नाम पढ़ते हैं तो आपको उस टाइम पे तो बहुत ही कोई भी चीज़ आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकती कि जब आपका एक चहिता हालांकि देश के लिए देश के काम में चला गया लेकिन आप कभी इसके लिए तैयार नहीं हो सकते। तो कारगिल की का जो युद्ध था वो शायद हम सब कोस्टमेट्स के लिए एक बहुत ही डिफाइनिंग मोमेंट था जिसने हमको असली जिंदगी के बहुत पास ला के खड़ा कर दिया, लड़ाई के पास ला के खड़ा कर दिया और हमने उस युद्ध में विजय पाई। उस विजय दिवस हम मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस भी मनाते हैं, तो हमारे कोस ने जो उसमें सैक्रिफाइसेस दी वो रंग लाई, हमने जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको मार गिराया, खदेड़ दिया, हिंदुस्तान से वापस भिजवा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसमें मेरे कोस 90th एनडीए 100 रेगुलर का बहुत बड़ा हाथ है। तो वो शायद एक ऐसा मिशन था जो हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा।
0: जी, आपके लिए गौरवपूर्ण पल था कि आप वहाँ साक्षात कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ निर्णय तो होते हैं, आउटपुट रिजल्ट्स तो बाद में पता लगते हैं जब निर्णय सामने आते हैं, लेकिन उस क्षण जब एक ऑफिसर एक निर्णय ले रहा होता है उस वक्त उसके मन में क्या होता है, क्या सोचता है?
1: सारे जो निर्णय इन परिस्थितियों में अफसर रहता है उसमें सबसे पहले वो अपने देश के बारे में सोचता है, मिशन, कि मेरा मिशन क्या है, ये करने से क्या मेरा मिशन अकम्प्लिश होगा और क्या मेरे देश को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर उसमें उस में खड़ा हुआ वो डिसीजन तो उसके बाद कि भाई मेरे जो जवान है, मैं एक लीडर हूं, मेरे नीचे जितने भी जवान हैं, जो मेरा कमांड है, चाहे वो एक सेक्शन हो, चाहे एक प्लटून हो, चाहे कंपनी हो, चाहे एक बटालियन हो, उनके हित में ये है कि नहीं।

0: और फिर आगे आगे ऐसे से करके उस तरीके से डिसीजन देते हैं। ये बहुत ही फेमस कहावत है, चेटवुड क्रेडो बोलते हैं उसको, कि द सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम एंड देन द ट्रूप्स यू कमांड एंड लाइक। तो मेरे को लगता है आपको वो इनग्रेन कर दिया, आपके अंतर आत्मा में उसको इनग्रेन कर दिया कि आप जो भी डिसीजन लेते हो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन, चाहे वो मिशन हो कोई गेम जीतना या युद्ध जीतना या कोई एक्सरसाइज में कार्रवाई करना, तो सबसे पहले मिशन ओरिएंटेशन जीत, उसके बाद वेलफेयर ऑफ ट्रूप्स। मेरे ख्याल में दिस इज हाउ यू आर मेड टू टेक डिसीजंस।
1: अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इमोशंस, भावनाएं, ये व्यक्तिगत तौर पर हर व्यक्ति में विराजमान है। हालांकि फोर्सेस आपको इस तरह से तैयार करती है कि आप हर भावनाओं के परे उससे ऊपर उठकर काम करते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि उस वक्त कारगिल वॉर में खास तौर पर जब आपके साथी जा रहे थे, अलविदा कह रहे थे, उस पर निर्णय लेना और उस वक्त अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और अपने सभी साथियों को एक छतरी के नीचे संभाल के रखना कितना महत्वपूर्ण और कितना जटिल होता है।
0: बहुत बहुत महत्वपूर्ण, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है गीतिका जी। चाहे आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, जब मौका आता है वो डिसीजन लेने का, जो कि डिसीजन का आउटकम या तो जीत हार में नहीं बोलूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे वो जीना या मरना के डिसीजन पे, तो वो डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे को लगता है कि वो सिर्फ एक एस्प्री डी कोर होती है, जैसे मैं 93 फील्ड रेजिमेंट में था, तो वो 93 फील्ड रेजिमेंट को जीत प्राप्त करनी ही करनी है। तो जो ये मेरे ख्याल में जो आप पूछना चाहते हैं वो क्या वो डर होता है, चाहे वो खौफ होता है, चाहे वो भय होता है, क्या वो आपके अंदर आता है कि नहीं आता। पर मैं ये एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता हूं कि जब उस समय आप एक एज एन ऑफिसर कोई डिसीजन लेते हैं तो ये भय, डर, खौफ काफी पीछे रह जाता है। सबसे पहले आपको अपनी रेजिमेंट की इज्जत सामने आती है कि भाई मेरी रेजिमेंट, मेरे कमांड, चाहे मैं एक बैटरी कमांडर हूं चाहे जो भी हूं, उस कमांड को सक्सेस करना है। मैं और अगर सक्सेस नहीं हुआ तो जिस प्रकार से मेरा देश मेरे को देखेगा, मैं उसके लिए उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो चाहे मेरी जान जाए लेकिन मैं ये कार्रवाई करके ही रहूंगा। और ये ऑफ कोर्स जैसे हमारी 3-4 साल की ट्रेनिंग है, जो रेजिमेंट में कार्रवाई होती है, यूनिट्स में कार्रवाई होती है, वो आपको ताकत देता है कि आप उस समय ये डिसीजन ले सके।
1: जी, तो कहीं ना कहीं सेना आपकी मानसिक और शारीरिक भी आपका मनोबल बढ़ाती है, आपकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से कर देता है कि आप हर निर्णय लेने में सक्षम हो जाते हैं, थैंक्स टू द टफेस्ट ट्रेनिंग्स आई वुड से।
0: बिल्कुल गीतिका, आपने बिल्कुल ये शब्द मेरे मुंह से ही निकाल लिए कि यस, ये हमारी भारतीय सेना का के ट्रेडिशंस है, स्प्रिट कोर है, भारतीय सेना का जो सालों पुराना ट्रेडिशन है जीत हासिल करना, वही है जो आपको ये डिसीजंस लेने में मदद करता है।
1: जी जी, निश्चित रूप से। आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सेना ने आपको तैयार किया है, आज भी आपको लगता है कि आप अपनी निजी जिंदगी में भी निर्णय ले पाते हैं आसानी से, क्योंकि आपके साथ जो मेहनत की गई वो अपने आप में ही सबसे अलग है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी कुछ जो जिस कार्य में मैं लगा हुआ हूँ उसमें कई सिविलियंस के साथ मैं डील करता हूँ, और मेरे को रियलाइज होता है कि जो जिस भाव से वो अपने काम को अप्रोच करते हैं और हम जैसे अप्रोच करते थे उसमें काफी फर्क है। जैसे फौज में अगर आपको एक काम मिल गया है तो आप कुछ भी करोगे वो काम को सक्सेस करने के लिए, उस एम अचीवमेंट के लिए। लेकिन जब अभी मैं कॉरपोरेट में हूं, कॉरपोरेट में जैसे कार्रवाई होती है वो थोड़ी अलग होती है, उसमें कहीं ना कहीं एक स्वार्थ खुद का आ जाता है। लेकिन जब आप देश के लिए कार्रवाई करते हो ना गीतिका, तो खुद का स्वार्थ बिल्कुल पीछे रह जाता है, आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हो और सिर्फ देश और एम और मिशन के बारे में सोचते हो।
1: वाह क्या बात है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कि सेनाएं तो हमें सशक्त करती ही करती हैं, हमें तैयार करती हैं कि कैसे हम मैदानी जंग में अपना दमखम साबित कर देंगे, लेकिन जब एक अधिकारी, एक सिपाही या जिस भी दर्जे पर एक व्यक्ति सेनाओं में रहकर अपनी भूमिका निभा रहा है, अपना योगदान दे रहा है, आप एज एन ऑफिसर कैसे सेनाओं को सशक्त करते हैं, ये अलग बात है। कितना महत्वपूर्ण होता है कि आप सेनाओं में हैं, आप सेना में हैं, आपको भी सेना को सशक्त करना है।
0: बिल्कुल गीतिका, जैसे मैं जो जिस कारगिल के बारे

0: में जब हमने बात करी, जिन जो मैंने नाम लिए, चाहे वो परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे, महावीर चक्र विजेता अनुज नैयर, उनका नाम हमेशा गौरवशाली रहेगा, हमेशा लेकिन इनके पीछे भी कई लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये मेरे को पता चला जब मैं सेना भवन में इन माय लास्ट टेन्योर पोस्टेड था, कि कैसे आर्मी हेडक्वार्टर में लोग निरंतर काम कर रहे हैं हमारी सेनाओं को कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करना, कि जो उनको हथियार, जो उनको असला, जो उनको इक्विपमेंट चाहिए, चाहे वो ड्रोन्स हों, चाहे वो टैंक्स हों, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, ये आसान नहीं है इन चीजों को खरीदना। जब हमारी लड़ाई होगी, जब भी होगी, जिससे भी होगी, उनसे अच्छा सामान होना चाहिए हमारे, तभी हमारा सैनिक जीत पाएगा। इन सबको अरेंज करना, इन सबको सेना के लास्ट फौजी तक पहुंचाना आसान नहीं है। एंड हैट्स ऑफ टू दोज पीपल ऑल्सो जो कि अपने अपने हेडक्वार्टर्स में काम कर रहे हैं, जैसे 416 इंजीनियर ब्रिगेड है, वहां पे ब्रिगेडियर राणा है उदाहरण बॉर्स, वो काम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उनका कमांड लास्ट तक पहुंचे। इस प्रकार कई उदाहरण हैं कि जो लोग अपने अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं ताकि सेना भी सशक्त हो।
1: जी, तभी हम हर बार आकाशवाणी के माध्यम से ये कहते हैं कि जब आप चैन की नींद सो रहे हैं तो कोई है जो आपके लिए निरंतर मुस्तैद है, जो निरंतर आपके लिए काम कर रहा है। और भी होंगी बहुत सारी बातें, लेकिन कर्नल तन्वर, यहाँ पर आपने कुछ दोस्तों के नाम लिए, नैयर साहब का आपने नाम लिया यहाँ पर, वो तमाम दोस्तों का जिक्र किया जिन्हें आपने कहीं ना कहीं निजी रूप से खोया है, पर हम यही कहेंगे कि आज जो हम देश का परचम लहरा रहे हैं सिर्फ उन्हीं काबिल वीर ऑफिसर्स की वजह से, और उन्हीं के नाम ये अगला नगमा हमारी ओर से आकाशवाणी की तरफ से।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हर बार की तरह ये कार्यक्रम निजी रूप से मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि कहते हैं कि हम जीवन में जब जो प्राप्त नहीं कर पाते तो हमें उस

0: कर पाते तो हमें उस मंजिल की तरफ हमेशा आकर्षण होता है। वो लोग जिन्हें वो मंजिल मिली है वो अपने आप को खुश नसीब समझते हैं, और आकाशवाणी के माध्यम से जब हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं तो हम अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि ऐसे दिग्गज हमारे बीच हैं जो अपनी बात हम तक साझा कर रहे हैं, आप तक साझा कर रहे हैं, तमाम फौजियों की बातें साझा कर रहे हैं, उनकी कहानियां सुना रहे हैं अपनी कहानी के माध्यम से। कर्नल कुंवर वरुण सिंह तनवर हमारे साथ हैं आज हमारे स्टूडियो में, और बहुत सी बातें हमने की है। आपके मिशन के बारे में बात की, आपके आपने जो कोर्स किया एनडीए के, आपके कार्यकाल यानी कि एनडीए के दिनों की बात की। अब एक सबसे महत्वपूर्ण और निजी सवाल, वो पल जब आप अपनी अर्धांगिनी से मिले, सर्वप्रथम सबसे पहले तो ये बताइए करल तनवर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गुस्ताखी माफ, आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज?
1: जी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। मेरी शादी, इनफैक्ट मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, मेरी वाइफ का परिवार भी भिवानी में है, एंड सबसे पहले मैं अपनी वाइफ को मैंने देखा 2002 में, 2002 तकरीबन अप्रैल मई का महीना था, और मैं उस टाइम पे एक चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था तवांग में, एंड वापस जा रहा था छुट्टी सी, तो मेरी माँ ने बोला आ जाओ एक घर के पास, एक घर में चलते हैं। मैं कहा किस लिए, बोलते नहीं नहीं चलो चलो चलो, और वहाँ पे मैं सबसे पहले अपनी वाइफ से मिला। माय वाइफ वाज इन सेकंड थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग,
0: सो स्वीट,
1: एंड तो पहली बार मेरे को काफी डर गई वो मेरे को देख के, मैं तो अवसर था वो, शी वाज अ यंग गर्ल, आई थिंक शी ऑलमोस्ट क्राइड, रोई थी वो एक्चुअल में।
0: अच्छा।
1: एंड तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, एक साल बाद हमारी एंगेजमेंट हुई, और एक साल बाद 2004 25 फरवरी को हमारी शादी हुई, और जिंदगी उसके बाद बदल सी गई। जैसे मेरी वाइफ मेरे को हमेशा बोलती है कि अफसर तो मेरे को फौज ने बना दिया था, लेकिन मेरे को इंसान उसी ने बनाया।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, जब आपने उनसे कहा होगा कि देखो मैं फौज में हूँ और बहुत मुश्किलात आएंगी, बहुत बार ऐसा होगा जब मैं तुमसे बहुत दूर जाऊंगा और हो सकता है कि हमारे और तुम्हारे बीच वार्तालाप ना हो पाए, कॉन्वर्जेशन ना हो जाए, पर तुम धैर्य रखना, ऐसा कई बार कंसोल करना पड़ा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, माई वाइफ इनफैक्ट नीति, आई एम श्योर शी इज लिसनिंग टू मी, तो कई बार हुआ ऐसे जब फौज में शादी करना वैसे ग्लैमरस लगता है बट आसान नहीं है, तो हैट्स ऑफ टू ऑल आर्मी वाइव्स आल्सो, उनके हस्बैंड्स उनको छोड़ के देश के लिए दूर दराज इलाके में पोस्टेड होते हैं, पीछे से वाइफ बच्चों के साथ, कहीं अपने सास ससुर के साथ, कहीं पे भी कुछ घर संभालती हैं, आसान नहीं होता। ये तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहा हूं, हस्बैंड वापस आए, कैसे आए, चोट खा के आए या ना आए, ये अनसर्टेनिटी सहन करना आसान नहीं होता, तो हैट्स ऑफ टू देम। मेरे को याद है मैं एक कोर्स कर रहा था, उसके बाद मेरी पोस्टिंग राष्ट्र राइफल्स में हो गई थी कश्मीर में, पहली बार पोस्टिंग फील्ड जा रहा था मैं शादी के बाद, तो काफी हताश हुई मेरी वाइफ कि तुमने जानबूझ के जाना चाहते हो उधर, बट हाँ किसी तरह हमने उनको मनाया, एंड टच वुड थिंग्स आर नाइस।
0: यही मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो दास्तान है, कहानी है, एक सिर्फ एक ऑफिसर की नहीं, उन तमाम ऑफिसर्स की है जो अपनी फैमिली और साथ ही साथ देश के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको कहते हैं ना बैलेंस करके चलते हैं, और इसमें आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है, आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन काफी कारगर साबित होती है,
1: बिल्कुल
0: नित्य प्रति कार्य करती रहती है, तो कहीं ना कहीं हम सल्यूट करते हैं हमारी सेनाओं को जो ना केवल हमारे इस तरह के सैनिक अधिकारी कहते हैं उनको जन्म देती है, पर साथ ही साथ उनके परिवारों का भी खासा ख्याल रखती है, और हैट्स ऑफ टू द वाइव्स ऑफ द आर्मी पर्सनल्स जो अपने कहते हैं कि अपने वीर पति, अपने वीर सोलमेट के दूर होने के बाद भी सुचारू रूप से घर को चलाती है विदाउट एनी कंप्लेंट्स।
1: इसमें जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, फौज का बहुत बड़ा हाथ रहता है, बहुत इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलती है, बहुत ज्यादा, जैसे मैं बता रहा था आर्मी स्कूल्स होते हैं, वहां पे आर्मी हॉस्पिटल्स होते हैं, सब कुछ अंदर होता है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बहुत ही इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिलता है जिससे हमारी कार्रवाई आगे घर गृहस्थी चलती रहती है।
0: कोई ऐसी बात जो बहुत ही प्यारी हो, बहुत ही इमोशनल हो आपकी वाइफ के संबंधित, जिसको आप बार बार जिक्र करते हैं, खासतौर पर तब जब उनसे दूर थे या सेवाओं में थे, तो उनकी बातें, कोई ऐसा गाना या उनका अपने इमोशंस दिखाने का तरीका जो आपको बहुत याद आता है अभी भी?
1: बहुत याद आता है, ऑफकोर्स माई वाइफ इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन इन द वर्ल्ड, बट शी इज ऑल्सो प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड।
0: क्या बात है।
1: तो हमारी जो लेडीज संगीत होता है उसमें मेरी वाइफ ने एक सॉन्ग पे डांस किया था, मैं तेरी हो गई यार सजना वे सजना, और

0: जिस तरीके से उन्होंने डांस किया था, अभी मेरे ख्याल में कितने 22 साल हो गए हैं, मेरे को अभी तक मेरी मेरी आंखों के सामने वो नजराना
1: वाह
0: आ
1: क्या
0: जाता
1: बात है,
0: है,
1: यानी कि वो पल जिस
0: वो
1: वक्त
0: पल
1: आंकड़े
0: जिसमें
1: सूत्र
0: उन्होंने
1: में
0: डांस
1: बंधे
0: किया है,
1: और उनका नृत्य कहीं ना
0: उनका
1: कहीं
0: बहुत
1: आपको
0: अच्छा।
1: लुभा गया। वाह क्या बात है, कहते हैं कि जीवन की छोटी बड़ी बातों में वो प्रेम छुपा होता है, तकरार होती है, और कहते हैं कि इमोशंस तो सब जगह एक जैसे हैं और वो भावनाएं ही हैं जिनकी वजह से हमारा जो इंडियन मैरिटल सिस्टम है वो आज भी बहुत ज्यादा मजबूत है। तो उस नगमे का जिक्र आपने यहां पर कर दिया, तो क्यों ना नाम के लिए ये नगमा हम यहां से प्ले करें।

0: और हम भी हरदम हर पल बस आपके हैं, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। और करल तलवर, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तो चाहती हूँ निजी रूप से कि अगर मुझे मौका मिले ना इसी जिंदगी में रहकर कि मैं आर्म फोर्सेस ज्वाइन कर सकूँ, मैं कभी मना नहीं करूँगी। आप बताइए, डू यू वॉन्ट टू रीलिव दोस 26 ईयर्स अगेन?
1: गीतिका, ऑफकोर्स, अगर मैं अपने पिछले 26 साल फौज में जो मैंने बिताए हैं उनके बारे में सोचूं तो इतना फुलफिलिंग लाइफ रहा है। इंडिया में आपको क्या क्या नहीं कराते, सेलिंग, राइडिंग, प्लेन में चलाते हैं, मैंने पूरा देश देख लिया है। ऐसा कोई प्रांत नहीं रहा है जहां पे मैंने कुछ दिन नहीं बिताए हैं। विदेश दिखाया है, देश ने मेरे को रशिया भेजा, देश ने मेरे को फ्रांस में भेजा, मैंने लड़ाई लड़ी है दूसरे देश के साथ, टेररिस्ट के साथ, मैंने कई हजार करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एक जगह से साइन किए हैं, मैंने जिंदगी के सबसे हसीन पल, चाहे वो ज्योग्राफिकली हो, जैसे कि इतनी सुंदर जगह जैसे तवांग, कश्मीर, कोयम्बतूर, इतनी सुंदर जगह पे जाके मैंने बिताए हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता किसी और।

0: और एक एक बहुत ही डाइवर्स लाइफ मैंने देखी है। ये सिर्फ लाइफ ही डाइवर्स नहीं, जितनी इज्जत हमारे देश में हमारा देशवासी फौजियों की करता है, वो इज्जत मिलना और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। और मैं यही बात हर देश के युवा को कहना चाहता हूं, मैं अपने बेटे को भी कहता हूं, मेरा बेटा भी अरिमर्दन सिंह तंवर सेकेंड ईयर लॉ में है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, उसको भी मैं बोलता हूं कि बेटा फौज में आप आके देखिए, देखिए वो कैसी जिंदगी आपको देता है, आपका कायाकल्प कर देता है, जितनी इज्जत जितनी शोहरत जितना सेटिस्फैक्शन आपको फौज में सर्व करके मिल सकता है और कहीं ना कहीं भी नहीं मिल सकता।
1: जी बिल्कुल नहीं मिल सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं है। विशिष्ट सेवा मेडल 2023 में आपको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्वारा, वो पल, वो अविस्मरणीय पल आपके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गया, एक ऐसी बात, एक ऐसा सम्मान जिसे आप दोहराते रहेंगे, बताते रहेंगे सबको, कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है उन तमाम बच्चों के लिए जो आर्म फोर्सेस जाना चाहते हैं। वो पल कैसा था जीवन में?
0: आई थिंक मेरी जिंदगी का एक बहुत ही इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग मोमेंट वॉज वेन जब मेरे को प्रेसिडेंट ने विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। इससे क्या होता है, अवार्ड तो है ही, ये हमेशा मेरे नाम के साथ जुड़ जाता है
1: जी।
0: मैं अपने नाम को कर्नल KVS तंवर VSM लिख सकता हूँ, और जो एक ऐसी उपलब्धि है बहुत कम लोगों को वो मिलती है। इसकी मेरे को किस लिए मिला, मैं सेना भवन में जब आर्मी हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था तो मैंने कुछ काम किया देश के लिए कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में, जिसकी वजह से मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल मिला। और हमेशा मैं आभारी रहूंगा हमारे सीनियर्स का, मेरे जो सीनियर्स थे उस टाइम पे ब्रिगेडियर होती थे जनरल राजू थे, ब्रिगेडियर मोंगा थे, जनरल मोहंती थे, जिन्होंने मेरे को गाइड किया और ये मेरे को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान हुआ।
1: वाह क्या बात है। वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम छात्र छात्राएं, आज तो हम देखते हैं किस तरह से युवतियां भी आर्म्ड फोर्सेस में परमानेंट कमीशन मिल रहा है, और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं
0: आज की युवा को? मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि सेना जैसा माहौल, सेना जैसा लाइफ, सेना जैसा करियर आपको नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा करियर है जो सिर्फ ना सिर्फ आपकी किंतु आपके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा
1: जी।
0: आपको एक ऐसे राह में ले जाएगा जहां पे हर चीज आपको नेक्स्ट लेवल की मिलेगी। तो सारी युवाओं और युवतियों से मैं ये बताता हूं कि आर्मी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आसान नहीं है आर्मी में आना, बिल्कुल आसान नहीं है। आप मेहनत करें तो आप आर्मी में आएं और देश सेवा कैसी होती है आप सीखें।
1: जी हम दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस प्रोग्राम के माध्यम से आप उन सभी तक पहुंचे हैं जो कहीं ना कहीं या तो अपनी कहानी दोहरा रहे हैं आपको सुनने के बाद, बहुत सारे हमारे ऑफिसर्स सेवानिवृत्त हैं या अभी सर्विसेज में हैं, या वो लोग जो चाहते हैं कि हम सेना में रहकर सेवाएं दें, देश के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा को साबित करें, उनके लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत सारे अनछुए पहलुओं को अपनी जिंदगी के यहाँ उजागर कर हमें कहीं ना कहीं सेनाओं से जोड़ दिया, देश प्रेम से जोड़ दिया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि बहुत सारे संदेश हम पहुंचे हैं और सभी ने आपको सलाम कहा है, आपके जज्बे को सलाम कहा है। सभी दोस्तों से हम माफी मांगना चाहेंगे कि आप सभी के नाम हम जरूर नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन कर्नल तंवर को मैं आपके संदेश इस प्रोग्राम के बाद जरूर दिखाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार हम पुनः धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल कुंवर वरुण सिंह तंवर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए और हम तक इन प्यारी प्यारी बातों को साझा करने के लिए।
0: थैंक यू सो मच।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5 बजे और आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर को अभी आपने सुना, फिल्म थी मितवा, बोल इसरार अंसारी के थे, धुन तैयार की थी रूप कुमार राठौर ने।

किशोर कुमार और सुमन कल्याणपुर को अभी आपने सुना। फिल्म थी नागिन, गीत वर्मा मलिक का था, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म संगीत इस समय शुदा सुन रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

जावेद अख्तर की शब्द रचना अभी आपने सुनी, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म थी मिस्टर इंडिया, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मेरी जंग फिल्म का गीत अभी आपने सुना, अनुराधा पोडवाल और साथियों की आवाज़ों में, बोल आनंद बख्शी के थे, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अन्नाथा पोटवाल और मोहम्मद अजीज के गए खतरों के खिलाड़ी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है और अब युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। मित्रों, आज महारानी लक्ष्मीबाई का शहीदी दिवस है। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी ये सिंह गर्जना करने वाली वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अमर ज्योति हैं। 18 जून 1858 को देश की रक्षा करते हुए ये वीरगति की प्राप्त हुई। इसी दिन को रानी लक्ष्मीबाई शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका शौर्य आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की आग जलाता है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। बचपन का नाम मणिकर्ण का था। प्यार से सब मनु बुलाते थे। मात्र 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। पति की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने हड़प नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहा, पर रानी झुकने से इनकार कर दिया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की कमान संभाली। उन्होंने महिलाओं की सेना बनाई और खुद पुरुष वेश धारण कर युद्ध लड़ा। मार्च 1858 में अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने झांसी पर हमला किया। रानी ने 8 दिन तक किले की रक्षा की और जब किला हाथ से निकल गया तो अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर कूद गई। कालपी ग्वालियर में तात्या टोपे और राव साहब के साथ मिलकर फिर अंग्रेजों से लड़ी और 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में युद्ध करते हुए वे घायल हुई और वीरगति को प्राप्त हुई। कहा जाता है कि मृत्यु से पहले उन्होंने साधु से कहा था कि मेरे शरीर को अंग्रेज ना छू पाए। घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध नीति में रानी निपुण थी। महिलाओं को सेना में शामिल कर नारी शक्ति का भी परिचय दिया और स्वाभिमान अंग्रेजों के सामने कभी नहीं झुकी। उनका नारा था, झांसी मेरी है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। 18 जून का दिन हमें याद दिलाता है कि आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली है। रानी लक्ष्मीबाई जैसी हजारों वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया और तब जाके हमें ये आज़ादी मिली है। रानी लक्ष्मीबाई केवल झांसी की रानी नहीं, पूरे भारत की शान थी। उनका जीवन साहस, स्वाभिमान और देशभक्ति का प्रतीक है और आज की बेटियों के लिए वे सबसे बड़ी प्रेरणा हैं। उनके शहीदी दिवस पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम देश की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, उनकी शहादत को शत शत नमन। और अब महारानी लक्ष्मीबाई पर ही एक विशेष कार्यक्रम। रानी लक्ष्मीबाई, आलेख और प्रस्तुति अमरलता या

0: التفكيحي.
1: आज हम गाथा कहें उस वीरांगना की, लक्ष्मीबाई नाम था जिसका, झांसी की महारानी थी। कौन होगा जो इस वीरांगना और महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई को नहीं जानता होगा। 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में श्री मोरपंत तांबे व श्रीमती भागीरथी तांबे के घर एक नन्ही परी की किलकारी गूंजी। यह एक मराठी ब्राह्मण परिवार था।

की भागीरथी की लाडली, घुड़सवारी शस्त्र विद्या सब में थी निपुण प्यारी। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन सभी प्यार से उन्हें मनु कहते थे। मनु की उम्र मात्र 4 वर्ष की थी तब उनकी माता का निधन हो गया। माँ की मृत्यु के बाद उनके पिता उनको पेशवा बाजीराव के दरबार में ले गए, जहां वो काम करते थे।

रानी लक्ष्मीबाई वहां अपने पिता के साथ राज दरबार जाती थी। चंचल और सुंदर मनु को लोग प्यार से छबीली भी बुलाने लगे। उन्हें बचपन से ही शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र विद्या की भी शिक्षा दी गई। समय बीता, हालात बदले और मात्र 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया गया। झांसी के महाराजा से हुआ विवाह महान दत्तक पुत्र दामोदर संग बसी सुख की पहचान। उनका विवाह मई 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ।

1951 में रानी ने पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। उनका एक दत्तक पुत्र दामोदर राव था, जो महाराज के भाई का बेटा था। विधि का विधान छीन लिया महाराजा, अंग्रेजों की चालों ने लगाया हर निशाना। सन 1853 में रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में एक और भूचाल आया और लंबी बीमारी की वजह से उनके पति महाराजा गंगाधर राव का निधन हो गया। अंग्रेजों ने लैप्स नीति के तहत, जिसमें पैतृक वारिस न होने की स्थिति में राज्य को अंग्रेजों के साम्राज्य में शामिल होने का प्रावधान था, झांसी पर अधिकार जमाने की कोशिश की, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने इसे अस्वीकार करते हुए संघर्ष का मार्ग चुना। चमक उठी सन 1857 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी। रानी ने झांसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली और एक स्वयं सेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती भी की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण भी दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में सहयोग दिया। 1857 के सितंबर और अक्टूबर के महीने में पड़ोसी राज्य के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया, जिसे रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साहस से विफल कर दिया। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुकती तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 1858 में ब्रिटिश आर्मी ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू किया और चारों तरफ से झांसी को घेर लिया। लगभग 2 हफ्तों तक लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गईं और कालपी पहुंचकर तांत्या तोपे से मिली। दोनों ने मिलकर ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों के साथ ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। उनका साथ बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर ने भी दिया और रानी ने उन्हें अपना भाई बनाते हुए राखी भी भेजी। 18 जून 1858 को मात्र 23 साल की उम्र में ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश आर्मी से लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हुई। हमें इस महान महिला स्वतंत्रता सेनानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा खुद और अपनी बेटियों को साहसी, कुशल और बहादुर बनाना चाहिए। अपने वतन की रक्षा करते हुए कुर्बानी देना सौभाग्यजनों को ही मिलता है। उन्होंने कभी अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और आखिरी सांस तक लड़ती रही।

शत्रु बहुत तेरे, होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, तेरा स्मारक तुम ही होगी, तुम खुद अमिट निशानी हो, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी।

0: रानी लक्ष्मीबाई। साथ ही सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम, आलेख और प्रस्तुति अमरलता यादव की थी।
1: जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: साथियों, इस वर्ष 18 जून को श्री गुरुजू अर्जुन देव जी के शहादत दिवस मनाया जा रहा है, जो 5वें सिख गुरु के सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में है। आज के दिन विश्व भर के सिख प्रार्थना, कीर्तन और सामुदायिक सेवा, विशेष रूप से लंगर के माध्यम से एकत्रित होते हैं। साथ ही उनके निस्वार्थ सेवा और धार्मिक स्वतंत्रता के उपदेशों को याद करते हैं। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 में भारत के गोइंदवाल में हुआ था। उनके पिता गुरु रामदास और माता भानी थीं। उनके नाना गुरु अमरदास और परदादा गुरु रामदास थे। पिता की मृत्यु के बाद 18 वर्ष की आयु में वे 1581 में 10 सिख गुरुओं में से 5वें गुरु बने। गुरु अर्जुन देव जी ने 1604 में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या हरमिंदर साहिब के निर्माण की पहल किए जाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने गुरुद्वारे के चारों द्वारों को भी डिजाइन भी तैयार किया और घोषणा की कि उनका धर्म सभी जातियों के लिए है। अगस्त 1604 में उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया, जिसमें सभी पूर्व गुरु

लोगों के लेखन एक ही पुस्तक में संकलित हैं। उन्होंने गुरु रामदास द्वारा शुरू की गई मसांद प्रणाली का पालन किया, जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का कम से कम दसवां हिस्सा सिंह संगठन दसवांत को दान करना चाहिए, जो गुरुद्वारों और लंगर के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराता था। 1606 में उन्हें लाहौर के किले में कैद कर लिया गया और मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा यातना देकर मार डाला गया, जिसने उन पर जुर्माना लगाया था और कुछ ऐसे भजन मिटा दिए थे जिन्हें वह आपत्तिजनक मानता था। इतिहास में गुरु अर्जुन देव जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। वे न केवल सिख धर्म के पांचवें गुरु ही नहीं थे, बल्कि सत्य, त्याग, सेवा और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पहले शहीद गुरु भी थे। उनकी शहादत मानव इतिहास में साहस और आध्यात्मिक दृढ़ता का अद्वितीय उदाहरण मानी जाती है। हर वर्ष उनका शहीदी दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है, जिसमें उनके महान बलिदान और शिक्षाओं को याद किया जाता है। और इस बार भी पांचवें सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस 18 जून यानी आज मनाई जा रही है। ये दिन मानवता के प्रति उनके समर्पण और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है। गुरु अर्जुन देव जी का जीवन सिख धर्म के विकास और गुरु ग्रंथ साहिब के प्रारंभिक संकलन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने समानता, भाईचारे और सेवा का संदेश दिया, जो आज भी लाखों लोगों के लिए जीवन को प्रेरित करता है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ.
1: और अब आज का युवाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए. नमस्कार.

0: अभी श्रोता युववाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। छह बजने को कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा

0: कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोबरे, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटेक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: टू बी इन पेरिस for the 10th edition of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
1: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
3: पत्तन रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मेट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले तीन दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बम्बई शेयर बाजार का संविदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है हमारे यहां से आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज रात 8 बजे श्रोता सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम। समय रहेगा आज रात्रि 8 बजे। रात 9:30 पर कंट्री वाइड कार्यक्रम होगा। इनसाइट्स प्रोग्राम का प्रसारण किया जाएगा रात 9:45 पर, और ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अब से कुछ देर बाद संध्या 6:15 पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसान वाणी कार्यक्रम होगा, जिसमें आज मिट्टी परीक्षण का महत्व और संतुलित उर्वरक प्रबंधन और कम लागत से अधिक उत्पादन कैसे करें चर्चा करेंगे दीपक गोस्वामी। भेंटवार्ता होगी खेत बचाओ अभियान क्रम में मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने हेतु परंपरागत तरीके। प्रगतिशील किसान गेंदालाल से बातचीत करेंगे ओपी सिंह। इसके अलावा कुछ लोकगीत होंगे, साथ ही मौसम का हाल और बाजार भाव बताया जाएगा। समय रहेगा संध्या 6:15।

फिल्मी भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन का प्रसारण होगा आज सायं 6:45 पर। संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम में देश समारोह में श्रोता लेंगे जानकारी झीलन के शहर उदयपुर के विषय में। वार्ताकार होंगे भगवान सिंह चौहान। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे संध्या 7:20 पर।

श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा शाम सुहानी संध्या 7:31 पर। चितपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने का समय रहेगा रात 9:15।

आज रात 10 बजे श्रोता सुनेंगे विशेष रूपक अमरवीर बलिदानी झांसी वाली रानी। आलेख प्रकाश दीक्षित का होगा, प्रस्तुति मदन मोहन मिश्रा की। आज श्रोता सुनेंगे इसका प्रथम भाग। समय रहेगा आज रात 10 बजे। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर आज की कलाकार होंगी विदुषी बेगम मुख्तार, जिनके स्वर में सुनेंगे श्रोता ठुमरी और दादरा। हिंदी समाचारों का समय रहेगा 8:45 और रात 11 बजे। अंग्रेजी समाचार होंगे रात 9 बजे और रात्रि 11:05 पर। हमारी दूसरी सभा का समापन होगा रात 11:10 पर। यह था आज का कार्यक्रम विवरण।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देशभक्ति पर रचना।

अरसे प्रसाद के शब्द रचना भी आपने सुनी संवेद स्वरों में FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित

0: कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम किसान।
2: और अब श्रोता सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे दीपक गोस्वामी।

0: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी कुछ नजर आ रहे हो।
1: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है।
0: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
1: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें किसान.gov.in और farmer.gov.in।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। मिलेगा

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों को हमारी राम राम। भैया, खेती किसानी हमारे जो भैया हैं दिन रात काम में लगे रहे, लेकिन यह काम के संग संग कछु ऐसी बात भी बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें समझनी होगी। वो ये है कि हमारी माटी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी खेती की पहली नींव है हमारी खेत की माटी। यह माटी की अगर परीक्षण की हम बात करें तो ये जो परीक्षण हम करामे हैं ये हमारी खेती के लिए एक वैज्ञानिक सोच के संग संग आवश्यक भी है, क्योंकि अगर हम बगैर माटी की जांच कराए हुए खेती कर रहे हैं तो यह समझ लो कि हमारी खेती में हम अधाधुंध जो यूरिया डीएपी जो डाल रहे हैं वे सब हमारी खेती में लागत लगाए हुए के अलावा और कछु नहीं। हमारी लागत भी बढ़े है और वाको उपयोग भी नहीं हो पे। तो भैया, सही पोषक तत्वों की जानकारी के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। मिट्टी में हमारे जिंक, सल्फेट, बोरोन, आयरन जैसे कौन से सूक्ष्म तत्व हैं परीक्षण से मालूम पड़े और हमें कौन सी तत्व की आवश्यकता है ये भी वही से मालूम पड़े। संग ही संग भैया, जैसे आपसे पहले भी चर्चा करी कि लागत लागत यानी जो आवश्यक हो वही डारो जाए, जाकी आवश्यकता ना है वो डारवे की कोई जरूरत ना है। तो ये कैसे मालूम पड़ेगी? ये मालूम तभी पड़ेगी जब हम मिट्टी की जांच कराएंगे और मिट्टी की जांच कराए के बाद अपने प्रयोग में लाएंगे। हमारे जो खेत की माटी में जो उपयोगी हैं हमारे अम्लीय क्षारी तत्व और या की जो क्या स्थिति है,

हमारी फसल में कौन कौन से अच्छे पोषक तत्वों की आवश्यकता है, और हमें परीक्षण के बाद जब हम चूना या जैविक खाद से बाकी लवणता को हम सुधार सकें, बाकी अम्लीयता को सुधार सकें, ये हमें तभी मालूम पड़ेगा जब हम मिट्टी पानी की जांच कराएंगे। संगई सिंह भैया, जब उत्पादन की बात हुई, अगर हमने लागत ही खूब सारी डाल दी और फिर भी अगर उत्पादन नहीं भयो, उत्पादन में भी संतुलित पोषण होए, जड़ मजबूत हों, कल्ले ज्यादा हों और दानेदार चमकदार हो, तो ये सब चीजें बहुत अच्छी लगेगी। और अच्छी कब लगेगी? जब हम बाको ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखने के लिए क्या करवाना है कि अपने खेत में से 5-6 जगह में से माटी इकट्ठी करके अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र पे या जो हमारी सरकारी माटी परीक्षण की जो प्रयोगशाला बनी है वहाँ पे हम जाके जांच कराई सके और यह कराए के हम अपनी खेती को बढ़िया कर सके। तो भैया, हमारी खेती में जो आवश्यक है वो यही है कि हम वैज्ञानिक सोच के संग अपने अनुभवन को जोड़ें और जो सरकार के द्वारा हमें लाभ मिल रहे हैं वाको प्रयोग करते हुए अपनी खेती में संतुलित उर्वरकन के प्रबंधन की व्यवस्था करें। तो ये तो भैया बात रही माटी परीक्षण के महत्व और संतुलित उर्वरक प्रबंधन की। आज हम आपको सबसे पहले तो सुनवा में है यह ब्रजलोक गीत।

0: मन लाग्यो द्वारिका नाथ, प्यारे तेरे चरणन में। अब भैया आप आनंद ले रहे मयूर कौशिक के स्वर में या ब्रज लोकगीत को। अब भैया अब आपको खेत बचाओ अभियान के क्रम में मृदा स्वास्थ्य बनाए रखवे हेतु परंपरागत तरीकन से संबंधित आज हम जानकारी दिवाए रहे हैं। हमारे विशेषज्ञ वार्ताकार हैं गेंदालाल, प्रगतिशील किसान, और इनसे बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: किसान भाइयों, मिट्टी हमारी वो शक्ति है जिससे हमारा, हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का जो अर्थतंत्र है वो चल रहा है। किसानों के लिए मिट्टी, उसका स्वास्थ्य, उसकी देखभाल आज से ही नहीं, हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रही, और इस बात को किसान लोग समझते थे। उसके कुछ परंपरागत तरीके थे उसके पास, लेकिन ऐसा एक समय आया जब विज्ञान ने प्रगति की, हमारे बहुत सारे ऐसे साधन खेती बाड़ी के उन्नत हुए, और उसमें एक चीज़ थी रासायनिक खाद। रासायनिक खाद आए, उत्पादन बढ़ा, लोगों की माली हालत भी सुधरी, लेकिन कोई चीज़ किसी का स्थानापन्न नहीं होती। रासायनिक खाद आ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे परंपरागत तरीके बेकार हो गए या उनके कोई मायने नहीं है, बल्कि आज जब हम बात खेत बचाओ अभियान की कर रहे हैं तो फिर से इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि जितना आवश्यक रासायनिक उर्वरक है उसमें दो खादों की अक्सर चर्चा होती है, डीएपी और यूरिया। फसल उत्पादन के लिए ये दोनों आवश्यक हैं, उतने ही हमारे परंपरागत तरीके भी आज भी प्रासंगिक है, उनकी भी उपयोगिता है, और अगर उनको उपयोग नहीं कर रहे तो फिर ये जो रासायनिक खाद है उनका भी लाभ उतना नहीं मिल पाता। इसके व्यावहारिक अनुभव क्या हैं, व्यावहारिक क्या पक्ष हैं, आज हम जानेंगे। हमारे साथ गेंदा सिंह रावत जी हैं, आप प्रगतिशील किसान हैं, उन्नत किसान हैं, एक तजुर्बा है उनके पास खेती बाड़ी का लंबा। गेंदा सिंह जी, हमारी इस चौपाल में आज आपका स्वागत, राम राम
2: राम, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर
1: जी। तो ये जो तरीके हैं खेती बाड़ी के पुराने, आप क्या कहेंगे कि आज
2: जी।
1: बहुत तो हम बात कर रहे हैं खेत बचाओ अभियान की, तो ये बात क्यों आन पड़ी कि भाई खेतों को बचाना है? खेत तो आज हमारे पास ही है, लेकिन क्या उनका स्वास्थ्य खराब हो गया
2: बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, और ये पूरे देश में अभियान चालू है,
1: है?
2: खेत बचाओ अभियान जो है। खेत तो वहीं पर है, लेकिन जो खेत की जो स्ट्रक्चर है हमारा, जो खेती से हम जो लेते हैं उत्पादन लेते हैं, उसमें हमारा बहुत बड़ा ह्रास हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। आज सरकार को इस बात की बहुत बड़ी चिंता है कि किसान हमारा किस तरह से अपने खेती को करे, कैसे जमीन के मृदा को बनाए रखे, उसके आधार पर खेती को अपना करे। और देश में जो आवश्यकता है, जो आज लाजरा बीमारियां जो पैदा हो रही हैं, उनसे किस तरह से छुटकारा मिले।

0: तो मैं तो आपकी वार्ता का बहुत बड़ा स्वागत करता हूँ किसान भाइयों। ये बहुत ही अच्छा विषय आज डॉक्टर साहब ने पूछा है, खेत बचाओ अभियान जो हमारे देश में चल रहा है, हमारे प्रदेश में चल रहा है, और आप देख रहे होंगे जगह जगह ब्लॉक स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर ये कार्यक्रम रखे गए हैं और इसकी आज आवश्यकता है। क्योंकि हमने सबसे पहली बात, हमने जो हमारी जमीन का मृदा है उसके बारे में जानकारी हमारे किसान बहुत कम रखते हैं। सबसे पहला इलाज है, हम बीमारी जब हो जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर निदान करता है, डॉक्टर रिपोर्ट लेता है, टेस्ट कराने बाद कौन सी बीमारी है, कौन सा इलाज किया जाए, सेम बिल्कुल वही चीज़ हमारी ज़मीन के अंदर है। लेकिन हम अपने थोड़े से लालच में आकर के, जब से डॉक्टर साहब हमारे देश में हरित क्रांति आई, सबसे बड़ा तो यही सबसे बड़ा कारण बना है कि हरित क्रांति में किसान हमारा इतना जुड़ गया कि सबसे पहले नाइट्रोजन का प्रयोग किया, उसके उपरांत उसे हरियाली दिखी, थोड़ा लालच बढ़ा, फिर फॉस्फोरस आ गया, उसके उपरांत वो जो है तुम्हारा पोटास पर भी आ गया, और धीमे धीमे जो हमारे पोषक तत्व थे उनसे हमारा किसान बहुत दूर चलता चला गया। और आज वो परिणाम हमारे सामने रासायनिक खेती का वो हो गया है, बिना परीक्षण के किए हुए अंधाधुंध रासायनों का प्रयोग करना, चाहे वो कितना भी नुकसान करे हमें, लेकिन हमें अनुभव नहीं है। हमें अगर चार रोटियों की भूख है डॉक्टर साहब तो हम आठ नहीं खा सकते हैं। वही हालत हमारी जमीन की स्ट्रक्चर की है, हमारी जमीन को कितना चाहिए। हम रासायनिक के विरोधी नहीं है, रासायनिक करना चाहिए लेकिन संतुलित करना चाहिए। हमें जो वैज्ञानिक हमारे संतुलित देते हैं मृदा परिजन आधार पर, एनपीके का कितना प्रयोग करें उस आधार पर अगर हमारा किसान इसको करेगा तो ये निश्चित है कि हमारी जमीन सुरक्षित रहेगी।
1: जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम डालें रासायनिक उर्वरक, डालें एनपीके, डालें यूरिया से, डालें डीएपी से, डालें फसल के अनुरूप डालें, लेकिन उससे पहले मृदा परीक्षण करा लें,
0: जी बहुत जरूरी है, मृदा
1: उससे
0: परीक्षण
1: जो
0: बहुत
1: वैज्ञानिक
0: जरूरी है।
1: सलाह कर रहे हैं कि इस खेत
0: हाँ
1: में इस फसल के लिए इतना डालें तो उतना ही डालें, तो इससे तो किसान का फायदा है कि हम ज़्यादा क्यों डालें, जितना वैज्ञानिक सिफारिश है उससे एक तो लागत कम हो जाएगी और मृदा के जो स्वास्थ्य खराब होने की बात कर रहे हैं वो भी नहीं होगा।
0: जब तक हमारा किसान इस बात को नहीं सोचेगा कि हमारी लागत कम हो तभी हमें लाभ हो सकता है। लागत हमारी बढ़ रही है और हमारी पैदावार के साथ हमारे रेट भी डाउन मिल रहे हैं तो किसान लॉस में जा रहा है। उसका कारण यही है कि हम अपनी जमीन के आधार पर जो संपत्ति है उस चीज का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। साथ साथ जो हमारे जीवांश कार्बन है उसकी तरफ भी ध्यान हमारे किसान को देना चाहिए, जिससे कि हमारे पोषण तत्व तो हमारी जमीन के अंदर पहले से मौजूद हैं। लेकिन कारण क्या है कि हमने अंधाधुंध और रासायनिक प्रयोग करने के बाद उनका बिल्कुल अवहेलना हो गई, उन्हें तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और आज परिणाम यह है कि हमारी जमीन ऊसर कलर क्षारीय अम्लीय होने जा रही है, भविष्य में हो भी सकती है।
1: जी, तो इसमें फिर क्या हम अपने जो पुराने परंपरागत तरीके थे खेत में, खेत की मिट्टी को उर्वरा बनाने के लिए, उसको अच्छी करने के लिए बहुत सारे साधन हम पहले से डालते थे, क्योंकि खेती के साथ पशुपालन भी जुड़ा हुआ धंधा हमारा रहा है, उनसे निकलने वाला गोबर है, कंपोस्ट खाद है, नेडप कंपोस्ट हम बनाते हैं, हरी खाद की डालते हैं, या फसलों के अवशेष हैं, ये भी एक समस्या है। जब धान होने लगा तो पराली प्रबंधन भी हमारे यहाँ आया, तो ये चीज़ें आज भी प्रासंगिक हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप?
0: जी हाँ, बिल्कुल यही बात है। सबसे पहली बात, हमारा किसान फसल चक्र को बनाए,
1: जी
0: जितना बने जितना जमीन में जो गैप मिल रहा है गर्मियों की जुताई में उसको गहरी जुताई कर देनी चाहिए। इससे करने से हमारा आधी जो लागत है वो पूरी हो जाएगी, हमारा जो जीवांश सुरक्षित हो जाएगा। मिट्टी पलटने वाले हर चीज दबा दीजिए और हमारी जब समय आ जाए तो हमारे पास कुछ नहीं तो हरा चारे लेकर के, अर्थात ढेंचा लेकर के उसको बुवाई करते हैं। 40-45 दिन के बाद में जब 2 फुट का 2.5 फुट का हो जाए उसको अपना जमीन में हैरो के माध्यम से और काट करके दबा देना चाहिए, जिससे हमारा जो एनपीके है उसकी पूर्ति काफी कर देगा। या हमारे जो पारंगत खेती पहले चले हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, गोबर का खाद इसे कंपोस्ट बनाने के बाद खेत में डाले और खेत में फैलाने के बाद जुताई करके दबा देना चाहिए, जिससे हमारा जीवांश भी बढ़ेगा और हमारी लागत भी कम होगी और हमें रासायनिक को उतना ही प्रयोग करना है जितनी आवश्यकता है।
1: जी, तो अब इसमें जैसे पराली प्रबंधन की बात हो रही थी, अब तो बहुत सारे साधन ऐसे भी आ गए कि बहुत जल्दी ये डिकम्पोज हो जाता है, खाद के रूप में आ जाता है, तो ये चीज़ें किसानों तक पहुंच रही हैं, उनके व्यवहार में आ
0: हाँ
1: रही हैं?
0: पहुंच तो जा रही है। जैसे पहले धान है, पराली को किसान जो है खेत में डाल करके सड़ाने की जगह पर जला देता था,
1: जला देता था,
0: उससे हमारा वातावरण भी अशुद्ध होता था और हमारी जमीन के अंदर जो जीवांश था उसकी हीट से, उसकी गर्मी से

0: कुछ से वो भी नष्ट हो जाता था,
1: और कुछ जो लाभदायक कीट हैं वो भी मर जाते हैं जी।
0: हमारे जो मित्र कीट थे वो भी नष्ट हो जाती थी, लेकिन आज हमारे किसानों में वैज्ञानिकों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, गोष्ठियों के माध्यम से इतना जागृत किया गया, इसको जलाइए नहीं, इसे आप रिसाइकल करें, अर्थात डीकम्पोजर चल रहा है, बहुत कम पैसे का है, उसका छिड़काव करिए और आप जो है उस पर छिड़काव 2-3 दिन के बाद जुताई करके दाव दीजिए। ये भी नहीं हो पाए तो ज्यादा नहीं, थोड़ा सा यूरिया लेके मात्रा लेकर के छिड़काव कर दीजिए और काटने के बाद उसको जो दबा दीजिए, हमारा जीवांश बढ़ जाएगा डॉक्टर साहब।
1: जी जी, तो गेंदा सिंह जी, आप तो अनुभवी हैं, जानकार हैं और चीज़ों से संपर्क में भी रहते हैं, बहुत सारी किसान गोष्ठियाँ होती हैं, बहुत सारे मेले लगते हैं, बहुत सारी संगोष्ठियों में भी आप जाते हैं, तो जानकारी तो बहुत हो गई है, लेकिन किसान उसको उस रूप में ले रहा है, अपना रहा है और उसके लाभों को देख रहा है, क्योंकि जैसे बहुत सी जगह डेमोंस्ट्रेशन लगते हैं, नराया फार्म है हमारे आसपास ही है, वहां जाएं देखें, तो किसानों में ये जागरूकता आ रही है कि नई चीजें,
0: किसानों में जागरूकता तो आ रही है
1: जी।
0: जगह जगह जैसे मेलाओं का प्रोग्राम दिया जाता है, जैविक स्टॉल लगाए जाते हैं, कंपैरिजन किया जाता है कि ये आपका रासायनिक का है सामग्री और ये आपका जैविक का है, तो जैविक का जो लाभ है हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं, हमारे प्रगतिशील किसान भी बताते हैं, तो मैं तो ये राय देता हूँ किसानों को जाकर के, आप ज्यादा नहीं, जितनी जमीन है ज्यादा अपने खाने लायक पहले करके देख लीजिए,
1: देख लीजिए, कम से कम अपने लिए तो शुद्ध बना लीजिए। तो इसमें जैसे फल सब्जियों की जो खेती करते हैं किसान भाई, वो ऑर्गेनिक के नाम पे जब हम मार्केट में रखते हैं
0: जी,
1: बेचते हैं, तो कुछ लाभ उनको, यानी दाम रेट में कुछ ज्यादा मिलते हैं?
0: हाँ, उसकी क्वालिटी अलग ही होती है,
1: हाँ।
0: सुपर क्वालिटी होती है, उसके रेट भी अच्छे मिलते हैं,
1: हाँ।
0: हमें सबसे पहले उस चीज को क्वालिटी में जो है अपना ग्रेडिंग करना चाहिए,
1: हाँ। मतलब मार्केटिंग करें तो अपनी चीज को थोड़ा सा
0: सही सजा के, सजा के अच्छे सो दारी,
1: हाँ।
0: सभी सो पर ही है,
1: कपड़े भी हम
0: गुड़ भी हैं, सो वैसे नहीं बनती है,
1: हाँ।
0: गुड़ है उसमें युक्त होता है, उसमें रासायनिक नहीं है, उसमें हमारे जैविक हैं, हमारे जितने जो तत्व हैं हमारी जमीन के अंदर, बस चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे आयरन हो, चाहे कॉपर हो, या जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं उसके अंदर विराजमान रहते हैं, हमारी प्रकृति इतनी है, देखिए हमारी प्रकृति इतनी मेहरबान है, 98% रोशनी से, सूरज की रोशनी से, हवा से, पानी से पूरी पर्याप्त फसल हो जाती है, तो हमें इतनी आवश्यकता,
1: तो 2% के लिए बहुत ज्यादा करनी
0: जरूरी है, 2%
1: जागरूकता जरूरी है,
0: 2% के लिए परेशानी हो रहे, यानी लॉस में जा रहे हैं इसीलिए,
1: और स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, न सिर्फ मृदा का बल्कि लोगों का भी, प्रोडक्ट अच्छे नहीं आ रहे तो लोग उसको अपना नहीं पाते हैं उसमें, तो
0: डॉक्टर साहब आपने सही कहा, अगर किसान नहीं सोचेगा,
1: हाँ,
0: तो आगे भविष्य बहुत अंधकार में किसान का होने जा रहा है,
1: तो किसान
0: आप
1: को
0: देख रहे हैं कि जमीन रोज घट रही है हमारी,
1: हाँ।
0: जमीन रोजाना हमारी घट रही है, कहीं रोडों में जा रही है, कहीं बिल्डिंगों में जा रही है, कहीं कहीं जा रही है, हमारी जमीन सीमित होने जा रही है, और हमारे उत्पादन में कमी आने के कारण से हमारी बहुत बड़ी स्थिति खराब किसान की हो जाएगी, किसान अपनी सोच बदलनी पड़ेगी
1: जी, मतलब मृदा का स्वास्थ्य अपने स्वास्थ्य से पहले देखना,
0: पहले देखना,
1: तो इसमें जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, मिट्टी पानी की जांच है, पुरानी जो मतलब बहुत सारी चीजें नई आई हैं सरकार बदलने के बाद, तो इन इन चीजों का महत्व है इनको, हाँ, लोगों को
0: हम जाकर के बताते हैं कि हमें मिट्टी कहाँ से न लें और कहाँ से लें, ये सबसे पहले किसान के लिए बात है कि कहाँ से मिट्टी न लेना चाहिए और कौन सी जगह से मिट्टी लें, तो हमने अपना 1 एकड़ का खेत ले ले, मान लो खेत की पहचान होती है, बुर्जी वाला है, बेटोरा वाला है, चक्रोड वाला है, ट्यूबवेल वाला है, नाली वाला है, जैसे घर में परिवार में नाम होते बच्चों के, इसी तरह से हमारे खेतों के नाम ही होते हैं, तो जिस खेत की मिट्टी जांच कराने लेबोरेटरी ले जाएंगे, तो हमें सावधानी थोड़ी ये रखनी है कि सराबर जो हम बोलते हैं करीब 8-10 फुट तक मिट्टी नहीं लेनी चाहिए, आगे बढ़े
1: थोड़ा सा अंदर जाएं,
0: अंदर
1: जाएं, चारों कोनों से ले,
0: अगर वहाँ गड्ढा हो तो वहां से मिट्टी न लें,
1: बीच में से,
0: अगर
1: ले ले।
0: पेड़ खड़ा हुआ है तो उसके नीचे से मिट्टी लें,
1: हाँ।
0: ये तो हमारे किसान को सावधानी करनी होगी, हाँ। अब मिट्टी कहीं से आप लें, आप खुरपी हमारा एक हथियार है, उससे आप जमीन को जहां से ले रहे हैं मिट्टी, एक जमीन में से 1 एकड़ में 4 या 5 जगह से मिट्टी लेनी होगी, तो ऊपर से लेयर को हटा दें हम, और घास कूड़ा हट जाएगा, कंकड़ पत्थर हट जाएगा, और एक वी के आकार का हम गाड़े उसमें 6 इंच के लगभग गहरा करें, मिट्टी को बाहर फेंक दें, उसके बाद साइड से मिट्टी लेते रहें तीनों तरफ से, जैसे त्रिकोण होता है, और अपना छाया बैठ करके 4-5 किलो मिट्टी ले लें 4-5 जगह से, और उसको मिक्सिंग कर दें आराम से बैठ करके, फिर उसके 2 हिस्सा करें, आधे हिस्सा को फेंक दें, फिर आधे हिस्सा को जो है हम अपना फिर मिलाएं, उसके 4 जगह शेयर कर लें, एक शेयर में थे करीबन 1/2 किलो के लगभग मिट्टी मिलेगी, और उसे अपने थैली में भर के 2 पर्ची बनाएं, अंदर डाल दें उसमें, और एक

0: बर्बाद है, तो सबसे पहले किसान का नाम, खेत की पहचान, कौन सी फसल बोई थी, आगे कौन सी बोलना चाहते हैं, पूरा मेटर लिख दें और ले बटू चले जाएं। 30 रुपए की हमारी सामान्य तौर से जांच हो जाती है, पूरी डिटेल आ जाती है कि एनपी की इतनी आवश्यकता है, सूक्ष्म तत्व इतनी आवश्यकता है।
1: इस वाले खाद से आप ये पूरी कर सकते हो, हरी खाद डाल ले तो इससे हो जाएगी, गोबर की खाद डाल ले तो इससे हो जाएगी। तो मतलब एक तरह से आय व्यय का ब्यौरा भी हो जाता है और आपकी लागत भी डिसाइड,
0: लागत कम होगी और हमारी क्वालिटी सुधरेगी। सबसे बड़ी बात है हमारी जो खाद्यान्न है, फल है या सब्जियां हैं, वो उनमें सुधार आएगा।
1: जी जी जी। तो किसान भाइयों, आप हैं गेंदा सिंह रावत जी, प्रगतिशील किसान, आपके बीच से ही और आपकी बात कर रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, इन्होंने बताया कि कैसे करना है, कैसे मिट्टी पानी की जांच करानी है, कितना खर्च आएगा, कहाँ हो जाएगी और किन किन चीज़ों का अगर उपयोग करेंगे तो कैसे आप अपनी माल हालत अपनी बस बना सकते हैं, खेती की जो स्वास्थ्य है उसको कैसे सुधार सकते हैं और उससे मिलने वाले उत्पादन की गुणवत्ता को कैसे अच्छा कर सकते हैं। गेंदा सिंह जी, आप आए, जानकारी
0: आपको भी बहुत
1: इसके
0: बहुत
1: लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: सब किसान भैया को राम राम।
2: अब भाई हमारे किसान भैया जानकारी ले रहे हैं, खेत बचाओ अभियान के क्रम में मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के काजे परंपरागत तरीकन के विषय में जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ किसान, प्रगतिशील किसान गेंदालाल और इनसे बातचीत करें ओपी सिंह। भैया माटी का स्वास्थ्य सबसे जरूरी ये है कि या कि शुरुआत हम अपनी खेत की माटी की जांच कराए के कराएं, क्योंकि जांच के परिणाम के बाद ही हमें सांची स्थिति मालूम पड़े कि हमारे खेत में किन तत्वों की कमी है और कौन सी फसल हमारे खेत में अच्छी होगी, तभी हम अपनी खेती को बढ़िया और अच्छे रूप में कर पाएंगे। और भैया खेती को अगर हम वैज्ञानिक सोच के संग अपने अनुभवन के जोड़ के करें तो निश्चित तौर से आपको लाभ होगा और हमारे खेती में भी गुणवत्ता यानी जो उत्पादन होगा वो भी अच्छा होगा। तो भैया ये तो बात रही खेती किसानी की, अब आपको सुनना में है यह ब्रज लोकगीत।

0: अबे भैया आनंद ले रे, ओम प्रकाश ठाकुर के स्वर में यह प्रचुर लोकगीत। तो भैया यही के संग आज के कार्यक्रम में विदा लेवे को है समय, सभी भैया बहनन को हमारी राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत किया दीपक गोस्वामी ने। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। और अब प्रस्तुत है फिल्मी भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन।

अनाथा पौडवाल को अभी आपने सुना फिल्म थी शिव महिमा। बोल नक्श लायलपुरी के थे, धुन तैयार की थी अरुण पौडवाल ने।

नितिन मुकेश और कविता कृष्णमूर्ति को भी आपने सुना फिल्म थी ईश्वर। शब्द रचना जानकी थी, धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: सोनू निगम के गाए चार धाम फिल्म के इस भक्ति रचना के साथ ही आज का संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या?
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स

0: mistake of?
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। विश्व साहित्य कार्यक्रम में आज देश समारोह में दिमाग में है जानकारी। झीलों को शहर उदयपुर के विषय में वार्ताकार हैं भगवान सिंह चौहान।
2: भारत को वेनिस, राजस्थान को कश्मीर, झीलन की नगरी जिसे बोलो जातो है अरावली पर्वतमाला के बीच सुंदर शहर उदयपुर को। उदयपुर को सन 1559 में मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने बसाया हो। जा शहर को बसावे का उद्देश्य मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर मुगलों द्वारा आए दिन किए जाने वाले हमलन से जनता की रक्षा करना हतो। महाराणा प्रताप, मीराबाई और पन्नाधाई की कर्मस्थली मेवाड़ भारतीय इतिहास को महत्वपूर्ण अंग है। झीलन को, फूलन को वो प्राचीन दुर्गन के अलावा सौंदर्य व मखमली हरचमावारो उदयपुर सैलानियों और नए जोड़न को प्रिय स्थान माना जातो है। महाराणा प्रताप के समय में धनी बिच्छू बंजारे द्वारा 1382 में बनवाई गई पिछोला झील को पश्चिमी किनारो घाट, पर्वत घाट व मंदरंते घिरो गया है। उदयपुर की जिस सबसे गहरी झीलन के बीच में दो टापुअन पे एक एक महल, जग मंदिर और जग निवास खूबसूरत व आलिशान बने हुए हैं। झीलन के दक्षिण पूर्वी किनारे ते सूर्यास्त को देखने लायक और चांदनी रात में नौका विहार मन को खुश कर देते हैं। जा झील के तट पे सफेद संगमरमर ते बनो राजमहल है, जाय सिटी पैलेस को कहते हैं। जे राजस्थान के विशाल महलन में थे एक है। जा में प्रताप कच्छ, शिव विलास, बाड़ी महल, दिलखुश महल, मोती महल, मानस महल व जनाना महल देखने लायक हैं। मोती महल में कांच को खूबसूरत काम है तो बाड़ी महल में एक ही पत्थर से दो बड़े हौज हैं। सवेरे 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक टिकट लेके महल को देखो जा सकत हुआ। पिछोला झील के बीच एक टापू पे महाराणा जगत सिंह द्वितीय द्वारा शांत जलराशि के बीच लेक पैलेस बनवाया हो। ये भारतीय नाएं संसार के सुंदर महलन में गिनो जात हुआ। 1950 से 5-स्टार पैलेस होटल यहाँ चल रहे हुए है। महाराणा सज्जन सिंह द्वारा सन 1881 में करीब 100 एकड़ भूमि में गुलाब बाग लगवाया हो। कोमल घास युक्त बड़े बड़े मैदान, पुस्तकालय, चिड़ियाघर वारो जिबाग सज्जन निवासु कहो जातो है। जा बाग में अनेक दुर्लभ पशु पक्षी और रंग बिरंगे फूल व पूरे बाग में चक्कर लगाई वाली छोटी रेलगाड़ी खास देखवे लायक है। उदयपुर को देखवे लायक फतेह सागर झील है। पिछोला झील ते नहर द्वारा जुड़ी हुई जा खूबसूरत झील के बीच टापू पे नहरी द्वीप द्वारा देखवे लायक है। ये मैसूर के वृंदावन गार्डन के बराबर मानो जातो है। काफी ऊंचाई तक पहुंचे वारो ये फब्बारा रात के प्रकाश में उन कल्पना लोक की सैर करावत है। सूर्यास्त के समय पर्वत शिखरों पर पड़ती सूर्य की किरणों को प्रतिबिंब जब झील के पानी में पड़त है तो मानो झील के सीने पर सोने की सड़क बन गई हो। यहाँ पे सैलानियन के काजें ITDC को होटल हुए। फतेह सागर झील के बराबर में एक सुंदर पहाड़ी मोती महल मगरी हुए। उदयपुर बसावे ते पहले महाराणा उदय सिंह द्वारा जाई पहाड़ी पे बनवाया गयो मोती महल अब खंडर रह चुको है। जाई के पास एक शानदार मूर्ति लगवाए के महाराणा प्रताप स्मारक बनाया गया है। योजनाबद्ध रूप से लगाए गए फूलन के पेड़ पौधे व हरी झाड़ियाँ यकायक आये बार इनको मन मोह लेते हैं। फतेह सागर झील यहाँ ते बहुत सुंदर लगते है। महाराणा फतेह सिंह द्वारा बनवाई गई फतेह सागर झील यहाँ ते

0: रमणीय उपवन सहेलियन की बाड़ी राजकुमारियों व उनकी सहेलियन को खेल मैदान हतो। उद्यान के प्रवेश द्वार पर बड़े हौज के बीच सफेद संगमरमर से बनी भव्य छतरी के आसपास काले संगमरमर की अनेक छतरियां बहुत ही सुंदर लगते हैं। तपती दोपहर में हूँ, यहाँ के फब्बारे बरसात को सो आनंद देते हैं। यहाँ पे जायवे को टिकट लगत हुए और देख विलायक स्थान है। 40 किलोमीटर दूर हल्दी घाटी, 50 किलोमीटर दूर नाथ द्वारा, 30 किलोमीटर दूर जगत, 50 किलोमीटर दूर जैसमंद तथा 25 किलोमीटर दूर सास बहू को मंदिर है। नाथ द्वारा में गढ़ और रामन बमी डोल उत्सव, अन्नकूट उत्सव, श्री कृष्ण जन्म उत्सव, नंद महोत्सव, शरद पूर्णिमा व गंगा दशहरा बहुत ही जोर से मनाए जाते हैं। नाथ द्वारा को जे श्रीनाथ जी मंदिर दूसरे मंदिर से अलग है। यहाँ पे न कोई शिखर है न कोई कलश है, जी ईंट व चूने से बनवाया हुआ है। सन 1671 में मथुरा पे औरंगजेब के आक्रमण के समय वहाँ के पुजारियों ने कृष्ण जी की प्रतिमा राजस्थान भिजवाई गई थी, जाते मुसलमान भाई नष्ट न कर सकें। मेवाड़ के राणा राज सिंह ने बा को स्वागत करो व नाथ द्वारा में सम्मान सहित मूर्ति लगवाई गई। उदयपुर जायवे के काजें वायु मार्ग से शहर से 25 किलोमीटर दूर उदयपुर को हवाई अड्डो उवेक है। यहाँ के काजें देश के बड़े बड़े शहरों से सीधी विमान सेवा है। उदयपुर के काजें सड़क मार्ग राष्ट्रीय मार्ग 8 पे उदयपुर के आसपास के राज्यन व सभी प्रमुख नगरों से सीधी बस सेवा मिल जाती है। उदयपुर जायवे के काजें सितंबर से मार्च तक को समय बहुत ही अच्छो मानो जातो है।
1: देश समारोह में अभी श्रोता ले रही जानकारी झीलन को शहर उदयपुर के विषय में वार्ताकारी भगवान सिंह चौहान। दस साहित्य कार्यक्रम में आप सुनवावे हैं ये लोक रचना।

0: प्रीति वर्मा के गायी या लोक रचना के संग ही आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुए हैं।
1: बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही देर में श्रोता सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी
2: जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: TLI है ना,
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PMsuryaghar.gov.in पर।
8: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
3: TLI है ना,
4: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
9: प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
10: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की 101 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विरासत की रक्षा के साथ विकास यात्रा को गति दे रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को किया संबोधित। कहा, किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक कल आगरा में होगी आयोजित। चीन, रूस और

0: ब्राजील समेत 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। और प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान का छठा चरण शुरू। बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूती से चलाने पर दिया जोर। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ग्राम पंचायत डीह के हिंदू खेड़ा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विरासत की रक्षा के साथ साथ विकास यात्रा को निरंतर गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री योगी ने कहा कि आज उन्नाव की कनेक्टिविटी 4 लेन की हो गई है। उन्होंने कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे आसपास के जिलों को बेहतर आवागमन सुलभ होगा।
1: अब लखनऊ में विकास जो भी होगा वो लखनऊ तक सीमित नहीं होगा, वो सीधे उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा। और इसके लिए जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते होंगे, दिल्ली से देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक पहुंच गई है। एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं लखनऊ से हम उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल के एक नए प्रस्ताव को लेकर के भी चल रहे हैं। एक रिंग रोड बनेगा पूरा चारों ओर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, ये सब जिले आपस में जुड़ेंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्राकृतिक खेती कृषि को अधिक लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री आज कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें सभी सुविधाएं दे रही हैं। किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से मिलने वाली फर्टिलाइजर पर सरकार सब्सिडी दे रही है।
1: प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों को फसल की गारंटी की सुरक्षा मिली, आपदा में गारंटी की सुरक्षा मिली। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली। पहली बार अन्नदाता किसान के लिए प्रोक्यूरमेंट के सेंटर स्थापित हुए और पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा। यानी एक एक कड़ी को जोड़ते गए, आपको जो फर्टिलाइजर कॉपरेटिव सोसाइटी में मिलती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उस बैग की कीमत होती है 4,000 रुपए। यहाँ पे यूरिया का दाम आपको मिलता है उसका 1/4 से भी कम में। ये सारी सब्सिडी भारत सरकार भरती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टरों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर शामिल होंगे और आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल होंगे। आगरा में कल भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इस कार्यक्रम की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखी गई है। ब्रिक्स फोरम की बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, रूस, दक्षिण अफ्रीका और भारत सहित 21 ब्रिक्स देशों और सहयोगी देशों के नीति निर्माता, उद्योगपति और उद्यमी हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में एमएसएमई के लिए वित्त और तकनीक तक पहुंच, सतत विकास तथा वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स एसएमई फोरम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और एमएसएमई के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण विकसित करने की उम्मीद है। ये फोरम सहभागी देशों के ज्ञान का आदान प्रदान करने और उभरते अवसरों की पहचान करने और समावेशी और सतत आर्थिक विकास में योगदान देने वाली

0: साझेदारियां बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में बहुत मजबूती से समाया हुआ है और देश की सीमाओं को पार कर चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे प्राचीन ग्रंथों से लेकर वैश्विक मान्यता तक योग ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में अपनी जड़ें जमाए रखते हुए सीमाओं को पार किया है। इसी क्रम में एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने विकास और विरासत के समन्वय का एक नया प्रतिमान स्थापित किया है। इसी क्रम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश के राज्य मंत्री डॉ शैलेंद्र तोमर ने मेरठ में वृक्षारोपण किया और स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। आगरा में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता के संदेश के बाद समाज की सहभागिता जुड़ने से परिदृश्य बदला है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब स्वच्छता का संदेश दिया गया था तो उसमें पूरे समाज की भागीदारी जोड़ने का आह्वान किया गया था। और उनके आह्वान के पश्चात आज हम देखते हैं कि उसके पूर्व रेलवे स्टेशनों का जो परिदृश्य हुआ करता था, प्लेटफार्म गंदगी से भरे पड़े रहते थे, लेकिन जब माननीय पंतप्रधान जी के द्वारा आह्वान किया गया, समाज की सहभागिता इसमें जुड़ी, आज रेलवे स्टेशनों का दृश्य बदला हुआ दिखाई देता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान के छठवें चरण की शुरुआत आज लखनऊ में प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए देश के बच्चों का पोषित होना बहुत जरूरी है। उन्होंने बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को और मजबूती के साथ चलाने की आवश्यकता बताई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की 101 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विरासत की रक्षा के साथ विकास यात्रा को गति दे रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को किया संबोधित। कहा, किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक कल आगरा में होगी आयोजित। चीन, रूस और ब्राजील समेत 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। और प्रदेश में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान का छठा चरण शुरू। बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूती से चलाने पर दिया जोर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्याम सुहानी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपके द्वारा प्रेषित 7:15 पर भेजे गए संदेशों को शामिल कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

मेरे सनम, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत मजरू का था, संगीत दिया था ओपी नैयर ने। इस गीत को सुनना चाहा था कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह चौड़ा सीटी दीवान, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता कौर, दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद मणि और नोखेलाल वर्मा, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजाना और समस्त अब्बासी परिवार, ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, साधुलशहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंदकला रेवाड़, पलेरटी कमगढ़ मध्य प्रदेश से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली सोनम, आशीष विश्वकर्मा, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका, सुशांत और सुरेश चौरसिया, पिपिरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, मुदला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला ओम कुमार सुरलकर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छनुला श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, संजू योगिता, रंजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, सलमा सद अरहम और पूरा हाशमी परिवार, राजमाता नगर बुलठाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाणे, ज्योति आकांक्षा, आकाश कुमार, मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, बसंतरा भोजने, पी एस नवानकर, तुषार कारगले, मजनूघटीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक, मुलवानी ठाणा से अनिल मोहन, उषा टिल्लू नायक और मधु नायक, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा, गुजरात गांधीधाम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जूली और जगदीश चौरी, नर्मदा पाक मंगलबेड़ा से मास्टर आलिम पटेल, मुजहद और नदीम पटेल, चंदवाड़ा मध्य प्रदेश से उदयभान ठाकरे, दीपक ठाकरे, ग्रंथ और गोरी ठाकरे, तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष विवेक, बीवी आयुषी श्रीवास, तिरुपति नगर नांदुरा से संतोष बसाने, उषा ऋषिकेश, अनिकेत सागर कटक, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मेकलानी, बबिता मेकलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल यशस्वी वर्मा, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, संबलपुर कांकेर से फाकुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, श्यामा परवीन, साइमा सरफराज, गुलफराज और बीबी मुस्कान, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर रेमेकर, प्रमोद प्रदीप एकंकर, टोंडी लोहरा बालूत छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामूरिया, जयदेव तामूरिया, तुषार, डॉली बेबी, पूजा तामूरिया, राधिका और प्रभा देवी तामूरिया ने

आइए सुनते हैं इज्जत फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। बोल साहिर के हैं, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

साहिर के बोल अभी आपने सुने, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म थी इज्जत, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए ब्रज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह नकला राणा से, शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा, राजू लवानिया खंदौली आगरा, यादराम ज्यूस फार मथुरा, वीरेंद्र सिंह मंडी चौराया मथुरा, नेतपाल सिंह नगला विजय राया, भजनलाल कुमार राया, महेश चंद सदर बाजार मथुरा, सत्येंद्र चंसौलिया जिला जालौन से और पंचमलाल चतुर्वेदी दौसा राजस्थान से, गांव गोपी की नगरिया से मिठ्ठललाल सारस्वत नेहा नीरज निकेता और इनके मम्मी पापा, गांव नगला पोला से विजय सिंह भानु प्रताप सिंह और राधा रामानुज बिहू कृष्णा राधिका पवन करण और इनके परिवारीजन, गांव नौधरा से कोमल मास्टर जशोदा सूरज शिवानी, गांव कुमुदवन से रमेश सुरेश सुनील रचना और इनके साथी, हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से सोनिया अजीत शिवांश चुन्ना और इनके मम्मी पापा, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन बीना मस्कीन आशीष राजा चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता खुराना केशु रिधाना खुराना, पद्मटा की नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन शाह मंगलाबेन और राजेंद्र जी शाह, गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर शाइना हसन अक्सा नाजिया आफिया इब्राहिम, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा साहिल मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार कली श्रीरामपुर से अशोक दले सविता निकेत रोहिणी ऋषिकेश जीविका सानिका, पुनावले पुणे से अजय सोनवने करिश्मा अविका विशाखा सोनवने, शास्त्री नगर बीचर से किसन सपकाल आशा सोनिया विशाल सपकाल, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद प्रकाश बल्लू निषाद, तरुण श्रेणी का श्रीनिजा, गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर मंजुला राठौर विशाल निशा, बरबट बुकाल बुलठाना से नारायण आगे कमल दिव्या जय आगे, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल कमला रानी भानु प्रकाश गीतिका, दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा कोमल मेहरा किरण कपिल कुणाल मेहरा, बुलठाणा महाराष्ट्र से वासुदेव बोरडे अनीता गाठोड़े रमेश राव गाठोड़े, जोरीबाड़ा पैठण से फहीम आसमा अंजुम और खुशी, नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव अनीता जाधव आरती प्रसाद सोनल बेबी सिया जाधव, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा अंजनी ज्योति प्रहलाद राजेंद्र वर्मा उमेश प्रमिला बंछोर, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब राम टेके यशोधरा शव्या राम टेके, कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी नसरीन नौरीन आसना मोहम्मद कैफ, हयात कॉलोनी अहरिया बिहार से फैसल मोहम्मद अकमल मोहम्मद अफजल, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार हैप्पी राय, गाजीपुर से प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने

और ये अब सुनते हैं लता मंगेशकर को पाकीज़ा फिल्म में। गीत कैफे आज़मी का है, धुन तैयार की है।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म थी पाकीज़ा, गीत कैफे आसमी का था, धुन तैयार की थी गुलाम मोहम्मद ने। इस गीत को सुनना चाहा था रश्मि झरना राजकोट गुजरात से, ताजपुर मोरबा समस्तीपुर बिहार से, कारी राय कारी मीना कारी।

गजराज आरती आकर्षण जय श्री। तेलंगाना भांगिर से मोहम्मद बाहिरुद्दीन फजान लल्ला फरहान समयरा अजमीन गुड़िया। अडारनंद घाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा चांदनी भूपेश दीपेश वर्मा। राजदरबार राजनगर बिहार से नवीन सिंह ज्योति श्वेता स्वाति सुशांत चुलबुल रानी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता प्रदीप कुमार राजबहादुर शंभू जय वीरू। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत श्वेता केसुतासु अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर सरला रोशनी चेतन विशाल बेबी प्रियांशी। गांव चौलदा बागपत से संजय ढींगिया नमन नापार ढींगिया। मजनू कटीला दिल्ली से कमल बालूजा मधु बालूजा सागर बालूजा। कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल मोरस अनिल कुमार अजीत कुमार आयुष और नंदनी जंघेल। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश मैंडी सौरभ साइना निवान शर्मा। 715 पी ए संदेश व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिवेंदु भूषण संस्कृति पौरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंवल। डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये राधिका गजबिये बेबी अनिष्का तन्मय गजबिये। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया देशानी निमित आहूजा। बटरा रोड मरडी डब्बावली से नाजेंद्र नारंग अंजू मोहित लकी तानिया नारंग। दीवाना रेडियो लिस्नर्स क्लब जानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल उमेश उर्मिला दीपक स्वाति। जमशेदपुर से विपिन स्वाति देव कुमार आर्य कुमार जायसवाल। खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर अब्दुल हक जियाउल हक मोहम्मद उमर राजेंद्र कटारे। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा विमल अनेजा। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा लक्ष्म मल्होत्रा लाडू कोयल मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का कोयल सिक्का डग्गू बब्बी का सिक्का। छत्तीसगढ़ से फनेश कुमार चंदन सावित्री देवी मोहित कुमार देविका रानी गजेंद्र कुमार हियांश कुमार चंदन। गणेश आविका श्रीरामपुर से डी अशोक कुंभार अविका सानू अर्चना कुंभार। नांदेड़ से प्रकाश जैन लातूर से संगीता जैन सूरज पी आर जैन। आप हैं संजय पाटिल उषा मलकापुर से। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक क्रोवर प्रवीण क्रोवर विक्रमजीत अनमोल सिंह और प्रवीण क्रोवर। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह ज्योति सिंह रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह ने। और अब आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का हृदय से आभार। नमस्कार।

0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। और अब श्रोता सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल

0: कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ये हो पाया है?
2: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1,00,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, एसएआरडीपी नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
1: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
2: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहां पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सके।
1: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था, थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर, जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को, जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
2: कई राज्यों में, इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। मालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहां मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो न केवल जो स्काईवॉक वहां पे तैयार हो रहा है, पर जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहां पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काईवॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। तो डेफिनेटली ये टॉप 1-2-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा। और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है, लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन।

0: में तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। दो प्रोजेक्ट्स मेघालय में सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो, या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5 स्टार हो या 3 स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
1: आपने जैसा कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
0: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, न केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइनएप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
1: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बने, इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में और सरकार इसे कैसे देख रही है?
0: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है, ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था, लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
0: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर पर लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया

0: जाए कि सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं, और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
1: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
0: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एंड इट मीन्स दैट बाय स्ट्रेंथनिंग द फिजिकल कनेक्टिविटी, प्रमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, पीपल टू पीपल लिंक्स, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
1: So, Purvottar Kshetra Vikas Mantralay ka आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे, और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
0: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलांग में, माननीय होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने इस बैठक में हमें शामिल हुए थे, और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी, और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे, और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2047 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर, स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा, और जिससे हमारे अष्टलक्ष्य भी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में, तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सब का इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट, सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इन टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, एंड वेन दे डू दैट they also retain their unique identity.
1: Thank you so much, sir.
0: Bahut bahut dhanyawad.
2: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन दिस स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद आर मुकुंदन, प्रेसिडेंट कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। Interviewer is Shishir Sinha, journalist.
4: Namaskar. Modi government is completing 12 years. During those 12 years, we have seen various ups and downs in the Indian economy. We have seen challenges like COVID. We have seen challenges like Russia-Ukraine war. And now the current West Asia crisis. Despite all those things, Indian economy has grown more than 7% during those 12 years. And now the expectation is it will grow at much faster rate. So what kind of role India Inc. has to play in this entire growth journey? To talk about all those things, we have with us Mr. R. Mukundan, President, Confederation of Indian Industry. Mr. Mukundan, thank you very much for joining us from Morocco. And it's a pleasure to have you on the show.
5: Thank you very much.

0: जी कपिल कुमार की शब्द रचना भी आपने सुनी संपे स्वरों में। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।

0: reforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
0: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
0: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से

0: सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद

0: मॉस्को के चार हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. Four Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the Viva Tech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said, technology can lead to progress only when it's democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all.
2: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. The Prime

किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म थी मेरे जीवन साथी, गीत मजरू का था, धुन तैयार की थी आर डी बर्मन ने।

0: खयाम के संगीत निर्देशन में मीर तकी मीर की शब्द रचना भी आपने सुनी। लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म थी बाजार।
1: राय साहब भूपेंद्र सिंह से बड़ा बदमाश, खतरनाक और जालिम गुनाहगार शायद ही।

0: लता मंगेशकर के गाए जॉनी मेरा नाम फिल्म के इस गीत के साथ ही चितपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
2: श्रोताओं, पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी थी। देश में रोजगार बढ़ाने की दिशा में ये योजना महत्वपूर्ण योजना के तौर पर उभर कर सामने आई है। श्रम व रोजगार मंत्रालय ने EPFO के माध्यम से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की थी, जिसे लगभग 1,00,000 रुपए के कुल बजट के परिव्यय से शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है कि देश भर में 2 साल के अंदर करीब 3.5 करोड़ रोजगार पैदा किए जाएं। अगर कहा जाए कि ये एक ऐसी योजना है जिसमें रोजगार देने पर या रोजगार प्राप्त होने पर एक तरह से प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो इस संदर्भ में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण इस योजना का तथ्य है। और हम आज कार्यक्रम में इस योजना के संदर्भ में एक विशेष चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण दिन है जिसमें पहली बार इस योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की जा रही है। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, और साथ में हम इस कार्यक्रम में ऐसे लाभार्थियों से जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है, साथ ही जिन कंपनियों ने रोजगार दिया है उनके उन नियोक्ताओं से भी हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो आशुतोष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को, कि 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार को पैदा करने का जो इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है, कितनी महत्वाकांक्षी योजना है?
3: सच्चाई ये है, समाज में इसकी जरूरत थी कि सरकार की ओर से आप ऐसा कुछ करें कि इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसके लिए आगे बढ़े कि भाई हमें नौकरी देनी है लोगों को। तो उस दिशा

0: जब ये सरकार ने सोची और बजट में ही इसकी घोषणा हुई थी और उसके लिए फिर पूरी तैयारी हुई, कल पहली बार 2400 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी थी। ये पहली किस्त है, क्योंकि अदरवाइज तो ये कुल बजट इसका करीब करीब 1 लाख करोड़ है, 99 लाख समथिंग कुछ इस तरीके से इसका है। तो वो चीजें ये पहली किस्त जा रही है। और आपने ये बात जो कही कि आप कुछ ऐसे लाभार्थियों से भी बात करेंगे और कंपनियों से भी बात करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कि जो औपचारिक नौकरी पाने वाले जो युवा हैं उसके इसमें जो है 2 किस्तों में 15,000 रुपीज तक की कोई प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो दी जाएगी। और इससे जाहिर तौर पर कंपनियों को भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि चलिए एक असिस्टेंट सरकार की ओर से मिला, हम लें, उनको भी जरूरत है। देखिए आज के दिन क्या है, अब जब फिर से वर्ल्ड ओपन अप होने वाला है, बहुत अच्छी बात हो गई कि वेस्ट एशिया क्राइसिस भी खत्म हो गया। अभी देखिए एक बार भी बहुत तेजी से काम भी बढ़ेंगे, कंपनियों के लिए भी बहुत काम आने वाला है हर क्षेत्र में। उसमें सरकार की ओर से ये मदद भी जब जाएगी तो और एक अच्छा माहौल बनेगा।
1: निश्चित तौर पर। और इससे पहले कि हम एक लाभार्थी को जोड़ें, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस योजना में जो रोजगार पाने वाले की मासिक अधिकतम जो सैलरी है वो 1 लाख तक रखी गई है, यानी हम देखें तो इस योजना के तहत रोजगार पाने वाला एक बड़ा मध्यवर्ग भी स्थापित होने जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं, जिस तरह से इसमें जो सैलरी का प्रावधान रखा गया है कि जो ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में 1 लाख रुपए तक की मासिक सैलरी या वेतन पाने वाला कोई भी व्यक्ति है उसको ये लाभ मिलने वाला है।
0: मेरिट कि 1 लाख तक की किसी को नौकरी मिल रही है बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है।
1: बिल्कुल
0: दूसरी तरफ देखिए कि इस 1 लाख से जोड़ते हुए सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही बजट में 12 लाख तक रुपए तक के ये जो है सो टैक्स फ्री
1: टैक्स
0: कर
1: फ्री किया था।
0: दिया।
1: बिल्कुल
0: ये देखिए ये दोनों चीजें जोड़ती हैं कि 1 लाख रुपए वेतन पाने वाला एक युवा जिसकी कि समाज में एक प्रतिष्ठा होगी, लेकिन जिस तरीके से समाज बढ़ रहा है, जिस तरीके का आकांक्षी समाज है, उसमें 1 लाख रुपए में बहुत सारी चीजें उसे जुटानी होती हैं। तो उस पर सरकार की ओर से एक्स्ट्रा भार न पड़े तो उसको टैक्स फ्री किया गया। कंपनियों को ये राहत दी गई कि आपको हम मदद करते हैं इसमें। तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हुआ है आज के।
1: बिल्कुल। जुड़े रहिए आशुतोष जी, एक लाभार्थी को हम शामिल करते हैं, अमन त्रिवेदी जो एक डेटा इंजीनियर हैं हमारे साथ जुड़े हैं। अमन जी स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: अमन जी अपना अनुभव बताएं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आपको किस तरह से लाभ मिला है, और थोड़ा अपनी प्रोफाइल के बारे में भी बताएं, किस तरह से आप एक ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं और कैसे आपको इस योजना का प्रोत्साहन मिला है।
2: तो अगर सबसे पहले बात करें कि मुझे लाभ कैसे मिला है, तो उसमें सबसे पहले बात करें तो कंपनीज जो हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको सबसे पहले तो इंसेंटिवाइज करा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप फ्रेशर्स जो होते हैं जिनका पहली बार ईपीएफओ का अकाउंट खुला है
1: हाँ
2: उन्हें हायर करिए।
1: बिल्कुल
2: तो मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं इंजीनियरिंग करा हूँ, राइट, मैं और अभी मैं एज ए डेटा इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। तो पहले क्या होता था कि इंटरव्यू से पहले ही आपसे पूछते थे एक्सपीरियंस है, नहीं है तो नहीं इंटरव्यू होगा, तो स्किल सेट पे बात ही नहीं आती थी। अब एज ए फ्रेशर भी मौका मिलेगा बहुत लाखों करोड़ों युवकों को कि एटलीस्ट इंटरव्यू तक जा तक इंटरव्यू में जाए और बता पाए कि उनकी प्रतिष्ठा कितनी है और उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में। और बात करें तो जैसे कि जो 15,000 रुपए की राशि जो इम्प्लॉयज को भी दी जा रही है, वो दो टाइप, या तो वो कुछ 6 महीने बाद जो 7,500 और उसके 6 महीने बाद वापस 7,500। सो मेरा मानना है कि वो कुछ के लिए रिवॉर्ड है और कुछ के लिए मोटिवेशन है, वो कि कॉरपोरेट में गए हैं जो इम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय 6 महीने में, उसके बाद जो ये राशि आती है वो एक रिवॉर्ड लगता है कि ये मेरे लिए एक नया कदम था और इसके साथ एक रिवॉर्ड मिला है। तो और वर्कफोर्स में इसके बाद मैं जो हमारी यंग जनरेशन है वो ज्यादा दिख रही है और ज्यादा दिखेंगी। तो आई थिंक जॉब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भी ये योजना जो है ये बहुत मददगार साबित हुई है यंग जनरेशन के लिए। उस हिसाब से बहुत यंग एज के अंदर भी एक इस कॉरपोरेट के अंदर घुसने में भी बहुत मदद की है इस योजना ने मेरी और लाखों युवाओं की।
1: आशुतोष जी आपको मैं फिर से जोड़ना चाहूंगा, और कि इस योजना के तहत नए लोगों को सामने लाने का मौका मिलेगा जो रोजगार की तलाश में है, और इसमें जैसे कंपनी और नियोक्ताओं के लिए भी ये शर्त है कि अगर 50 कर्मचारियों से कम संख्या की कंपनी है तो उन्हें 2 नए लोगों को हायर करना होगा, और अगर 50 से ज्यादा बड़ी कंपनी है तो 5 नए लोगों को हायर करना होगा। यानी जो नियोक्ता हैं उन पर फोकस है कि वो नए लोगों को रोजगार दें। किस तरह से इस दिशा में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है कि जो फ्रेशर्स हैं और जैसा कि अमन जी ने भी बात की, जो स्किलफुल लोग हैं वो सामने आए।
0: अब क्या है कि दो इसके पहलू देखिए इस योजना के।

0: 1 लाख रुपए तक के लिए ये है जो किसी यूथ को मिलता है, उसमें सरकार इस योजना में लेकर के आई है। दूसरी तरफ जो फर्स्ट टाइम ईपीएफओ में एनरोल हो रहे हैं, अब आज के दिन आप थोड़ी सी अगर पीछे थोड़ा पीछे घूम कर देख लें तो आप देखेंगे कि इतनी कितनी संख्या है ऐसे लोगों की जो कि बिल्कुल फ्रेशर आ रहा हो और उसे सीधे 80 हजार, 90 हजार, 1 लाख रुपये मिल रहा। नहीं, ये यहाँ पर आप जो है सो एक माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं कि कंपनियां जो हैं, और उसमें आपने ये बात भी कही कि 50 से कम है तो 2 और उससे ऊपर है तो कम से कम 5 की जो बात है वो एक लिमिट भी डाल करके, क्योंकि कंपनियां भी दोनों चीजों से चलती है, एनर्जी के साथ भी चलती है, अनुभव के साथ भी चलती है, तो वो अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन उस बीच में फ्रेशर्स के लिए जो नए युवा आ रहे हैं स्किल लेकर के, उनको कैसे एक मौका मिले उसके लिए माहौल बने।
1: बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं नीलेश वर्मा जी को भी शामिल करना चाहूंगा, जिन्होंने रोजगार को लेकर एक अपनी कंपनी में भी इस योजना के तहत रोजगार देने में मदद की है। नीलेश जी, स्वागत है आपका। अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें पूरा, और साथ ही इस योजना को किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट किया अपने लिए, इसके बारे में भी बताएं।
2: धन्यवाद। मेरा नाम नीलेश वर्मा है। आई एम वन ऑफ दी को फाउंडर ऑफ इंटेलीडीबी एंटरप्राइज। वी आर वन ऑफ दी प्रीमियम स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन जो एआई के तहत एंटरप्राइज डेटाबेस में काम कर रही है। हम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी हायरिंग थी, और हायरिंग के साथ साथ लोगों को रिटेन करना था, बिकॉज हायरिंग वॉज वन पार्ट एंड रिटेंशन वॉज दी अनदर पार्ट। जितने भी न्यू ब्लड हैं आज की डेट में, नए लोग हैं जो कॉलेज पास आउट हैं, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेशर्स, दी प्रॉब्लम विद दीज फ्रेशर्स वर देयर रिटेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे ऑलवेज लुक एट मनी ओवर दी करियर। मोस्ट ऑफ देम, आई वुड नॉट से ऑल ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ देम दे लुक एट हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लुकिंग एट देयर करियर मोर रादर देन स्टिकिंग टू वन ऑफ दी वन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिसेंटली जब से ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू हुई है, इससे हमारे जैसे एम्प्लॉयर्स को काफी बेनिफिट मिला है इन टर्म्स ऑफ यू नो हायरिंग दी राइट सेट ऑफ रिसोर्सेज एंड मेकिंग देम स्टिक टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत ही फोकस्ड अप्रोच है, और इसको मैं यू नो आई एम ग्रेटफुल टू दी ईपीएफओ एंड दी पीएम ऑर्गेनाइजेशन फॉर रोलिंग दिस आउट। हालांकि इस योजना के बारे में आज भी बहुत लोगों को पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो आई बींग एन एम्प्लॉयर, आई गॉट टू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन कपल ऑफ मंथ्स अगो, बट मैं इसके बारे में और डीप जानना चाहूंगा, अंडरस्टैंड करना चाहूंगा, एंड आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी लेवरेज इट टूवर्ड्स दी यंग जनरेशन एम्प्लॉयमेंट।
1: बिल्कुल। तो आपको क्या उम्मीद है इस योजना से, जैसे आप जैसे जो एक तरह से मैं कहूं कि देश के विकास में भी आप जैसे जो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर्स, तो कैसे इस योजना से आगे आने वाले समय में एक बहुत स्किलफुल वर्कफोर्स आपको मिलने वाली है, और जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं उससे भी कैसे अट्रैक्ट होंगे आजकल के जो यूथ हैं वो इस योजना के जरिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टैलेंटेड पूल हमारे सामने आ पाए।
2: जी। सो मेरे लिए इनफैक्ट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना केवल एक फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है फॉर द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, यह एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज एंड मैकेनिज्म है, एंड इट एक्चुअली इनकरेजेस कंपनीज टू क्रिएट मोर जॉब, एंड इट इनकरेजेस यंग प्रोफेशनल टू एंटर इनटू द फॉर्मल वर्कफोर्स विद कॉन्फिडेंस। जब सरकार रोजगार देने वाले संस्थानों को समर्थन देती है तो उसका प्रभाव केवल कंपनी तक सीमित नहीं रहता है, इट एक्चुअली क्रिएट्स अ मल्टीप्लायर इफेक्ट अक्रॉस फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड द ब्रॉडर इकोनॉमी। एवरी न्यू एम्प्लॉय सपोर्ट्स अ हाउस होल्ड, एंड एवरी हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द कंजम्पशन, एंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स अ नेशन बिल्डिंग। तो बेसिकली जितने भी नए रोजगार को हम प्रोत्साहन देते हैं, अलग अलग योजनाओं को के तहत सरकार हमें यू नो इंसेंटिव देती है एज एन एम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉयर, ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की, हमारी कंट्री की कॉन्ट्रीब्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है।
1: बिल्कुल। आशुतोष जी, आपसे अब मैं जुड़ना चाहूँगा। कुछ आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस योजना से संबंधित, जैसे जो कुल रजिस्ट्रेशन इस योजना के तहत अब तक हुआ है कर्मचारियों का, जो नए कर्मचारी जुड़े हैं लगभग 60 लाख के करीब नए कर्मचारी इससे जुड़े हैं, और युवाओं की संख्या अगर हम देखें तो 71% के आसपास है इसमें। और साथ में एक और महत्वपूर्ण तथ्य इस योजना के तहत निकल कर आया है कि महिलाएं भी 30% के आसपास जुड़ी हैं, यानी विमेन वर्कफोर्स भी इस योजना से बढ़ता हुआ देश भर में देखा जा रहा है। और कैसे आप देखते हैं जिस तरह से ये आंकड़े हैं कि इतनी कम समय में और इतना अच्छा उत्साह है रोजगार के सृजन में, और साथ ही जैसा कि मैंने युवाओं की और विमेन वर्कफोर्स की तो बात की ही, क्या आपका कहना है?
0: दोनों चीजें हैं, एक तो इसकी जरूरत थी और दूसरी बात कि सरकार की ओर से मदद तो कंपनियां भी आगे बढ़ी, तो ये रजिस्ट्रेशन तो आपको दिखना ही था, ये जो जोश है वो तो दिखना ही था। जैसे अभी निलेश जी ने बात कही ना, इनके ऑर्गेनाइजेशन में 15 लोग हैं जो फ्रेशर हैं, बिल्कुल जो जाकर के इन्होंने कॉलेज से पिक किया, कैंपस से उठाया और लेकर के आ गए। अब यही इस योजना की जो खूबी है वो यही है
1: बिल्कुल,
0: तो ये और जाहिर तौर पर ये फोकस ही किया गया है उस एज ग्रुप पे, जो बात अभी शुरुआत में अमन जी ने भी कही ना कि 21 से 30 के बीच में जो सबसे ज्यादा फोकस भी वही है, क्योंकि वही जरूरत है, वही आने वाले दिनों में बदलेंगे विभाग को।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसा कि नाम में ही है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, तो विकसित भारत का एक रोडमैप ये योजना देती है, क्योंकि इसमें एक तरफ इंसेंटिव है नियोक्ताओं को और रोजगार पाने वालों को, दूसरी तरफ देश में एक स्किल्ड वर्कफोर्स को औपचारिक सेक्टर में लाने की इस योजना के तहत पूरी कवायद है, जिससे कि रोजगार बड़ी संख्या में बढ़े और एक पूरा स्किल सेट तैयार हो युवाओं का, जिससे कि देश के विकास में वो अपना योगदान दे सकें। बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में जुड़े और इस योजना के जो फायदे हैं और आने वाले समय में जो एक बड़ा इसका आउटकम निकल कर सामने आएगा, इन सभी बातों पर आप सभी ने विस्तार से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। कंट्री वाइड

झांसी वाली रानी, भारत की तरुणाई की वो ऐसी अंगड़ाई जिसने स्वतंत्रता के पहले संग्राम का इतिहास कोटि सूर्यों की प्रभा से आलोकित किया, जो शीर्षक थी शौर्य की, संकल्प की, उत्सर्ग की, जिसकी स्मृति अब भी उद्वेलित करती है शिरा शिरा में ऊर्ज्वसित ओज की नित्य तरंगणी, सतत प्रवाहित आत्मविश्वास की उन्मुक्त धारा, एक धरोहर, एक विरासत।

0: भारतीय इतिहास की 19वीं शताब्दी और इस सदी का सन 1857।
1: जब समय की राहों पर दूर दूर तक शौर्य बलिदान और आत्मोत्सर्ग के उजाले फैलते गए, संक्रमण की धुरी पर नियति के चक्र घूमने लगे, पीढ़ियां उठ खड़ी हुई और दमकते हुए काल क्षण अमर और स्मरणीय आख्यान का व्याख्यान बन गए।

0: पहले स्वाधीनता संग्राम में यश और कीर्ति की संवाहक दो साहसिक घटनाओं का एक लंबा सिलसिला है। नींव के पत्थरों की तरह जो बिछा हुआ है और उस पर टिका हुआ है भव्य भारत का ये आधुनिक प्रासाद अपने कलशों कंकुरों के साथ। वो महासंग्राम जैसी एक चिंगारी थी जो देखते ही देखते जन दावानल में बदल गई, ओर से छोर तक समूचे दृश्य पटल को जिसने समेट लिया।
1: आग की आकाश चुमती लपटों का एक ठिकाना थी झांसी, लेकिन झांसी ही क्यों, मेरठ, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली, कहां कहां नहीं थी क्रांति की ये अंगड़ाई। पूरा का पूरा देश और उसका जीवित जागृत जनगण, किसान, दस्तकार, सामंत, सूबेदार और सिपाही मुक्ति के इस पावन संकल्प के साझीदार हिस्सेदार थे। लोहू और लोहे से एक प्रस्तावना लिखने में जुट गए थे।
0: ये अचानक नहीं हुआ, इतिहास में अकारण या संदर्भों से कटकर अकस्मात कुछ भी घटित नहीं हुआ करता। इतिहास में कार्यों के साथ कारणों की एक नियोजित श्रृंखला होती है, हर एक घटना का पूर्वा पर संबंध, वो कारण बीज जो वर्तमान के धरातल पर पीछे से पहुंचकर अंकुरित और पल्लवित होता है और एक कालखंड बन जाता है। कभी जो ललकारता है तो कभी वो पराभूत भी कर देता है। अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हुए जनगण कभी इसे नियति मानकर समर्पण भी कर देते हैं,
2: लेकिन जीवन और जागृत संकल्प कभी समर्पण की इस असहायता को स्वीकार नहीं कर पाते। जनगणों का हौसला कभी पस्त नहीं होता। उन्हें संक्रांति के समय की नैसर्गिक पहचान होती है। अवसर आते ही वह आलस्य और निरीता को त्याग कर परिवर्तन के अनुष्ठान में उठ खड़े होते हैं।
1: 1857 की लोक क्रांति एक ऐसा ही धन्य समय था, जनता के जागरण का समय, जनगण का चुनौतियों का मुकाबला करने वाली तत्परता और प्रस्तुति का अभूतपूर्व अध्याय।
0: अज्ञात शताब्दियों से महादेश भारत सुदूर देशों के प्रवासियों के आकर्षण का केंद्र रहा है, सभ्यता और संस्कृतियों का एक चौराहा, जहां लोग आते गए और एक दूसरे से मिलते गए, प्रश्रय देने वाला एक पालना आगंतुकों के लिए, जिसकी आत्मीयता और स्नेह सदैव ही मुक्त और प्रचुर बना रहा, जिसने हर परदेशी को अपनाया और गले लगाया।
2: यदि कोई आतताई बनकर लूटपाट के इरादे से आया तो भारत की जनशक्ति ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया और बदस्तूर लौटाया। विश्व विजय का दंभ भरने वाले योद्धाओं का घमंड चकनाचूर कर दिया।
1: लेकिन आने वालों में ऐसे भी थे जो वैभव

भाव सुख शांति की खोज में भारत भूमि तक आए थे। उन्हें यहां ममत्व और निजता के अक्षय धाम मिले। अवसरों ने उन पर कोई कोताही नहीं बरती, भरपूर दिया, इतना कि उन्हें संकल्पों सपनों के लिए संभावनाओं का आकाश और अपनों का विश्वास मिला। वो यहीं के होकर रह गए, इस सहिष्णु सदाशय माटी में घुल मिल गए।

0: भारत ने कभी भी सब्र के साथ आने वाले तूफानों के आगे सिर नहीं झुकाया, हमेशा उसका मुकाबला किया, कभी कामयाबी के साथ और कभी नाकाम होकर। और जब वो नाकाम भी रहा तो उसने अपनी नाकामयाबी को याद रखा है और अगली कोशिश के लिए अपने आप को तैयार किया है।
1: विदेशी आधिपत्य के विरुद्ध 1857 में भारतीय जनगण की अंगड़ाई एक ऐसी कोशिश थी जिसने स्वाधीनता के गौरवशाली महासंग्राम की भूमिका तैयार की और अंततः अगली सदी में सफलता प्राप्त की।
2: भारत के इतिहास के ये संघर्षों से समुज्ज्वलित पृष्ठ रोचक हैं, जो भारत की जनता की अदम्य जिजीविषा की गवाही देते हैं। एक उपक्रम इन पृष्ठों में समाया हुआ है, भारत की स्वाधीनता का लोलुप विदेशियों द्वारा अपहरण, जनगण का संकल्पित संघर्ष और उसके मजबूत इरादों के द्वारा फिर से स्वाधीनता का वर्ण, एक आभ्यंतर नाटक और उसका पटाक्षेप।
0: हिंदुस्तान की कहानी में इसी जिजीविषा को शब्द देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, ये कोई गुप्त सिद्धांत या गूढ़ विद्या नहीं है जिसने हिंदुस्तान को इतने लंबे युगों तक जिंदा और कायम रखा। जिस चीज ने ऐसा किया है वो है उसकी कोमल मानवता, उसकी बहुरंगी और रवादारी बरतने वाली संस्कृति और जिंदगी, और उसके भेद भरे तरीकों की गहरी सूझबूझ, उसकी भरी पूरी जीवनी शक्ति की धार।
1: जीवनी शक्ति के संकेत के रूप में भारत विदेशियों के लिए एक आकर्षण की भूमि था, किस्से कहानियों कल्पनाओं का एक रूमानी देश, जिसके दस्तकारों कारीगरों का हुनर धरती के पड़ावों को लांघकर देश देशों के बाजारों तक पहुंचता था और सुदूर निवासियों को चमत्कृत करता था। उनकी इच्छाएं उद्वेलित हो जाती थीं। विस्मय से वह सोचते थे, कैसा होगा वह देश।
2: सदियों सदियों तक भारत भूमि का यश और हमारे दस्तकार कारीगरों का कौशल दुनिया के बाजारों में गूंज रहा था, ऐसी कथा कल्पनाएं बनकर जो सोने की चिड़िया का सम्मोहन थी। धन धान्य भरपूर भंडार, स्वर्ण का वैभव का परम धाम, स्वर्ग कहीं था तो बस यही था, यही था। दौड़ पड़े परदेसी लुलुपता से ललचाए इस महादेश की माटी को पंकिल करने।
0: जब एशिया मूर्छित और अपनी पुरानी कोशिशों की वजह से थक गया था, आत्म सम्मोहन की शलथता उसे घेर चुकी थी, तब पिछड़े हुए यूरोप में तब्दीलियों के आसार दिखाई दिए।
1: उस जमाने में भारत में ये परिवर्तन नहीं हुए। भारत और यूं कहें एशिया भर की रचनात्मक स्फूर्ति और आविष्कार खोजों की शक्ति जैसे अपंग हो गई थी, एक ठहराव आ गया था।
2: यूरोप में गैलीलियो, न्यूटन और कोपरनिकस के इस दौर में कपड़ा बुनने की उड़ती हुई तकली, घड़ी को चलाने वाले पेंडुलम, छापे खाने और भाप के इंजन बन रहे थे जो औद्योगिकरण का आधार बने। हाथों की जगह मशीनें आईं, उत्पादन बहुत बढ़ गया। बढ़े हुए उत्पादन के लिए ज्यादा कच्चे माल की जरूरत थी और जरूरत से ज्यादा तैयार माल की खपत के लिए बाजार की।
1: ये यूरोप का दृश्य पटल था। विपरीत इसके भारत के लोग हवाई बातों की बुरी लत में पड़े हुए थे। अंधविश्वास, छुआछूत, भेदभाव, अशिक्षा, कामकाज के पुराने तौर तरीके, महाजन और सामंती शोषण से करहाती जनता, दुर्भाग्य का ग्रहण महादेश के सूरज को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था। यह नए और पुराने के टकराव का नेपथ्य था।
0: औद्योगिक क्रांति की स्फूर्ति और जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरोप के नाविक समुद्री रास्तों से यहां वहां दौड़ पड़े। उनकी तलाश थी वो सोने की चिड़िया जिसे उन्होंने अफसानों में देखा था।
2: वास्को डिगामा भारत पहुंचा। और उसने पश्चिमी तट पर गोवा में पुर्तगालियों की बस्ती बनाई। इस सिलसिले में आने वाले यूरोपवासी पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज थे। उनकी अपनी दावेदारियां थीं, अपने अपने इरादे और व्यापारिक स्वार्थ थे। अलग अलग कंपनियां, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे इंग्लैंड ने भारत में व्यापार करने की सनद दी थी। व्यापार और तलवार का ये खेल साम्राज्यवाद का आधार बना। 18वीं और 19वीं सदी के इतिहास को इसने लिखा।

ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में थॉमस रो को जहांगीर के दरबार से व्यापारिक कोठियां बंगाल और दक्षिण भारत में स्थापित करने की इजाजती सनद मिली थी और 100-125 साल बाद प्लासी की लड़ाई के साथ रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को पुख्ता कर दी।

इस छोटे से कालखंड में अंग्रेजों ने अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को परास्त ही नहीं किया, अब वह भारत को हड़पने के इकलौते दावेदार थे। भारत के समुद्री किनारों से उठा विनाश का ये बवंडर पसरता चला गया। फिरंगियों को अपने पांव जमाने के लिए कई जगहें और दुर्लभ संधियों षड्यंत्रों के कई बहाने मिलते गए। वो काली आंधी की तरह फैलते गए।

0: अब अंग्रेज एक आवश्यक उपस्थिति बन चुके थे, हर कहीं हर जगह। क्रूर षड्यंत्रकारी सब कुछ निगलने हड़पने के लिए जीभ लपलपाते हुए आश्रय देने वाले देश को नेस्तनाबूद करने पर आमादा, जिनकी नीति और कारगुजारी थी आपस में लड़वाना और जनता को कमजोर करके बंदर बांट करना, सत्ता को हड़पना और प्रभुत्व तथा सर्वोपरिता हासिल करना।
1: और हिंदुस्तान के हालात इसी लायक थे। महान मुगलों की ताकत औरंगजेब के बाद से क्षीण हो चली थी। आपसी मारकाट, छीना झपटी और उत्तराधिकार के लिए शहजादों की कलह से दिल्ली का विगत वैभव अस्ताचल की ओर अग्रसर था। दिल्ली की बादशाहत, दिल्ली के शासक की शक्ति और धाक, रुतबा और मर्तबा जैसे गुजरी हुई कहानी बन चुके थे। देश छोटे छोटे रजवाड़ों में बिखर गया था जो निरंकुश और स्वच्छंद थे।
2: बादशाहत एक खोखला प्रतीक थी, एक ऐसा भ्रम जिसकी परछाई तक उसके आसपास नहीं थी।
0: और दूसरे शासक थे, पूरब में बंगाल का नवाब, दक्षिण में हैदर अली और पेशवाई के सरदार सूबेदार, जो यहां वहां खुद मुख्तार रियासतें बना चुके थे। उत्तर पश्चिम में सिख, अवध में फिर नवाब। इस कमजोर ढांचे का ताना बाना बिखरा हुआ था। लक्ष्य की एकाग्रता उनके पास नहीं थी।
1: कंपनी व्यापारियों की जमात थी, उसने भारी मुनाफा कमाया और इस मुनाफे की कीमत जनता को चुकानी पड़ी। डलहौजी ने विदा होते समय कहा था, कंपनी को 40 लाख पौंड का लाभ मिला है और इंग्लैंड जाने वाले जहाजों का वजन दुगना हो गया है, लेकिन बस व्यापार ही नहीं, वो तो लंबे फायदे का सौदा कर रहे हैं। इसी देश की दौलत से उन्होंने फौजें खड़ी कर दी, मुट्ठी भरो काम और हजारों देशी सिपाही जो अपने ही देशवासियों के खिलाफ अंग्रेजों की तरफ से लड़ते थे, जी जान लगाकर, सिर पर कफन और परंपराओं का केसरिया बाना पहनकर, ये भूल कर कि वो किस

0: कंपनी की साजिशों, संधियों और युद्धों के सिलसिले में एक के बाद एक राज्य प्रदेश डूबता चला गया।
1: पलासी की लड़ाई इस सिलसिले की पहली कड़ी थी, जिसे भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना का सोपान माना गया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उसके सहयोगी फ्रांसीसियों को हराकर कंपनी ने पहले बंगाल पर अपना कब्जा किया और यहां से आगे बढ़कर उड़ीसा को हत्या लिया।
2: 18वीं सदी के आखिरी वर्षों में मैसूर की पराजय और टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। मैसूर राज्य अधीनस्थ हुआ।
1: सिंध पर जबरदस्ती कब्जा किया गया। पहले अफगान युद्ध में अंग्रेज सेनाएं गुजरी थीं, इसका अंग्रेजों ने फायदा उठाया और सिंध के सामंतों को धमकी दी कि वह अधीनता स्वीकार करें। इसके बाद सिंध को राज में मिला लिया गया।
2: पंजाब में सिखों के खिलाफ अभियान छेड़कर स्थानीय देशद्रोहियों की मदद से ब्रिटिश सेनाओं ने आजादी छीन ली। सिख मूल रूप से किसान थे और मजहबी दीवारों के खिलाफ प्रेम और भाईचारे का आंदोलन चला रहे थे। सिखों की पराजय से पूरा पश्चिम उत्तर

0: भारतीय राज्यों को उपनिवेश बनाने का कंपनी का एक तरीका था। पहले वो राजाओं नवाबों से सहयोग और सहायता के समझौते करके उनके इलाकों में कंपनी की फौजें भेज देते थे, जिनका खर्च हिंदुस्तानी सामंत को उठाना पड़ता था। वो कंपनी के कर्ज में डूबता चला जाता था और आखिर में इस बहाने से अंग्रेज उसकी अलमदारी को राज में मिला लेते थे।
1: अवध में यही हुआ। पहले संधि के बाद कंपनी की फौज आई। इस फौज का खर्च उठाने के लिए नवाब ने अंग्रेजों की सलाह से रियाया पर नए कर लगाए। जनता में इससे असंतोष फैला, विरोध हुआ। अंग्रेजों को बहाना मिला कि नवाब शांति स्थापित नहीं कर पा रहा है, बल्कि विद्रोहियों की सहायता और समर्थन कर रहा है।
2: नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके कोलकाता भेज दिया गया। अवध के लिए लॉर्ड कैनिंग ने फरमान जारी किया। अवध प्रांत की भूमि की मिल्कियत के अधिकार को ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। इस अधिकार का उपयोग वो जिस प्रकार चाहेगी उस प्रकार करेगी।
0: इस तरह भारत का स्वतंत्र सूर्य धीरे धीरे डूबता जा रहा था और पराधीनता की कालिक धीरे धीरे आकाश पर फैल रही थी। लेकिन स्वाभिमानी देश की तरुणाई इससे बेखबर नहीं थी। पराधीनता का दंश स्फीत रुधिर में तीखा होकर कसक रहा था। एक चिंगारी थी जो बेचैन होकर आकार ले रही थी। कंपनी की फौज के सिपाहियों में, देश के किसानों में, स्थिति की असहायता से उबे हुए सामंतों में, अधिकार खो चुके रजवाड़ों में क्रांति की प्रस्तावना लिखी जा चुकी थी।
1: अंग्रेजी विस्तार की एक विंध्याचली बाधा थे मराठे। मुगल साम्राज्य के पराभव काल में ये जाबाज मराठे समूचे उत्तर भारत तक फैल गए थे। मराठों की शक्ति का सामना अंग्रेजों से हुआ। मराठा सूबेदारों की रियासतें यहां वहां थीं। ग्वालियर, झांसी, इंदौर और बड़ौदा, इन रियासतों की अपनी अपनी सैन्य शक्ति थी। पूना का पेशवा इन मराठों का सर्वोपरि पंत प्रधान था। शुरू में हुए आमने सामनों में मराठों ने अंग्रेजों को खूब छकाया,
2: लेकिन मराठे कामयाब नहीं हो पाए। अंग्रेजों का छल कपट भारी पड़ा। सूबेदारों की प्रतिस्पर्धा, आपसी जलन, ईर्ष्या विद्वेष ने उन्हें हरा दिया। वो इतिहास के दुर्लभ क्षणों की चुनौती एकजुट होकर झेल नहीं पाए
1: और कंपनी ने सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। संधि में पेशवा को विठुर की स्वतंत्र जागीर अता फरमाई गई और राजसी खर्चों के लिए वार्षिक 8 लाख रुपयों की पेंशन मंजूर की गई।
2: पेशवाई इतिहास से विदा हुई। पेशवा बाजीराव द्वितीय अपने दरबार, लाओ लश्कर, मुसाहिबों, स्त्रियों समेत पूना से विठुर के लिए रवाना कर दिए गए।
0: पेशवा के साथ आए परिवारों में से एक मोरोपंत तांबे का परिवार था। इस परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया। वो ऐतिहासिक तारीख थी 19 नवंबर सन 1836 और इस कन्या का नाम था मनु।
3: अरे वाह, मुलगी झाली का?
4: लड़की हुई है ना।

श्रोता सुन रहे थे विशेष रूपात्मक कार्यक्रम अमर वीर बलिदानी झांसी वाली रानी। आलेख प्रकाश दीक्षित, कथा प्रस्तुति मदन मोहन मिश्रा की। श्रोताओं ने सुना इसका प्रथम भाग। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनते हैं विदुषी बेगम अख्तर के गाई ठुमरी और दादरा।

0: उपशास्त्रीय संगीत में अभी श्रोता सुन रहे थे विदुषी बेगम अख्तर का गायन FM 102.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म

टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलीहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।